हम विविध भारती से बोल रहे हैं। शक संवत आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय आप सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।

0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन एल्बर्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। गलती किए बिना कुछ नया नहीं सीखा जा सकता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 277। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी आज, प्रस्तुति कांचन प्रकाश, संगीत की। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुबह केंद्रित होगा अभिनेता पी जयराज पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। सेहतनामा में आज सुनिएगा हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुनिएगा सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम।

दोपहर 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा सृजन का स्रोत जिज्ञासा और सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक मुहावरों की दुनिया घोड़े बेचकर सोना हल्की फुल्की बातें चले मेला देखने प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक संवादक मंजरी वर्मा और ममता सिंह शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे इसमें सुनेगा अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने शाम 6:35 पर संध्या रंजन 6:45 पर संगीत सरिता आपको फिर से बता दें सुनिएगा श्रृंखला वर्षा चौमासा कलाकार गायिका शुभा मुद्गल इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से सात 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका फिर मिलूंगा लेखन मेवाराम गुप्त का निर्देशन पुरुषोत्तम दारभेकर का 8:15 पर चित्रलोक 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सुनील शेट्टी पर प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर दस बजे छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का रूपरेखा प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 277

सागर तट पर वानरों का विशाल समूह संपाती नामक गिद्ध से सीता के लंका की अशोक वाटिका में होने का पता पा चुका है। वृद्ध संपाती ने उन्हें यह भी बता दिया है कि जो सामने 400 कोस के विस्तार में फैले समुद्र को लांग सकेगा वही श्रीराम का कार्य संपन्न करने में सफल होगा। अपनी बात समाप्त कर जब गिद्ध चला गया तो वानरों को अपनी अक्षमता की प्रतीति हुई। ऋक्षराज जामवंत वृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर में पहले वाला बल नहीं है। अंगद को सागर पार चले जाने का आत्मविश्वास तो है परंतु लौट आने में संदेह है। किंतु वो तो वानर सेना के नायक हैं, उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है? जामवंत ने तब पवन पुत्र हनुमान के बल तथा सक्षमता का स्मरण दिलाया। बल में वे पवन के समान हैं और उसी प्रकार बुद्धिमान, विवेकशील तथा ज्ञान विज्ञान के भंडार, ऐसा कौन सा काम है जो वे नहीं कर सकते? ये सुनते ही हनुमान ने पर्वत सा आकार बना लिया। सोने जैसा वर्ण और शरीर का तेज उनकी सक्षमता का आभास देते हैं। उन्हें स्वयं अब इस बात का भान हुआ कि सामने लहराते सागर को वे खेल खेल में लांग सकते हैं।

0: प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा,
1: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं वर्षा चौमासा ये श्रृंखला। श्रृंखला की आज की कड़ी में अब मैं शुभा जी से पूछने जा रही हूँ कि वे क्या सुना रही हैं, किस बारे में बात कर रही हैं। वैसे हम उनसे दादरा सुन चुके हैं, बंदिश की ठुमरी कल हमने सुनी है, और वर्षा चौमासा श्रृंखला में हम उसे इस तरह से सजा रहे हैं कि जिसके गीत में रचना में वर्षा का उल्लेख हो, बादर का, दादुर का, मोर पपीहे की बोली का, और उस सुंदरता को ढूंढने की तलाशने की भी एक कोशिश जारी है। तो शुभा जी, मैं श्रोता परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: और अब मैं अपने बोलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, आपको सुनते हैं।
2: आज क्यों ना हम थोड़ा सा लोक संगीत की ओर देखें। उत्तर भारत के लोक संगीत में वर्षा ऋतु से संबंधित कई गीत प्रकार मिलते हैं। बारामासा मिलता है, छमासा मिलता है, चौमासा मिलता है, कजरी मिलती है
1: जी,
2: जिसे कजली भी कहते हैं
1: जी,
2: सावन भी है। कहते हैं, मलार भी कहते हैं, बिरना भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वर्षा से संबंधित हैं, लेकिन कजरी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय रही है
1: जी।
2: अब कम सुनने में आती है, और जो दो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ से कजरी का विशेष रूप से संबंध है, एक बनारस और एक मिर्जापुर। तो बनारसी कजरी और मिर्जापुरी कजरी बहुत ही जानी मानी है। कजरियों का संग्रह संगीतज्ञों के पास तो है ही है, उसके अतिरिक्त ऐसे कुछ लोग हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने कजरी के ऊपर बहुत लिखा है और आज भी मौजूद हैं इन दोनों जगहों में। तो बनारस से ही कुछ दूर एक जगह है रॉबर्ट्सगंज, वहाँ डॉक्टर अर्जुन दास केसरी हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा उनका उनके पास जो संग्रह है कजरी का वो बस सुनने लायक है। कजरी के अखाड़े होते थे, जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, उस तरह कजरी गाने की जो परंपराएं अलग अलग थी उन्हें अखाड़ा कहा जाता था
1: जी।
2: और इन जगहों पे दंगल होते थे, कजरी के दंगल होते थे, जिसमें रातों रात लोग गाते बजाते थे, और एक कजरी सुनाई उसी के मुकाबले में अपने दूसरी कजरी दूसरे दल ने सुनाई, तो ऐसा माहौल था।
1: और वर्षा हो रही है,
2: वर्षा के माहौल में ही होता था।
1: हाँ,
2: जी
1: हाँ,
2: बिल्कुल।
1: इस तरह ये मनोरंजन का कितना अनूठा सा एक स्वरूप है, रूप है
2: जी।
1: आज हम इसे भूलते जा रहे हैं।
2: कजरी का जो साहित्य है वो भी अलग अलग लोगों ने बहुत उसमें योगदान दिया है। तो ठेठ गांव की भाषाओं में तो मिलती ही हैं कजरियां, मगधी, मगध प्रांत में मगही कजरियां मिलती हैं, बिहार में मैथिली भी बोली जाती है, उस भाषा में भी कजरी मिलती हैं
1: जो लोक भाषा
2: जी, ब्रज इत्यादि में भी मिलती हैं। और एक उसके साहित्य में, कजरी के साहित्य में बहुत बार देखते हैं कि पंक्ति के अंत में कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जैसे ननदी या
1: ननदिया,
2: सावर गोरिया या बिरना,
1: हाँ,
2: या फिर बलमु।
1: हाँ।
2: तो इन कजरी के हर पंक्ति में या हर दूसरी पंक्ति में ये एक इसी से समाप्ति होती है।
1: मतलब शायद वो जो रचना है वो बालम को कही गई है या ननदिया के साथ बात हो रही है, हो ननदिया हो हाँ। बालमु, ऐसा कुछ
2: जी, ऐसा जी। तो मैं आपके लिए एक कजरी प्रस्तुत करना चाहूंगी जो द्विज बलदेव जी ने लिखी है और जिसमें बलमू शब्द बार बार आता है
1: जी।
2: तो बोल इस प्रकार है, आई सावन की बहार मोरे बारे बलमू।
1: मोरे बारे,
2: हाँ
1: हाँ,
2: कम उम्र के हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: बाली उम्र के,
2: हाँ बाली
1: अच्छा,
2: उम्र
1: अच्छा,
2: के हैं।
1: हाँ।
2: आई सावन की बहार मोरे बारे बलमू, छाई घटा घनघोर बन में बोलन लागे मोर। ये तो प्रकृति चित्रण है ये। रिमझिम पनिया बरसे जोर मोरे बारे बलमू, धानी चद्दर सियाब, धानी रंग जो है वो सावन में भी पहना जाता है, धानी चद्दर सियाब, और कैसा सारी सब्जी रंगाव, मतलब सब्ज साड़ी जो है, सब्ज
1: हरी
2: हरी वो पहनेंगे क्योंकि चद्दर तो उसके ऊपर ओढ़ी जाती है। धानी चद्दर सियाब सारी सबुज रंगाब, वामे गोटा टकवाब, वामे गोटा टकवाब मोरे बारे बलमो।
1: अच्छा,
2: ऐसी तैयारी है सावन के लिए। हूं तो जई हो कुंज धाम, सुने कजरी ललाम, वहां जाके
3: कुंज धाम में कजरी सुनेंगे, जहाँ झूले राधा श्याम मोरे बारे बलमो,
4: तो कजरी ललाम के हाँ। सुंदर गठन है हाँ।
3: और फिर उनकी छाप आती है, बलदेव क्यों उदास, पुनि आई हो तोरे पास, मानो मोरा विश्वास, मोरे बारे बलमो।
4: बहुत सुंदर
3: जी।
4: शुभा जी, ये जो कजरियां गाई जाती हैं, या आज जो आप कजरी गाने जा रही हैं, वो किसी राग में निबद्ध होती है या ये कुछ मिश्र रूप होता है?
3: नहीं जी, कजरी का की अलग अलग धुन होती हैं, जो कि पारंपरिक प्रस्तुति उनकी होती
4: आपने
3: है।
4: आपने कहा है कि लोक संगीत की तरफ मुड़ते हैं तो ये लोक धुने होती हैं।
3: जी बिल्कुल जी। और विशेष उनकी एक तर्ज होती है अलग अलग, लेकिन कजरी या होरी या झूला इत्यादि, इनको शास्त्रीय संगीत गाने बजाने वाले लोगों ने भी इनकी ओर अपना ध्यान किया है। और तब क्या होता है कि उस धुन को या उस धुन को किंचित परिवर्तित करके उसको एक शास्त्रीय चोला पहना के भी प्रस्तुत किया जाता है
4: जी।
3: यहाँ मैंने ये कोशिश की है कि खमाज राग में इसको प्रस्तुत करूं, और है तो कजरी लेकिन उसको एक शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा।

0: मन कर रहा है कि और भी कचरी सुनूं, और भी सुनूं, लेकिन अब कल के लिए इसे रख देते हैं, आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं श्रीमती 420 फिल्म के इस गाने से। आवाज गीता दत्त की है, बोल जानेसार अख्तर के, संगीत ओपी नैयर का।

0: बड़े रंगीले जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा। बड़े रंगीले जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा।
1: श्रीमती 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज गीता दत्त की थी। जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें हैं, शब्दकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

पटरानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। लीजिए अब सुने भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। फंटूश फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज है, साहिल लुधियानवी की बोल, एस टी बर्मन की तर्ज है।

अपने फन पूछ तो सका, ऐ मेरी दिल पर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा, ऐ मेरी टोपी पलट के आ।

0: दादा।
1: फंटूश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। साहिल लुधियानवी की रचना थी, एसटी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में चलिए एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी का गाया गीत, शब्दकार हसरत जयपुरी, फिल्म का नाम था चोरी चोरी।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: शमशाद बेगम की आवाज़ में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार एन दत्ता, फिल्म का नाम था चंद्रकांता।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

आलम आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शिवन रिजवी ने इस गीत को लिखा था, ए आर कुरैशी ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

मेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। आप सभी को सविता सिंह का शुरुआत कर रहे हैं जाने अनजाने फिल्म के इस गाने से।

जाने अनजाने फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की धुन। एक और गाना आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, मेला फिल्म से। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आरटी वर्मन।

0: आज बना वो लाखपति, कल तक था जो कड़का।
1: लाखों में एक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में फिल्म लाखों में एक का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, आर डी बर्मन ने धुन बनाई थी। हम है राही प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

0: जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। नीरज ने इस गीत को लिखा था सचिन देव बर्मन ने। इस गीत की धुन बनाई थी, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहां से हुजूर।
1: कॉमिक क्रिएटर है।
6: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
6: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
6: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज में करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत मदन मोहन का। कैफे आजमी के बोल आप सुन रहे हैं।

परवाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, कैफी आजमी के बोल थे, तर्ज थे मदन मोहन की, हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम समाप्त करने की आज यही दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
6: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीशा।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
7: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
8: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
4: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
9: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
4: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
10: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य

0: 78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। होर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, हाथों से लिखे खत की तासीर ही कुछ और थी। लफ्ज उंगलियां चूमते थे और पन्ने दिल छू जाते थे। जी हाँ, खत की बात हो रही है। महज कागज का एक टुकड़ा या स्याही की चंद लकीरें नहीं है खत, ये इंसान की वो दिल की धड़कन है जो शायद शब्द रूपी पहनावा पहनकर किसी अपने को भेजा जाता रहा है। इस खत या चिट्ठी या पत्र में होता है किसी अपने के उमड़ते घुमड़ते जज्बात, जो सामने ना कह पाए वो दिल की बात है ना। खत लिखना भी

कला है दोस्तों। जब दिल में ढेर सारा प्रेम हो तो शब्दों का चयन अपने आप विशेष हो जाता है, या यूं कहें थोड़ा कठिन हो जाता है। तब हम एक साथी, एक दोस्त को ढूंढते हैं कि वो खाली पन्ने पर शायद हमारी भावनाएं उतार पाए। शायद ये दोस्त वो जरिया बन जाए जो दो दिलों की दूरी को पाटने का काम कर जाए। और हमारा दिल उस बाबू से मिन्नतें करता है कि मेरा हाल मेरे सांवरिया तक पहुंचा दो ना।

किसी दूसरे से खत लिखवाने में जब संतोष नहीं होता तब हम खुद लिखने बैठ जाते हैं अपने दिल की भावनाएं और पन्ने दर पन्ने भर देते हैं। फिर भी लगता है कि जो बताना चाह रहे हैं वो बात तो लिखी ही नहीं। तब उस खत के साथ कुछ चीजें भेजी जाती हैं जो शायद वो काम कर जाए जो पत्र में लिखे शब्द नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना। खत के भीतर रखा गया एक सूखा फूल या कोई छोटा सा हाथ से बना कार्ड या कढ़ाईदार रुमाल, ये चीजें गवाह बन जाती है कि दूर बैठा व्यक्ति आपको कितना याद कर रहा है। ये उस सुनहरे दौर की बातें हैं साथियों, जब दो प्रेम से भरे दिल आसानी से मिल नहीं पाते थे, तब ये खत उनके स्पर्श का एहसास कराता था। किसी संजीवनी बूटी का काम कर जाती थी चिट्ठी। बार बार पढ़ना, सीने से पत्र को लगाना या उसे ऐसी जगह छुपा देना जहाँ कोई उसे देख ना पाए। कल की भूली बिसरी बातें हो गई है ना, लेकिन ये भी सच है कि खत पढ़कर सामने वाले की यादों में खो जाने का एहसास, उसके होने का कोमल अनुभव, वो आज के इमोजी या मैसेज में कहाँ। हाथ से लिखा खत अपनेपन, समर्पण और गहरे प्रेम का एक दस्तावेज बन जाता है, जैसे कि दिल ही साथ भेज दिया हो

आज के इस युग में, डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात कहना पलक झपकने जैसा हो गया है। जहां प्रेम दर्शाना मिनटों में हो सकता है, वहीं द्वेष जताना भी आसान हो गया है। लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चिट्ठी आना एक उत्सव की तरह होता था। घर का हर सदस्य उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता, अपने ढंग से उसका अर्थ समझता और एक दूसरे को समझाता। खत लिखा जाता था, भेजा भी जाता था और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाले उस खाकी वर्दी पहने, कंधे पर थैला लटकाए, साइकिल पर सवार, गली गली खत को घुमाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं भला? डाकिया बाबू। पूरा मोहल्ला उसका बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि इसके थैले में सिर्फ कागज नहीं, किसी की तकदीर, किसी की खुशी या किसी का गम छुपा होता था। आज के समय ने भले ही उस नीले रंग के अंतरदेशीय पत्र या पोस्टकार्ड की जगह ले ली हो, वीडियो कॉल से आसानी से देखा बोला जा सकता हो, लेकिन डाकिया के उस थैले से निकलती खुशियां, आंसुओं, जज्बातों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली मजबूत डोर है डाकिया और खत उस डोर की पतंग।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: सूर्यवंशी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। तनिष्क बागची और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। संगीतकार थे तनिष्क बागची और विजू शाह।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

जावेद अली और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निशांत खान का था, फिल्म का नाम था ये साली जिंदगी। सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गीत नेहा कक्कड़ की आवाज में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन

0: संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे।

मीत ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर की आवाजों में कुमार का लिखा गीत आप सुन रहे थे फिल्म रॉय से। मीत ब्रदर्स ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज दोस्तों जन्मदिन है बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का। अपने ग्लैमरस अंदाज, शानदार डांस और चुलबुले अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। जन्मदिन के इस खास मौके पर विविध भारती परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

किक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मेट ब्रदर्स अनजान, सुमित सेठी एंड प्रिंस की आवाजें थी, शब्बीर अहमद ने इस गीत को। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

मुबारका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजें थी कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था। आज वर्ल्ड स्टील पैन दिवस है, विश्व स्टील पैन दिवस हर साल 11 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। स्टील पैन दुनिया का अनोखा एक वाद्य यंत्र है जिसे पैन या स्टील ड्रम भी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, इसकी परंपरा को मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। स्टील पैन की उत्पत्ति कैरेबियाई सागर में स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो में हुई और इसे 20वीं सदी में विकसित किया गया। ये वाद्य यंत्र स्टील के ड्रम से तैयार किया जाता है और इसकी ध्वनि में एक अलग ही मिठास और ऊर्जा महसूस होती है। इसकी खासियत यह है कि साधारण दिखाई देने

वाली धातु को कलाकार अपने हुनर से, अपनी कला से मधुर संगीत में बदल देते हैं। स्टील पैन का विकास कैरेबियाई और वहां के रचना धर्मिता से जुड़ा है। धीरे धीरे इसकी धुने द्वीपीय देश त्रिनिदाद और टोबैगो की सीमाओं से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंची। आज स्टील पैन का इस्तेमाल पारंपरिक और आधुनिक संगीत में भी किया जाता है। इस दिवस को मनाने का संदेश यह है कि संगीत की कोई सीमा नहीं है, अथाह है संगीत, सागर की तरह, नदी की तरह, धरती की तरह, आकाश की तरह। एक ध्वनि पूरी दुनिया के दिलों को जोड़ता है। ये तमाशा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर चित्रलोक कार्यक्रम में समय सुन रहे हैं।

0: मोहित चौहान की आवाज में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
0: चलिए एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती से चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

बागी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की, कुमार के बोल थे। मीत ब्रदर्स का संगीत था।

में गाओ है रेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाओ में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा।

0: फिल्म आर आर आर का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी विशाल मिश्रा, राहुल सिप्लीगुंज के, रिया मुखर्जी ने बोल लिखे थे, एमएम क्रेम का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन

हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। ऐश किंग और शाशा तिरुपति की ये आवाजें थीं। संगीतकार थे तनिष्क बागचे। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता पी जयराज की।

0: आलम।
1: पी जयराज का पूरा नाम था पैडी जयराज। आपको ये बता दें कि उनका जन्म 28 सितंबर 1909 को करीमनगर में हुआ था, जो उस जमाने में हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था। पैडी जयराज जानी मानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखिका सरोजिनी नायडू के संबंधी थे। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की थी फिल्मों में सन 1929 में मूक फिल्मों के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से आपको बताएंगे पी जयराज के बारे में। पी जयराज के करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने मूक फिल्मों से लेकर मॉडर्न टाइम तक अनेक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों की भूमिका निभाने का कीर्तिमान पैडी जयराज के नाम है। यहां आपको ये भी बता दें कि संगीतकार नौशाद जैसे कलाकारों को मौका देने का श्रेय भी पी जयराज को जाता है। 28 सितंबर 1909 को निजाम स्टेट के करीमनगर में जन्मे पी जयराज का पूरा नाम था पैडी पाटी जयरूला नायडू। ये उनका आंध्र का नाम था। हैदराबाद में पले बढ़े, इसलिए उर्दू और दक्कनी पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और आगे चलकर ये उनके करियर में बहुत ज्यादा काम आई। आपको बता दें कि उनके पिता एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स देखा करते थे। पी जयराज की शुरुआती तालीम हैदराबाद के रोमन कैथोलिक स्कूल में हुई और उसके बाद 3 साल के लिए उन्हें एक बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया गया, वुड नेशनल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में, जहां उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। इसके बाद पी जयराज पढ़े हैदराबाद के निजाम हाई स्कूल में। बीएससी करने के बाद उनकी तमन्ना थी कि वो नेवी में जाएं, लेकिन उनके बड़े भाई सुंदर राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजना चाहते थे। पी जयराज की खुद की भी यही इच्छा थी कि वो इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करें, पर परिवार ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। अब हुआ ये कि सन 1929 में पी जयराज अपने घर से विद्रोह करके मुंबई आ गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। दरअसल मुंबई में उनके हैदराबाद का एक दोस्त जे हॉस्पिटल में हॉस्टल में रहकर डॉक्टरी पढ़ रहा था। वो उसके पास आकर रुक गए। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल में 1 महीने रहने की व्यवस्था हुई। पी जयराज को समुन्द्र से बे इंतहा प्यार था, बस इसीलिए उन्होंने डॉकयार्ड यानी बंदरगाह में नौकरी कर ली। वहां दोस्त बने रंगिया के सहयोग से उन्होंने पोस्टर रंगने का काम भी किया। उन्हीं पोस्टरों की बदौलत पी जयराज पहुंच गए फिल्में बनाने के स्टूडियो तक। चूंकि बहुत ही मजबूत कदकाठी, बहुत ही नफासत से भरी भाषा, बहुत गजब का फिजीक, संवाद अदायगी में बड़ी कुशलता, तेलुगु थिएटर में काम करने का अनुभव और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि तलवार चलाने की कला तक उन्हें आती थी। जाहिर है कि फिल्म स्टूडियो में पहुंचते ही फिल्में बनाने वाले निर्माताओं को लगा कि ये लड़का तो बहुत काम का है। ये वो जमाना था जब डुप्लीकेट नहीं हुआ करते थे और चाहे घोड़े पर दौड़ना हो, उछल कूद मचानी हो, चलती ट्रेन पर चढ़ जाना हो, ये सारे कारनामे अभिनेता खुद किया करते थे। ये वो दौर था जब एक जाबाज हीरो की निर्माताओं को सख्त जरूरत थी। फिल्म स्टूडियोज में आते ही जयराज को काम मिलने लगा। 30 का दशक था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था। सन 1932 में पी जयराज ने स्वदेशी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। मामा वरेरकर उनके आकर्षक शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और पी जयराज को उन्होंने अपनी पहली फिल्म में नायक की भूमिका के लिए चुन लिया। पर हुआ ये कि ये फिल्म बन न सकी। इस तरह से पी जयराज के करियर की गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले ही ब्रेक लग गया। पर पी जयराज को तो मुंबई में टिके रहना था। उन्होंने मुंबई के भाईखला में एक स्टूडियो में निर्देशक नगेंद्र मजूमदार के साथ सहायक निर्देशक की नौकरी ले ली। ये एक बड़ा मौका था क्योंकि यहाँ पी जयराज ने न केवल सहायक निर्देशक के काम को समझा बल्कि एडिटिंग और उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी को भी समझा। आगे चलकर पी जयराज फिल्मों का निर्देशन भी करने लगे। बतौर निर्देशक पी जयराज की पहली फिल्म थी प्रतिभा, जिसकी प्रोड्यूसर थी देविका रानी। अभिनेता के रूप में मजूमदार ने पी जयराज को अपनी फिल्म जगमगाती जवानी में अवसर दिया, जिसके नायक माधव काले थे। नायक को घुड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए पी जयराज ने मास्क लगाकर नायक के बदले में सारे स्टंट किए। ये मराठी फिल्म साहित्यकार मामा वेरेरकर द्वारा निर्मित स्मार्कलिंग यूथ पर आधारित थी। इसमें जैबुन्निसा के साथ पी जयराज की जोड़ी काफी कामयाब रही। यंग इंडिया पिक्चर्स ने पी जयराज को 35 रुपए महीने के तनख्वाह, खाने और चार लोगों के साथ गिरगांव में रहने की सुविधा देते हुए नौकरी पर रख लिया। आगे चलकर पी जयराज को भारत और जर्मनी के संयुक्त रूप से सहयोग से बन रही फिल्म शिकारी में एक्टिंग करने का मौका मिला। इसकी शूटिंग हैदराबाद में हुई थी। इसके बाद उन्होंने पतित पावन फिल्म में काम किया और यहां से आगे पी जयराज का करियर तेजी से बढ़ा। सुरैया के साथ उन्होंने 7 फिल्में की, हमारी बात, सिंगार, अमर कहानी, राजपूत वगैरह, ललिता पवार, शकीला, देविका रानी, नूर जहां और सितारा देवी जैसी अभिनेत्रियों के साथ पी जयराज ने काम किया।
0: राजू, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जरा अपनी तरफ तो देखो, कैसा फूल सा चेहरा तुमने खाक में मिला दिया है। भगवान ने जीवन इसलिए नहीं दिया है कि इसे रो पीट कर काटा जाए। हम जो कुछ चाहते हैं सब तो हमें नहीं मिल जाता। मैं तुमसे कम दुखी नहीं हूं राजू। जिस तरफ निकलता हूं लोग उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं ये पापी है, इसने एक मासूम लड़की को झूठा सहारा देकर कहीं का ना रखा, ये उसका कातिल है। ये सब कुछ हमें और कौशल्या को सुनना पड़ता।
1: यहाँ सुनते हैं फिल्म सिंगार का ये गाना।

सन 1931 में आलम आरा के साथ बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो पी जयराज ने बदलते हुए दौर के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। उनकी पहली बोलती हुई फिल्म थी शिकारी। 1932 में प्रदर्शित इस फिल्म में पी जयराज ने एक बौद्ध भिक्षु की भूमिका निभाई थी। जब फिल्में बोलने लगी तो अभिनेताओं को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे। पी जयराज को इस दौर में गाना भी सीखना पड़ा था। फिल्म हमजोली में पी जयराज और मलिकाए तरन्नुम नूरजहां की जोड़ी नजर आई थी। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय ने अपनी कंपनी की फिल्म भाभी के लिए पी जयराज को साइन कर लिया और इस तरह मुंबई में पी जयराज की कामयाबी का परचम लहराने लगा। फ्रेंड्स ऑस्टिन फिल्म भाभी के निर्देशक थे। ये फिल्म बेहद कामयाब रही थी। 80 हफ्ते तक कलकत्ता के एक थिएटर में ये फिल्म चलती रही थी।

आपको बता दें कि पी जयराज ने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। वैसे पी जयराज ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें से तकरीबन 160 फिल्मों में उन्होंने नायक की भूमिका निभाई। सन 1956 में पी जयराज ने फिल्म हातिम ताई में काम किया था।

जैसा कि हमने आपको बताया, पी जयराज राष्ट्रीय और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सन 1960 में उन्होंने फिल्म लाल किला में काम किया, 1961 में रजिया सुल्ताना

गौरी जयराज ने बाद के जमाने में कुछ चरित्र भूमिकाएं की और फिल्मों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। सन 1975 में आई फिल्म शोले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म डॉन में उन्होंने जो किरदार निभाया था वो था दयाल का किरदार। सन 1970 फिल्म जीवन मृत्यु में पी जयराज ने रॉय की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में पी जयराज बने थे डॉक्टर कपूर। 1981 में फिल्म क्रांति में उन्होंने महाराजा लक्ष्मण सिंह की भूमिका निभाई थी। बतौर नायक उनकी आखिरी फिल्म थी खूनी कौन मुजरिम कौन। अब आपको बताएं कि बतौर निर्माता पी जयराज ने कौन कौन सी फिल्में बनाई। पी जयराज ने भारत भूषण, नरगिस और अपने खुद के अभिनय के साथ एक फिल्म लॉन्च की जिसका नाम था सागर। सन 1939 में पी जयराज ने अपने घनिष्ठ मित्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के कहने पर सावित्री नाम की एक युवती से विवाह किया था। सावित्री के कन्यादान की रस्म खुद पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी। पी जयराज की 5 संतानें थीं, 2 बेटे दिलीप राज और जय तिलक और 3 बेटियां जयश्री, दीपा और गीता। उनके सबसे बड़े बेटे दिलीप राज एक्टर बने। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म शहर और सपना में उन्होंने एक्टिंग की थी। सन 1950 के जमाने में पी जयराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। सन 1982 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पी जयराज एक कड़ी थे, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मूक फिल्मों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक लगातार काम किया और जबरदस्त काम किया। बाद के जमाने में वो फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं और कुछ छोटे मोटे रोल निभाया करते थे। जब सेहत ने साथ देना छोड़ दिया तो उन्होंने फिल्मों का दामन छोड़ दिया। 11 अगस्त 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। पी जयराज एक पुल थे, मूक फिल्मों से लेकर आज की फिल्मों के बीच का पुल। ये एक कड़ी टूट गई, रह गई तो बस पी जयराज की यादें।

0: आलम।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर संजय भदादा से, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, यानी ऐसे विशेषज्ञ जो हार्मोन्स, ग्रंथियों और एंडोक्राइन सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। तो चलिए करते हैं बातें डॉक्टर संजय भदादा से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने ही की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भदादा, जो चंडीगढ़ के पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च का काम भी किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बुलाने के लिए विविध भारती से।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है, इसका काम क्या है?
1: सो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है, हार्मोन से डील करती है।
0: जी।
1: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफ़ी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस खराब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी के अंदर और नए नए और निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
0: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज्यादा देखी जाती है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशंस होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
0: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के, और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर की आपने बातें की, तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा।
0: जी,
1: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज किया या अपन ने जो चूज किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है, जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या महावारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है, और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है। तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है, अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता है तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है, और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑलमोस्ट 30-40% 50% महिलाओं को होता है, और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
0: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है या मोटापे को देखता है, तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देख रेख करते हैं, उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है, और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं, और इन दोनों इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में, जिनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है, समझी जाती है, वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है, तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे, तो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप एक बार जरूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 4 साल के, या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से, जब हार्मोन ज्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है, और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसके जड़ में नहीं पहुंच रहे। और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से, कि आपको बार बार पथरी बन रही, तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये
0: यहां
1: दूसरा
0: मुझे
1: है।
0: एक कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
1: तो मैं सबसे पहले आपको बोलता हूं, अपन एक ही क्वेश्चन में तीन चार आंसर पूछे हैं, तो वन बाय वन लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
0: जी।
1: तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रोमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो
0: जो
1: उसके
0: टूट
1: टूट
0: फूट हुई है।
1: फूट हुई उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग है ना,
0: अच्छा
1: तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
0: जी
1: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया, फ्रैक्चर हो गया, दो सीढ़ी स्किप हो गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास, पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के।
0: बिल्कुल साफ कर दिया आपने
1: बिल्कुल।
0: इस मामले को।
1: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में,
0: जी
1: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पे पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है, पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है, वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
0: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है, अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं, तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
1: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं,
0: जी
1: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया, तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो, और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
0: जी
1: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे हम हमारे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती है तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूँ कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि माहवारी कैसी चल रही है। माहवारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर माहवारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी माहवारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो

0: कहना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
0: और
1: है।
0: बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह,
1: जी,
0: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर, कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते हैं।
1: अरे गजब,
0: तो अब वो उस
1: ऑब्जर्वेशन।
0: ऑब्जर्वेशन, उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
1: जी,
0: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जाम्पल देता हूँ, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
1: अच्छा।
0: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और
1: जी
0: आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस से महिलाएं बहुत झुक जाती है, हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया। अगर
1: जी
0: उनका
1: जी
0: टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे।
1: जी
0: तो
1: कई बुजुर्गों को दिखाई कि उनकी कमर दोहरी हो जाती है, और ये
0: बिल्कुल
1: पुराने जमाने में
0: ज्यादा होता
1: ज्यादा
0: था।
1: देखा जाता था।
0: और दूसरा बीमारी होता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी,
0: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी छोट हल्का चोट लगी तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां बहुत

0: बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
0: ये बिल्कुल कोर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि
1: जी
0: अगर
1: जी
0: आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, तो वो
0: ये
1: कम हो तब हैप्पी है आदमी।
0: हाँ वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। जैसे
1: जी
0: कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए। अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कोर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके ओके
0: हाँ तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है। इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या
0: सब
1: बात
0: चीज
1: है,
0: वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित एकदम।
0: अनुशासित। जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ
0: अगर आप
1: एकदम,
0: अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
0: और चेहरा देखने से जैसे कि हॉर्मोन्स होते हैं, जिन हॉर्मोन्स को मेल हार्मोन्स और फीमेल हॉर्मोन्स बोलते हैं,
1: जी
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे।
1: जी
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है,
1: ओके
0: तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी
1: जी
0: ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: 6 फुट के
0: सवा
1: ऊपर,
0: छः नहीं 7 फीट का हो सकता है और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे। जैसे
1: अच्छा
0: आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं
1: जी
0: लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो
1: हाँ
0: जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी है, वो ज्यादा है, उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ गए हैं।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो
0: हाँ
1: एशिया के सबसे
0: वो
1: लंबे।
0: पंजाब में भी कुछ है, वो
1: जी
0: भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप उस हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीजें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहाँ एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और
1: जी
0: उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट। जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो बोला कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह, पर कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे, केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ।
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो
1: जी
0: इलाज कैसे किया जाए।
1: जी
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया। और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर और उसकी मामी मामा जी उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें?
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है,
1: जी
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो एकदम एग्जजर्बेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपॉज

0: में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है। जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज, जिसको हम बोलते हैं व्हीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है जहाँ पे व्हीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का।
1: ये
0: मालिश
1: मालिश
0: करने से,
1: करना कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया। तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया, और
1: ओहो
0: जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 हो गया, और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया,
1: जी
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई। तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़
1: तो
0: रहा
1: ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर
0: है।
1: हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल,
1: और डॉक्टर साहब, अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो,
0: तुम
1: आनंद
0: भी
1: बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए?
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा है, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूं मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं, समझ गए।
0: जी
1: मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब
0: जी
1: जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी।
0: जी
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रूमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है,
0: संधिवात
1: शायद
0: जैसी कुछ
1: संधि है।
0: चीज है।
1: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो
0: जी
1: उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा, घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए।
0: जी
1: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
0: जी
1: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
0: दो तरह के हो
1: दो
0: गए।
1: तरह के हो गए। अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले, आज के कुछ सालों पहले, ज्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही जरूरी होता
0: ये
1: है,
0: बहुत याद रखने वाली बात
1: बहुत
0: है
1: ही
0: सभी
1: जरूरी होता
0: श्रोताओं
1: है।
0: के लिए।
1: बिल्कुल। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, कि आपको कब्ज रह रहा है अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है।
0: जी
1: जैसे कि आपका चेहरे का एक, भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है, तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया चेहरे का कंप्यूटर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है।
0: जी
1: लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए, तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है, जैसे आपने फोटो कोई खींचा है, फोटो हिल गया है, जो
0: जी
1: धुंधला हो जाता है, तो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है
0: नूर चला जाता है।
1: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। फिर
0: महिलाओं में भी इस समस्या को लेकर?
1: महिलाओं में दूसरी समस्या उनका, अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है
0: जी
1: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
0: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
1: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूंगा कि यस, 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 99.9% लोगों ने, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
0: जी
1: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप,
0: अच्छा वो सील ही बना ली,
1: सील लगा दी, क्योंकि अब मरीज को कभी कभी बताना भूल जाते तो सील लगा दी कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ
0: जी
1: लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है
0: बहुत ध्यान
1: कुछ।
0: रखना है।
1: हाँ कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है बट जनरली नहीं होता है,
0: ये
1: तो
0: कौन सा वाला है, हाइपो?
1: हाइपोथायरॉयडिज्म बात
0: जी
1: करें।
0: जी जी
1: अब दूसरा इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है,
0: जी
1: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
0: ओके
1: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से, उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो
0: जी
1: इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया आपको सिम्टम्स आ गए तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना
0: और इस
1: पड़ेगा।
0: 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते?
1: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ
0: जी
1: होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली
0: जी
1: ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा ये, तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा,
0: जी
1: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज्यादा, तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है उसमें पसीना ज्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है उसमें काफी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें डायरिया होता है,
0: जी

0: कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफ़ी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा आपने
0: बिल्कुल
1: जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे
0: हाँ,
1: अच्छा उपाय
0: मतलब
1: है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो
1: जी
0: ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है।
0: डायबिटीज एक तरह से कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे,
1: जी,
0: क्या बोलते थे, राज रोग, मतलब ये
1: मतलब
0: राजा
1: बहुत
0: महाराजाओं
1: शाही
0: में
1: लोगों
0: होता
1: को
0: था शायद वो,
1: होता
0: अभी ये
1: था।
0: क्या हो गया, आम रोग,
1: जी
0: अब हर
1: हाँ,
0: किसी को डायबिटीज हो रहा है।
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल
0: आप ये
1: बनता जा
0: कह
1: रहा है।
0: सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है, ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है, बट
1: जी
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है।
1: जी
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरमेंट की वजह से होती है, ये
1: बिल्कुल
0: नेचर एंड नर्चर।
1: नर्चर।
0: तो आपके एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं जेनेटिकली, और उसका बेस्ट आइडिया जैसे आप दुबला पतला पर्सन है उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा, तो ये जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे भी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, तो उसको हम हेल्दी बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है।
1: जी,
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरह से प्रिडिस्पोज करता है डायबिटीज को। तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है
1: जी
0: और सबसे बाद में यहां से जाता है, जो
1: जी
0: ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से,
1: जी
0: तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों,
1: जी
0: कि हम खान पीन है उधर से, सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता है
1: अरे
0: हमें,
1: गजब।
0: है ना,
1: जी,
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के
0: तो
1: जरिए खाना मंगा रहे
0: ऐप
1: हैं।
0: के जरिए खाना मंगा रहे, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया, वो खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है।
1: जी
0: इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, जैसे खास तौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते, और सुबह में टाइम पे, तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग,
1: जी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत
0: वो
1: ज्यादा चल रहा
0: इस पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोग ना अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं,
1: है।
0: ठीक है।
1: जी
0: अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है,
1: जी
0: जैसे रमजान रखते हैं तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते हैं, 12 घंटा भूखे रहते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके
1: जी
0: अंदर अब दिन में खाना नहीं खाते हैं, आप फलाहार लेते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है, तो पहले से कंसेप्ट है। या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती हैं वो कॉमन है, उनको भी अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे वो दूसरों का उतना शायद पता नहीं, तो ऐसे फास्ट रखते थे, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी। पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, अरे इंटरमिटेंट
1: जी
0: फास्टिंग होना चाहिए,
1: जी जी
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से ही
1: ऑलरेडी
0: इंटरमिटेंट
1: है।
0: फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज हो सकता है कि हम ये हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे, जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको,
1: जी,
0: तो उसका रीजन ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले

0: खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए। तो आप हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: उसका बहुत अच्छा असर होने वाला आपके हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे यही सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह
0: उसमें
1: 8 बजे
0: लंच
1: एक
0: आप,
1: ब्रंच जैसा कुछ
0: हाँ
1: है।
0: नहीं उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं कि जैसे
1: जी
0: आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया
0: कुछ
1: हल्का
0: लाइट ले
1: सा,
0: लिया तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही हो गई इंटरमिटेंट
0: ये
1: फास्टिंग,
0: इंटरमिटेंट
1: बारह बारह
0: फास्टिंग
1: तेरह घंटे
0: बारह
1: की।
0: तेरह घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल। तो अब यहां एक गाना सुनते हैं
0: हाँ
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आपसे, चांद सा रोशन चेहरा,
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है,
0: बिल्कुल
1: ओपी नय्यर का संगीत, सुनते हैं।
0: ये चांद।

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक
0: आप
1: बोला।
0: मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता
1: तो
0: थी।
1: सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा।
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है
0: अच्छा,
1: कि आप कितने बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितने बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, दोनों
0: जी
1: पेयरिंग
0: चलिए।
1: में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से,
0: जी
1: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
0: प्रजनन
1: बनाती
0: का
1: है,
0: काम है।
1: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहाँ से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स,
0: तो पूरा शरीर कवर हो गया।
1: पूरा शरीर करोगे। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो रह गई है, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो
0: जी
1: थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है,
0: जी
1: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि बाकी सब चीजें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से,
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है। तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो MD स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना, हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने पेंक्रियास का जिक्र किया, इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
1: तो पेनक्रियाज का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पेनक्रियाज से रिलेटेड डायबिटीज है। पेनक्रियाज का Type 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है,
0: जी,
1: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है। क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
0: क्या
1: तरह
0: वजह
1: से
0: होती होगी इसकी?
1: इसकी वजह, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कि वजन ज्यादा होना,
0: अच्छा,
1: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वजन ज्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को खराब कर लेते हैं किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, अल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है। तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगा।
0: जी
1: टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
0: दोनों हो रही है, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी
1: हाँ, फिर
0: वो
1: से
0: फिर से
1: बैलेंस
0: यहां आ
1: का
0: गया।
1: जरूरत है। बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उससे महिलाएं कैसे निपटें, खासतौर पर
1: तो
0: ये
1: या
0: बातें बताइए।
1: अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मीनोपॉज में जो चेंजेज होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है हमारे को, तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होता है, तो सीवियरिटी ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
0: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं।
1: हाँ एक तरह से हार्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा है घबराहट, उसके लिए हार्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है। तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
0: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
1: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हॉर्मोन्स बहुत जरूरी है बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज़्यादा। तो
0: जी
1: आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले हॉर्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करेगी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और उसके बाद में बाहर की चीज़ों पर आएगी।
0: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना और
1: बिल्कुल, अगर
0: प्रक्रियाएं
1: बैलेंस
0: सही
1: नहीं है तो
0: चलना
1: आप
0: ज्यादा जरूरी
1: जैसे
0: है।
1: थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन एक्सेस में तो बाल गिर सकते हैं। तो ये इस तरह के अगर उनका हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में। तो ये दोनों चीजों का जो अनुभव है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
1: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, जो आम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
0: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स देखते हैं?
1: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन के 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग,
0: अरे
1: ट्वेल्व
0: बाप रे,
1: हंड्रेड
0: 1200!
1: पेशेंट्स। हाँ तो ये 3 दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
0: अनुभव बढ़ेगा।
1: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे देखोगे, बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में अपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ही वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे।

0: ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा, तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
1: जी जी
0: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोज करते हो, आप ट्रीट करते हो, कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं, या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिन्स हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज़ करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है
1: जी
0: और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीज़ों का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ आई कहाँ से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज नेचर
1: संभव है
0: में कहीं
1: नेचर के जरिए।
0: कहीं कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में, या जैसे हमारा यजुर्वेद है, वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीज़ है। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया, उसके लिए हमने हड़ जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
1: क्या बात है।
0: हाँ
1: तो
0: तो
1: रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है
0: हाँ, उसमें
1: मेडिकल की
0: एक
1: दुनिया में।
0: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते हैं, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एन्जॉय दैट, और पेशेंट एक्सपीरियंस तो आई है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है, पर बाहर भी कभी जाते तो दे वे लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है, वो
1: जी
0: सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस
1: हाँ
0: तरफ,
1: हाँ
0: या दैट इज
1: हाँ
0: कहने
1: वो
0: का
1: ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
0: ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हाँ
1: क्या बात है,
0: या
1: सुनते राजस्थान कनेक्शन सामने आ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: राजस्थान
1: सुनते
0: मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सब रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: रहना ही चाहिए।
1: ये गाना सुनते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ गाना
0: बिल्कुल।
1: है।

0: डॉक्टर साहब, बॉटम लाइन ये है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें नियमित रूप से कराने चाहिए, खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को?
1: या तो मैं ये बोलता हूं कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज और थायराइड।
0: जी
1: बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज़ होती है पर उनको पता नहीं चलता है,
0: जी तो इसलिए टेस्ट बहुत
1: तो
0: मायने
1: टेस्ट से
0: रखता
1: ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज़ पता चलता था, बात है कि वो आँख का ऑपरेशन कराने के, तो आँख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ और शुगर आ गया, है ना। या कोई
0: जी
1: हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन की चेकलिस्ट दी, भी ये टेस्ट कराओ, तो डायबिटीज़ का टेस्ट कराया तो आ गया। तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज़ चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो
0: जी
1: डायबिटीज़ के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का रीडिंग देता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
0: जी
1: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं।
0: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है?
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जग रहे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा। तो
0: जी
1: ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका ज़रूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है, पर मुझे खास तौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, निकलोगे नहीं। तो उसका वो ये है कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है, और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए। उसमें T3 T4 TSH एक टेस्ट होता है,
0: जी
1: थायराइड का ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो
1: बिल्कुल
0: इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय बरादा, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा, और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इश्यू है जो कि आपने क्वेश्चन की जरा हाईलाइट किया, उनको फायदा होगा उससे। धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बरारा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं उषा अमोनकर के गाए इस भजन के साथ।

उषा अमोनकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुनते हैं हालिम साबिर का कलाम। इसे आवाज दी है भूपेंद्र ने, संगीत मधु मुखर्जी का है।

0: आ रही हैं
1: महबूबा
0: विविध भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: और आइए अब सुनते हैं शुभा मुदगल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

शुभा मुदगल की आवाज में अभी आपने ये गैर फिल्मी गीत सुना। और आइए आप सुनते हैं गुरु रंधावा और निकिता गांधी की आवाजें। गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वाणिज्य राम की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं दानिश बरेलवी का ये कलाम।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अरिजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार का लिखा ये औकार फिल्मी गीत। इसे संगीत में ढाला है अमाल मलिक ने।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश असीस कौर की आवाज है, जानी का लिखा ये औगार फिल्मी गीत है और बी प्राक का संगीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
3: सिद्धांत महादेव के संगीत निर्देशन में हम आपको मोती सुल्तानपुरी का लिखा एक औगार फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं, आवाज जावेद अली की।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
0: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
0: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
0: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी,
0: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
0: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
2: अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
2: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओ, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
2: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
2: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहां आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
2: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
2: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के 2 बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: Pataki!
1: Jai!
0: Bharat Pataki!
2: Kamal Dar ke samne nare lagane ki aisi himmat! Ki chahta hai inhe goliyon se bhun daalun! No! मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
3: इंतजार। जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। तेरह अप्रैल

0: गरीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
1: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे, ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
1: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
1: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
2: मारो, मारो,
1: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
2: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
0: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अवर टर्न, फायर।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: Yeah.

0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
1: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डार।
3: यस सर।
2: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नहीं दी?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
3: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
1: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बद्रुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
3: छेती अठारह,
2: छह चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
0: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

ये आवाज थी हिमेश रेशमिया की, और आइए अब सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की बोल, आवाज रूप कुमार राठौड़ की। फिल्म का नाम है बॉर्डर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत नीति मोहन और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है किक।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

साजिद वाजिद की संगीत निर्देशन में समीर अंजान का लिखा गीत सुनिए, आवाजें नीरज श्रीधर और साथियों की, फिल्म का नाम हाउसफुल 2।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सेम भट्ट की आवाजों में, फिल्म का नाम है मर्डर 2। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के कार्यक्रम सुरीला सफर का। क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है हमने और यही हो भी रहा है। हमारे श्रोता रेडियो की उस ओर बैठे हैं हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में कोई भी रिश्ता तभी कायम रह सकता है जब जहां वहां कुछ संवाद हो, है ना? हाँ ठीक है, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि संवाद से ज्यादा आपसी समझ होनी बहुत जरूरी है, लेकिन संवाद के बिना जीवन बिल्कुल नीरस लगता है। क्यों? जैसे कि सुरीला सफर में हम आपके लिए आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे करते हैं। सोचिए अगर हम इधर बात न करें तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना? और उधर से आप अपने संवाद, अपनी बातें, अपने विचार हम तक न पहुंचाएं तो ये कार्यक्रम कितना अधूरा होगा। इसलिए जीवन में संवादों का महत्व बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें किसी भी गीत में आरंभ में या बीच में कहीं भी छोटे छोटे संवाद हमें सुनने को मिल सकते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते जब बीच में हमें कोई छोटा सा संवाद सुनने को मिलता है ना, तो पता है क्या होता है, एक पल के लिए हम उस संवाद को सुनने लग जाते हैं कि अरे ये अभिनेता या ये अभिनेत्री क्या कह रही है, ये गायक या ये गायिका क्या बोल रही है बीच में। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। तो वो संवाद हमें बहुत कुछ कह जाते हैं गीतों के जरिए कि इस गीत में ये संवाद किस लिए रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। और यकीनन जब आज हम सुरीला सफर पर निकल चुके हैं तो संवाद करते रहेंगे, है ना? आपस में बातचीत हम करते रहेंगे। हमारी इबारत भी आपने पढ़ ली है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत को आपके सामने रख देते हैं। आज हमने लिखा है कि रिश्तों में संवाद बनाकर रखिए, संवाद हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आज के गीत केवल पुराने गीत समझकर मत सुनिएगा, इनमें छिपी बातचीत को सुनिएगा। किसी में प्रेम मिलेगा, किसी में बिछड़ने का दर्द, किसी में शिकायत, किसी में उम्मीद, किसी में रिश्तों की मिठास और किसी में जिंदगी की सच्चाई। और शायद किसी संवाद को सुनते सुनते आपको भी अपने जीवन का कोई संवाद याद हो आए जो आपने किसी खास व्यक्ति से किया था, है ना? कोई व्यक्ति याद हुआ है जिसे बहुत कुछ कहना था लेकिन आप

0: ने कहा नहीं तो आज के इस कार्यक्रम की एक तरफ से एक छोटी सी बात यही है कि रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाकर रखिए, उनके बीच संवाद कभी बंद मत होने दीजिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते जीवित रहते हैं, और जहां रिश्ते जीवित रहते हैं वहीं जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत गीत बन जाती है। तो इसी एहसास के साथ सुनिए आज का ये कार्यक्रम, और हाँ, इन गानों में आने वाला संवाद शायद आपको भी अपने जीवन की कोई कहानी याद दिला दे। तो समझ आया कुछ कि आज कैसे होंगे गीत? भाई हमारे श्रोता तो समझ चुके हैं कि आज के गीतों में आरंभ में या बीच में, यानी पूरे गीत में कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा कोई ना कोई संवाद जरूर होगा, है ना? तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर। बताइएगा इस गाने में जो संवाद बोले जा रहे हैं वो फिल्मी पर्दे पर किस अभिनेता और अभिनेत्री ने किए हैं?
1: अरे देख रहे हैं?
2: तो देखने दो।
1: जल भी रहे हैं?
2: अरे तो चलने दो।
1: खुली सड़क है बाबा।
2: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए।

वाह, हमारे श्रोता ने फटाफट जवाब भी दे दिया है कि ये है ऋषि कपूर और नीतू सिंह पर्दे पर। फिल्म का नाम भी लिख दिया है आपने, खेल खेल में।

जी तो अभी आपने सुना फिल्म खेल खेल में का ये गाना युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी। गुलशन बावरा की रचना थी राहुल देव बर्मन की धुन। जी तो इस गाने के आरंभ में जो संवाद कर रहे थे आपने बिल्कुल सही कहा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। और वैसे देखा जाए तो किशोर कुमार और आशा भोंसले ये संवाद कर रहे थे गाने के तौर पर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप रिश्तों की गहराइयों और इसे जीवंत करने वाले संवाद को लेकर आई हैं। आज का संवाद सच में सुंदर होना चाहिए। रिश्ते भावनाओं की वो नाजुक डोर है जिन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल के संवाद से संजोया जाता है। संवाद किसी भी रिश्ते की वो जीवनदायिनी सांस है। शब्द रिश्तों के वो मोती हैं जिन्हें यदि सही समय और सही आदर के साथ पिरोया जाए तो वो जिंदगी को एक

0: बेहद खूबसूरत माला बना देते हैं। संवाद ही वो खुशबू है जो रिश्ते की गुलशन को हमेशा महकाए रखती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में हम ऐसे पुराने गीतों से रूबरू होंगे जिनमें जिंदगी से जुड़े दिलचस्प संवाद हैं। आपकी इस मेहनत को दिल से सैल्यूट। और आप सभी सुनने वालों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि लगातार आप इस सफर में हमारे साथ बने रहेंगे, इसलिए है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से समझ में आ गया है कि धुनों को सुनते सुनते शायद आपको भी कोई भूला हुआ चेहरा याद आ जाए, कोई ऐसा जिसे आप कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे पर तब वक्त ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज ही अपने अपनों से दिल की बात कहिए, दूरियों को मिटा दीजिए। शब्दों का ये पुल ही जिंदगी को महकाता है। जहां बात होती है वहीं प्यार सांस लेता है और जहां प्यार है वहां हर पल एक सुरीला नगमा बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद रिश्तों की वो डोर जो दिखाई नहीं देती मगर बांधे रखती है। रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बात करते रहने से जीवित रहते हैं। कभी दो मीठे बोल मन की दूरी मिटा देते हैं तो कभी एक छोटी सी शिकायत रिश्ते में छिपी मोहब्बत को सामने ले आती है। संवाद बंद होते ही रिश्तों में खामोशी उतरने लगती है और खामोशी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए, उनमें बात बनाकर रखिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते भी सांस लेते रहते हैं। आज सुरीला सफर में ऐसे गाने हो सकते हैं जिनमें प्रेम शिकायत पुकार सवाल जवाब मिलन विरह और अनकही बातों का संवाद होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी संवाद समस्या ये है कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि उसे उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। संवाद यानी बराबर बोलना और संवाद यानी बराबर सुनना भी। जिस बातचीत से वाद विवाद की स्थिति न पैदा हो वही सही अर्थों में संवाद कहलाता है। आपसे रिश्तों की नाजुक डोर को संभालने के लिए आपस में संवाद होते रहना बहुत जरूरी है। आजकल आपसे रिश्तों में जो खटास या अबोलापन आ गया है उसका मुख्य कारण संवाद का न होना है। संवाद करते रहने से दो अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति भी आपस में अच्छे मित्र बन सकते हैं। बहुत सुंदर विचार आप सभी के। जी तो हमारे श्रोता ने कहा कि आप हमेशा दो ही सवाल क्यों करती हैं, आप भी हमसे ज्यादा संवाद कीजिए ना इस कार्यक्रम में। तो चलिए आज हम दो की जगह बहुत सारे सवाल आपसे कर लेते हैं। तो क्या पूछें बताइए आप, कैसा कैसा सवाल चाहते हैं आप लोग कि हम आपसे क्या सवाल करें। भाई हम तो जब आज कार्यक्रम संवाद पर लेकर आए हैं कि इन गानों के बीच में चाहे छोटा सा संवाद सुनने को मिलेगा लेकिन हमारा ध्यान जरूर खींचता है वो संवाद अपनी ओर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में या आपके लिए संवाद का असली अर्थ क्या है, सिर्फ बात करना या एक दूसरे को समझना। बताइएगा कि आप जब किसी से संवाद करते हैं घर परिवार रिश्ते नाते कहीं भी, तो क्या अर्थ होता है उसका। किसी को समझने के लिए संवाद करते हैं या सिर्फ आपका उद्देश्य एक बात किए रखना कि हाँ हमारी बातें होती रहनी चाहिए, ऐसा कोई विचार आपके दिलो दिमाग में रहता है, क्या रहता है किसी संवाद जब आप किसी से संवाद करते हैं तो। इसका जवाब कम से कम शब्दों में आपको देना है, ज्यादा शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं को हमें शामिल करना होता है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर की रचना, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम। बताइएगा कौन अभिनेता किस अभिनेत्री से ये बात कह रहे हैं।
1: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

0: आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।
1: याद आई अभिनेता।

जी तो आप बताइएगा कि पर्दे पर कौन से अभिनेता ये गीत गा रहे थे और किस अभिनेत्री को ये बात कह रहे थे। आपके लिए बहुत सरल सवाल पूछ रही हूँ आज मैं, है ना। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप संवाद विषय के साथ हम सभी के साथ संवाद करने वाली हैं, अच्छी बात है। संवाद सिर्फ बोलकर ही नहीं लिखकर भी किया जा सकता है, जो हम सभी इस पेज पर अभी कर रहे हैं। संवाद मतलब संवाद यानी समतोल बातचीत, जो बात मुंह के तराजू से तौली जाती है, अच्छा, और तोल मोल से बोलने पर या संवाद करने पर कोई बिखराव की स्थिति भी नहीं होती, जिसके कारण आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। संवाद रूपी डोर हमें दिखाई नहीं देती, मगर एक दूसरे से बांध जरूर देती है, फिर वो घर परिवार हो या मित्र मंडली। जिंदगी सेहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार भरे संवाद में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिख दें कि आज आपकी आवाज अच्छा हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। अरे वाह क्या बात है, हमें भी इंतजार रहता है कि हमारे सभी श्रोता हमारे साथ सुरीला सफर के इस यात्रा पर निकल जाए, तो आप भी निकल पड़े हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम संवाद से सजने वाली है। संवाद जीवन का वो सबसे सुंदर जरिया है आपसी संबंधों को बनाए रखने का, पर आज के इस युग में संवाद की जगह केवल व्हाट्सएप ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखी है। पर फिर भी फोन पर अथवा सामने वाले बातचीत करते हैं, उसका अपना एक अलग ही आनंद होता है और उसमें हमें प्रेम आत्मीयता और अपनापन का एहसास होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि संबंधों की सबलता में संवाद सदैव सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। सामयिक हो या सर्वकालिक संपर्क सूत्र ही सामाजिकता का सुदृढ़ स्तंभ है। सकारात्मक और सृजनशील संवाद समय सापेक्ष है मगर सुखांत होते हैं। सीमित संसाधनों में भी सर्वमान्य सिद्धांत संवाद ही है। अति आशा की अपेक्षा संवादों में विवाद की जड़ है। समस्या समाधान का एकमात्र विकल्प संवाद है, विवाद नहीं। संबंधों को संबोधित करती हुई सुरीला सफर का ये कार्यक्रम हमें आज बेहद अच्छा लगेगा, ऐसा आपने मेरी तारीफ में फिर दो पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूं। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा प्रणाम है, आज की इबारत रिश्तों को संवाद के जरिए जोड़ने वाली है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सफर में बातचीत या कहें संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जान या समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूसी या फिर आने वाली सुखद कल्पनाओं की जिसे साकार रूप में देखना है, ये सभी बातें जीवन को साकार करते संवाद ही हैं, जो हर रूप में ढलकर बातों को सजीव करते हैं। और यही बातचीत जीवन का मजबूत स्तंभ है। एक दूसरे से परिवार में, आसपास, समाज में, दिन दुनिया में सकारात्मक संवाद हम सभी को जोड़कर रखता है और हमें ये संवाद बनाए रखना चाहिए। जी तो अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पिछले सवाल का जवाब दिया है कि नहीं, अभी हमें देखने पर पता चलेगा कि क्या आपने सोचा है कि संवाद हम किसी से बात करने को लेते हैं या किसी को समझना भी संवाद का एक तरीका होता है। तो बताइएगा आप अपने जीवन में जब संवाद करते हैं और सामने वाले से जब संवाद सुनते हैं तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का संवाद हम एक दूसरे से किया करें। बताइएगा अपने दोस्तों से, घर वालों से, बच्चों से किस तरह के संवाद आपके होते हैं। एक माता पिता किस तरह का संवाद अपने बच्चों से करता है और करना चाहिए, इस पर भी हम बात कर सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनते

हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम यादों की बारात। इनका साथ दे रही हैं आशा भोंसले।

जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में बातचीत या कहें संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जाने समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूस भरी, या फिर आने वाले सुखद कल्पनाओं की जिसे हम साकार रूप देना चाहते थे, ऐसी बहुत सी बातें हम संवादों के जरिए कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद केवल बातचीत करने का या आपसी बोलचाल ही नहीं है, ये दिल को दिल से जोड़े रखता है। संवाद हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रेम विरह शिकायतों से जीवन के सत्य जो है जीवंत बने रहते हैं। ध्यान रहे कि संवाद जारी रखने वाली स्थिति में भी जो मौन की गहराई और शब्दों की पवित्रता के माध्यम से रिश्तों की डोर जुड़ी रहती है, संवाद प्रेम को प्रकट करता है और रिश्तों में दूरी नहीं आने देता। विरह में संवाद की तड़प होती है, यादों के जरिए संवाद जारी रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रोज ही सावन आया, घटा छाई, सुहाना मौसम, हरियाली, बस इन्हीं पर संवाद हो रहा था। आज आप आए और आपने भाई बहन के संवाद सुनने का इंतजार है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने इस कार्यक्रम को आपके साथ अंत तक सुनना है और आज की इबारत बहुत दिलचस्प लिखी है। इसमें गानों का संग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें सुनकर और महसूस करके अधिक आनंद आएगा। हमारे रिश्तों में मधुर मिठास घोलने वाले गानों को सुनने से आसपास के वातावरण में संगीत गूंजने लगता है और जो भी हम कहना चाहते हैं वो सब गीतों के माध्यम से हम कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बहुत उत्साहित हूँ रिश्तों में संवाद बनाए रखने के लिए, इस महत्व को समझाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते मजबूत रखने के लिए संवाद होना बेहद जरूरी है। आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र उपाय है। संवाद न होने पर छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। संवाद वाले गीत बहुत से हैं पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है श्रोताओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। हम दिन रात अपनी जिंदगी का गीत गाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते निभा तो रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, परिवार, भागदौड़, लेकिन जिंदगी के बीच में कभी कभी कोई संवाद आ जाता है। किसी अपने की कही भी कोई एक बात, माँ की कोई सीख हमें मिल जाती है, पिता की कोई डांट मिल जाती है, जीवन साथी का कोई सवाल मिल जाता है, बच्चे की कोई मासूम बात सुनने को मिल जाती है और हम अचानक रुक जाते हैं, सोचते हैं क्या मैं सच में यही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था। तो इसीलिए फिल्मी जो गाने हैं इनके बीच में आने वाला संवाद भी केवल ये मनोरंजन नहीं है, ये हमें ठहरने का एक अवसर देता है। हाँ, कि क्या कहा जा रहा है इस गीत में जो नायक और नायिका एक दूसरे से कह रहे हैं। तो यही इसलिए आज हमने इन गीतों को चुना ताकि हम एक पल के लिए ठहरे, कुछ सुने, कुछ समझें, कुछ सोचें कि रिश्तों में संवाद कितना जरूरी है। और इसलिए इन गीतों के बीच आने वाले संवाद एक बहुत बड़ी सीख हमें दे जाते हैं कि रिश्तों में केवल प्यार होना काफी नहीं है, प्यार को शब्द देना भी बहुत जरूरी हो जाता है ना। बताइए किस फिल्म का गाना है और पर्दे पर कौन अभिनेता और कौन नायिका है। इस गीत में भी आपको संवाद सुनने को मिलेंगे, है ना। और बताइएगा कौन ये संवाद कह रहा है किसे।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी, हमारे श्रोताओं ने कहा कि ये फिल्म आंधी का गीत है और इसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन आपस में संवाद कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा आपने। और हम आपको बता दें, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी, गीतकार जो गीतकार थे गुलजार साहब थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डायलॉग वाले गीत से सजी हुई सुरीला सफर की संगीतमयी सफर में हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संवाद जरूरी नहीं मुंह से बोले, मगर आपको किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आंखें चेहरे के भाव बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह देते हैं। और आपने सही कहा, रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है। मुझे भी कुछ कहना है, पहले आप, शायद ये गीत शामिल हो सकता है। वैसे हम आपको बता दें, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें संवाद है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का एक समय जो है निश्चित है, तो हमने उसी अर्थ में हमने जो गाने चुने हैं, आपके गानों से हमारे गाने कितना मेल खा रही ये आप देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई अन्य गानों का जिक्र भी किया है जिनमें संवाद हमें सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो फेसबुक खोलने से पहले अच्छा मुझे याद किया आपने और पोस्ट देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज भगवान जी से शायद कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। गीतों में जो बात होगी, तकरार होगी, वो तो होगी, पर आप जो कुछ बातें करेंगी, दो प्रश्न करेंगी, उनके बहुत सारे उत्तर भी देने होंगे। अरे तो आज आपने इतना हल्का क्यों मांगा, बहुत कुछ मांगना था आपको, है ना। ये कार्यक्रम तो रोज होता है और इस कार्यक्रम के जरिए तो आप हर वक्त हर किसी उद्घोषक से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो गानों में थोड़ा सा अलग हमें सोच मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि इन दिनों झूलों और सावन पर कार्यक्रम ज्यादा केंद्रित हमें सुनाई दे रहा है, आपने कुछ थोड़ा इसको बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से बिल्कुल साफ है कि आज के गीतों का केंद्र संवाद है, यानी ऐसे पुराने गीत जिनमें दो लोगों के बीच बातचीत, सवाल जवाब, मन की बात, शिकायत, प्यार या कोई अनकहा एहसास है, हमें कुछ गीत समझ आए, आपने भी कुछ गीतों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीच में चल

मीठी बातचीत है तो रूठना मनाना भी है इन गानों में, बल्कि प्यार है, गहरा करने का बहाना भी है। एक तरफ से शिकायत है, दूसरी तरफ मनुहार है, और इस तरह से जो गीत पिरोए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूब लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन बातचीत बंद नहीं करा करो, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का निदान होता है। एक श्रोता ने कहा है कि सफर में आप काफी समय बाद आई हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो सफर में आते ही रहते हैं, और आप हर दिन एक न एक सफर तो तय करती हैं ना अपनी जिंदगी का। एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार के हल निकल सकते हैं, मनमुटाव दूर हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों को संवाद से जोड़कर जरूर रखिए। और एक श्रोता ने कहा है कि हमारे प्रांत बिहार में लोग संवाद करते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बतरस या बतकुचन कहते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है सुबह के दिनचर्या से, महंगाई से, बच्चों और घर की समस्याओं, शारीरिक तकलीफ से, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात चली जाती है, और वहीं संवाद फिर बदकुचन पर चली जाती है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग गया तो वो मुंह बनाकर उठकर चल भी देता है। हो सकता है दो तीन दिन बाद फिर किसी से बात नहीं करें, मिले भी नहीं, पर इस तरह जो बदकुचन होता है उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो हम भी आपसे जब संवाद कर रहे हैं तो ये पूछना हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा संवाद रहा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए। मतलब आपने किसी से कभी कोई अच्छा संवाद किया होगा, या आपको लगा होगा कि नहीं, मैंने जरूरत से ज्यादा किसी को गलत कह दिया है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई संवाद जिसे आप नहीं भूल पाए हैं? बस उस घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। और हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कभी ऐसा कोई संवाद आपने किया हो कि आपके कुछ शब्दों ने आपके और किसी अपने के बीच की दूरी कम कर दी हो, बड़ा नहीं दी हो बल्कि कम कर दी हो। याद कीजिए वो घटना, वो शब्द, वो लम्हे जब आपको लगा होगा कि हम बहुत दूरी पर थे, लेकिन जब हमने प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, आपस में प्यार भरी संवाद की अदायगी की, तो हम कहीं थोड़ा करीब आ गए। सुनते हैं राजेश रोशन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की।
0: अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने कहा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये गाना देवानंद साहब ने हेमा मालिनी जी के लिए गाया था फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है कि देवानंद है पर्दे पर और हेमा मालिनी से वो ये बात कह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आप कुछ नया सब्जेक्ट लेकर ही आती हैं जो मनोरंजन भी करता है और एक संदेश भी देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद बहुत जरूरी है लेकिन बस संवाद विवाद में नहीं बदलना चाहिए और अपनी बात कहना सही है पर सामने वाले की भी तो सुनना जरूरी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल खोए।

0: आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं और सुनते हैं अमिताभ बच्चन के साथ लता मंगेशकर जी की आवाज। फिल्म का नाम है सिलसिला, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरि का संगीत। आपको बताना है, बिल्कुल सीधा साधा जवाब देना है कि पर्दे पर किस नायिका को ये बात कही जा रही है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की, फिल्म का नाम था सिलसिला। दोस्तों कहते हैं कि कितने ही रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच प्रेम नहीं था। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो बहुत था लेकिन वहाँ संवाद नहीं था। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बात नहीं करते थे, मन में शिकायतें थी लेकिन कहते नहीं थे, दर्द था लेकिन बताते नहीं थे, समझाते भी नहीं थे। इसलिए पुराने फिल्मी गीतों में जब अचानक किसी कलाकार की आवाज आती थी तो दर्शक केवल गीत नहीं सुनता था बल्कि उस किरदार के साथ उस पल को जीने लगता है ना। कई बार फिल्मों में होता है, आज भी होता है, जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो इस किरदार को जीने लग जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है। और अक्सर हम उस कहानी को अपनी कहानी समझकर या अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनना पसंद भी करते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतकारों ने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं जिनको अभिनेता अभिनेत्री द्वारा संवाद करते करते गाया गया। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। संवाद होना बहुत जरूरी होता है, आज के गाने भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, एक श्रोता ने, जब हमने आपसे पूछा था संवाद के बारे में सवाल, आप लिखते हैं कि मुझे अपने पापा से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो थोड़ा भूलने लगे हैं, तो जब हम उनसे संवाद करते हैं उन्हें याद आ जाता है, नाम याद आने लगते हैं, पुरानी बातें वो याद करने लगते हैं, फिर वो किस्से सुनाने लगते हैं और डॉक्टर ने भी उनसे बहुत बात करने को कहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की बारात फिल्म का गीत आपने तारिक और जिनत अमान के बीच का संवाद था वो सुनवाया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, जब बात संवाद पर आ ही गई है तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात सिलसिला फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। अरे हमने तो आपको सुनवा भी दिया है। कहाँ हैं आप, सुन लिया ना आपने, जवाब दीजिएगा हमें हाँ या ना में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अकेले ही ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, वो भी आपकी संवाद अदायगी के साथ। मैं तो बचपन से रेडियो सुन रही हूँ जब भी समय मिलता है, मगर कुछ समय से मेरी बेटी भी सुनने लगी है, उसे आपकी आवाज पसंद है। मुझे भी तो कहती है जब आप आए तो मुझे बताना, आज वो कॉलेज नहीं गई और मैं उसे बताऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा। अरे इतना प्यार इतना स्नेह है ना सर माथे पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद एक अद्भुत शैली है, अपने आप से बात करना भी एक प्रकार का संवाद ही तो है। मैं जब 20 साल का था तब भीतर एक बात मेरे मन में आई, उद्भव हुई कि गुलाब जामुन में सुख नहीं है, फिर अंदर ही संवाद हुआ कि सुख सबको मिल रहा है तो किधर से आ रहा है। इस तरह साबित करने का मौका कुछ महीने बाद संवाद करने का मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हद से ज्यादा संवाद भी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद सदा मधुर और मीठे हो तब तो अच्छे हैं, वरना चुप ही सही है। वैसे जहां प्रेम और दिल मिले होते हैं वहां अधिक संवाद की आवश्यकता होती भी नहीं है, वहां मौन में भी दिल की बातें दिल से हो ही जाती हैं। एक श्रोता ने कहा, संवाद हमेशा प्यार से होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं मेरे मैरिज से पहले एक बार मैं और मेरी होने वाली वाइफ घूमने गए थे एक गार्डन

0: में बैठकर मैंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया, मुझे अचानक ख्याल आया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। मैंने कहा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? तो उन्होंने बताया कि आप ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का आपने मौका दिया ही नहीं, तो क्या बोलूं। फिर हम दोनों बहुत हंसे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो जिंदगी में संवाद बहुत है, संवाद वही होना चाहिए जिसमें सुगंध और प्यार हो, तभी मजा आता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं संवाद गीतों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें अभी तक लगभग 30 गीतों के नाम शामिल हो चुके हैं, क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में हम दर्शन करने गए हैं धर्मपत्नी के साथ, और वहां से आपके सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, और आप पवित्र गुफा से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, बाबा अमरनाथ की सभी को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शिव हरि का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें, फिल्म का नाम चांदनी।
1: चांदनी

Ha!

जी तो सुरीला सफर कार्यक्रम में बस आज यही तक, इतना ही कहेंगे कि सहमति असहमति के बीच भी हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से संवाद करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, हाथों से लिखे खत की तासीर ही कुछ और थी। लफ्ज उंगलियां चूमते थे और पन्ने दिल छू जाते थे। जी हाँ, खत की बात हो रही है। महज कागज का एक टुकड़ा या स्याही की चंद लकीरें नहीं है खत, ये इंसान की वो दिल की धड़कन है जो शायद शब्द रूपी पहनावा पहनकर किसी अपने को भेजा जाता रहा है। इस खत या चिट्ठी या पत्र में होता है किसी अपने के उमड़ते घुमड़ते जज्बात, जो सामने ना कह पाए वो दिल की बात है ना। खत लिखना भी एक कला है दोस्तों। जब दिल में ढेर सारा प्रेम हो तो शब्दों का चयन अपने आप विशेष हो जाता है, या यूं कहें थोड़ा कठिन हो जाता है। तब हम एक साथी, एक दोस्त को ढूंढते हैं कि वो खाली पन्ने पर शायद हमारी भावनाएं उतार पाए। शायद ये दोस्त वो जरिया बन जाए जो दो दिलों की दूरी को पाटने का काम कर जाए। और हमारा दिल उस बाबू से मिन्नतें करता है कि मेरा हाल मेरे सांवरिया तक पहुंचा दो ना।

जैसे खत लिखवाने में जब संतोष नहीं होता तब हम खुद लिखने बैठ जाते हैं अपने दिल की भावनाएं और पन्ने दर पन्ने भर देते हैं, फिर भी लगता है कि जो बताना चाह रहे हैं वो बात तो लिखी ही नहीं। तब उस खत के साथ कुछ चीजें भेजी जाती हैं जो शायद वो काम कर जाए जो पत्र में लिखे शब्द नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना, खत के भीतर रखा गया एक सूखा फूल या कोई छोटा सा हाथ से बना कार्ड या कढ़ाईदार रुमाल, ये चीजें गवाह बन जाती है कि दूर बैठा व्यक्ति आपको कितना याद कर रहा है। ये उस सुनहरे दौर की बातें हैं साथियों, जब दो प्रेम से भरे दिल आसानी से मिल नहीं पाते थे, तब ये खत उनके स्पर्श का एहसास कराता था। किसी संजीवनी बूटी का काम कर जाती थी चिट्ठी, बार बार पढ़ना, सीने से पत्र को लगाना या उसे ऐसी जगह छुपा देना जहां कोई उसे देख ना पाए। कल की भूली बिसरी बातें हो गई है ना, लेकिन ये भी सच है कि खत पढ़कर सामने वाले की यादों में खो जाने का एहसास, उसके होने का कोमल अनुभव, वो आज के इमोजी या मैसेज में कहां। हाथ से लिखा खत अपनेपन, समर्पण और गहरे प्रेम का एक दस्तावेज बन जाता है, जैसे कि दिल ही साथ भेज दिया हो।

आज के इस युग में डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात कहना पलक झपकने जैसा हो गया है। जहां प्रेम दर्शाना मिनटों में हो सकता है, वहीं द्वेष जताना भी आसान हो गया है, लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चिट्ठी आना एक उत्सव की तरह होता था। घर का हर सदस्य उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता, अपने ढंग से उसका अर्थ समझता और एक दूसरे को समझाता। खत लिखा जाता था, भेजा भी जाता था और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाले उस खाकी वर्दी पहने, कंधे पर थैला लटकाए

साइकिल पर सवार गली गली खत को घुमाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं भला, डाकिया बाबू। पूरा मोहल्ला उसका बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उसके थैले में सिर्फ कागज नहीं, किसी की तकदीर, किसी की खुशी या किसी का गम छुपा होता था। आज के समय ने भले ही उस नीले रंग के अंतरदेशीय पत्र या पोस्टकार्ड की जगह ले ली हो, वीडियो कॉल से आसानी से देखा बोला जा सकता हो, लेकिन डाकिया के उस थैले से निकलती खुशियां, आंसुओं, जज्बातों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली मजबूत डोर है डाकिया, और खत उस डोर की पतंग।

0: बहस किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को बधाई दे रहे हैं, जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी।

0: समाचार रांची।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
0: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम उड़न खटोला, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहेब।

0: लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था उड़न खटोला।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनिए। गायिका है आशा भोंसले और फिल्म का नाम है जागते रहो।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: और लीजिए अब सुनिए फिल्म वचन का गीत आवाज आशा भोंसले की। इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है यास्मीन, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार जानिसार अख्तर और संगीतकार सी रामचंद्रन।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म बारिश का दो गाना, आवाजें आशा भोसले और चितलकर की, शब्द राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन चितलकर यानी श्री रामचंद्र की है।

0: हाय हाय हाय हाय रे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए अब सुनिए A.R. कुरैशी का संगीत, शिवान रिजवी का गीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम आलम आरा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
3: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म न्यू दिल्ली का गीत, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
4: मिलते ही नजर

0: ये गम ही सही, ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए।
1: आवाज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहाँ
2: बस ऐसे ही जैसे
1: भी अब ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम चौंक गई।
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसी क्यों बोल तो रही है ऐसा वैसा जैसा कह के
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहां से सृजन की यात्रा शुरू होती है तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है जिज्ञासा हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा करेंगे।
2: बिल्कुल और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ लिया तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी हाँ। सखियां मिलकर ऐसी मस्ती करती है।
1: बिल्कुल और ये कहा जाता है ना जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी जितनी गहरी होगी सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज का हमारा विषय भी यही है सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
1: बिल्कुल
2: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना तो इसके बारे में बात किया जाएगा और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें और मेला देखने कब गए क्या खरीदा क्या देखा वहां की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखे चार चार लाइनों में पांच पांच लाइनों में तो मजा आएगा।
1: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं घोड़े बेचकर सोना घोड़ा है। जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना और वो ढेर सारे खरीद के लिए आते थे और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी।
2: बिल्कुल
1: और वो दिवाली पर खासतौर से
2: दिवाली
1: प्रसाद के रूप
2: खिलौने मिट्टी के
1: हाँ चढ़ाया जाता था
2: खिलौने आते थे
1: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे कि वो चक्री होती थी और जात छोटे छोटे चिमटे बेलन
2: और रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और
1: मिट्टी के भी
2: मिट्टी के भी बिकते थे
1: और बाद में चीनी मिट्टी के
2: और बड़े सुंदर रंग भी होते थे गुलाबी सफेद पे गुलाबी हरा ऐसे लाइन करके बड़ा।
1: आप कौन सा रंग खरीदती थी
2: जो वहाँ पे मिल जाते थे गुलाबी हरा इसलिए क्योंकि वही खरीदी
1: जाहिर सी बात है जो रंग
2: बोला है वही
1: पसंदीदा रंग होता है उसी को हम जाके चुनते थे और कई बार रंग उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे और ऐसा भी था कि मेले में जा रहे तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे हर चीज मिल जाती थी।
2: बिल्कुल
1: अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है
2: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं ताजी हो जाएंगी सबके आज जब बातें करेंगे है ना।
1: और मेले में और भी तो कुछ होता था वो तो हिंडोला जो झूला होता था
2: तरह तरह के झूले होते थे तो उसका भी एक अलग मजा आता
1: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का माता पिता
2: जाने का फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढुंढाई मचती थी कि कौन कहा ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं लेकिन फिर भी मेला जाना तो
1: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई अभी हम कहीं खो न जाए गुम न जाए भीड़ में तो मेले का एक अलग अनुभव होता है।

0: सबके भीतर एक मेला होता है, उन मेले का अनुभव होता है, तो उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें, और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है, मुहावरे बहुत सारे हैं, दिन भर चले अढ़ाई कोस या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
1: जो नावे आंगन टेढ़ा है, बहुत सारे हैं। तो
0: और बड़े बुजुर्ग हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में लोकोक्तियों में बात किया करते थे, लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है, तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए। तो किन्हें कितने मुहावरे याद हैं लिख भेजे हमें, और अब हम क्या करें बताइए।
1: हम तो गीत सुनते हैं,
0: चलिए।

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती की फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार
1: जी
0: आ रही हैं, और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूँ। क्या बात है, अभी यहाँ सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो
1: क्या
0: जाएगा।
1: बात है, आप इतनी दूर से सुन रही, तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, है
0: और
1: ना?
0: शुक्रिया कि
1: शुक्रिया
0: सुन रही है,
1: जी,
0: और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती
1: गूंजती है,
0: है,
1: सही बात है ममता
0: और
1: जी।
0: जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं, तो और जिज्ञासा का घर होता है।
1: हाँ जैसे
0: और
1: जिज्ञासा में उन्होंने देखी, हम लोग सोच ही नहीं सकते थे
0: हाँ
1: कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी, वो शांत हो गई
0: बिल्कुल सही बात
1: जी
0: है। और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है
1: जी
0: गूगल मास्टर।
1: जी
0: जैसे मन में कोई कौतूहल होता है, तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था,
1: हाँ
0: टीचर्स की शरण में जाना
1: बिल्कुल।
0: पड़ता था।
1: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही
0: और
1: मजा
0: किताबें
1: था
0: पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती
1: जी,
0: थीं।
1: बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों, जैसे सवाल मन में उठते हैं, तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
0: और ये जो सृजन का जन्म होता है दो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खास तौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए?
1: अंतराल लिया जाए,
0: लेते हैं।

0: और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे
0: जी
1: हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा, ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा सा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल। और ममता जी इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है, बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हैं हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ ना कुछ नया जानने की, खोजने की और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है।
1: अभी गाना सुन लेते हैं, फिर
0: जी
1: और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा के उसमें चली जाती है, तो वो ये सुन करके बहुत उत्साहित होती है कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है।
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीदकर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुराने संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहाँ से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयाँ दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहाँ बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं
0: और मेले में जगहों के बारे भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन, आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई हैं। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव हैं, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
0: और एक चीज की हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था। हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी, जो अभी भी मेरे पास है। और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था, जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
1: और देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी, तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी है। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला जिसे
0: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले काला खट्टा काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे। तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
1: बिल्कुल, और कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके वो चांद तारा है, और क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल रखी है, उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोग ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है, उसके ऊपर बैठ के फोटो खींचा रहे, जैसे लग रहा हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में, तो मेले की यादें ताजा हो जाती है। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो भी हम लोग खरीदते थे, क्योंकि उससे ओठ और जवान लाल हो जाती थी, तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा, चढ़ रहा, उतर रहा है, पर्ची निकाल रहा है,
0: कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था, वो बहुत आनंद आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा लगी होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोहपाश में बांधा है कि देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देखकर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है, और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए।
1: जी, और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे, और बहन के लिए मिट्टी के घंटी और चूल्हा, हांडी, तवा, बेलन, चकला वगैरह लाते थे। बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं, पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे, जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गाँव में बंद हो गए हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं चाहती हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता था। मेला देखेंगे, ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता कि ये बहुत ज्यादा खिलौने की जिद कर रही है, और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है। वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना, बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं। अभी भी मेले लगते हैं, अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की लोग आते हैं और चीजें मिलती हैं। वहां पर बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं।
1: अचार है, चूरन है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें, बर्तने, कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं, और तरह तरह की जैसे आपने चूड़ियां।
0: लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है, ज्यादातर उम्र दराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
1: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी, झूले वगैरह होते,
0: क्योंकि अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में सब कुछ है, तो सब बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देखाते हैं, दुर्गा पूजा देखाते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे, और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता है।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूं, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था। हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के चार दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है। वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है। मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे, लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर खड़ी थी, अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए, तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक, तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं। तो
0: अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में क्या बात है।

0: तो ममता जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक हैं। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है, ये
1: जी
0: कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं। तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना, वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की एक कंपनी है, तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे।
0: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस
1: जी
0: समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चैन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यहीं से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
1: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जीवामे में की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
0: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इसको इस खरीदारी को मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया, और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जीवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया, और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
1: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जीवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है, और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, रूढ़िवादी परिवार से क्यों न हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
0: जी,
1: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं। ये

0: कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है,
1: बिल्कुल
0: और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है,
1: बिल्कुल
0: और तेज
1: ऐसा
0: बारिश हो रही हो तो ऐसे
1: जी
0: लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना।
1: बिल्कुल घोड़े बेच कर सो
0: और आज
1: जाए जी
0: हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि
1: जी
0: मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है,
1: बिल्कुल
0: मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ
0: वो
1: कोर्स में ही पढ़ के समझते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: वो
1: हम लोग
0: पूछते
1: तो
0: हैं।
1: अपने घर में दादी नानी जो थी
0: हाँ
1: मम्मी वगैरह ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी, कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रही कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा
0: बिल्कुल। अब
1: जी
0: देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। 2-3 दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबरा कर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवा कर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं
0: वैसे ये
1: जी
0: घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा
1: जी
0: खुशनसीब कोई है नहीं
1: बिल्कुल, जिसको
0: कि
1: गहरी नींद आती हो
0: गहरी
1: जल्दी
0: नींद और देर तक आती हो।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: सही
0: अब
1: बात
0: जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तेहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: क्योंकि
0: जहां
1: बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आई नहीं कि पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथी लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहती हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया घोड़े बेचकर सोना, अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहती है कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती है कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
0: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था, और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो ये मुहावरा उस समय बना था, और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है। इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं।
1: कई बार ऐसी चीजें हो जाती
0: है, ऐसी नींद भी होती है
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर चले गए, और घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया। जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को पर कभी, मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो फिर से सो जाए।
0: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए, लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया है कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है, और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप जगाते रहो उठना ही नहीं।
1: उनकी भी देखिए, वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह, मतलब पता चला वो 3 बजे सो।
0: अब उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है। देखते हैं इस गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी है। जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
1: वाह, वाह,
2: गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे,
2: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना, राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया, वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज। एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चर की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
1: ऑडिशन से मिली थी।
2: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो,
2: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
2: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वही पे स्कोर किया।
1: क्या बात है।
2: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
2: ओके। আমি লাশময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু আঁখিতে চোখ রাখলে যেন আমি যে তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
2: हाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया।
2: हाँ।
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे, इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
2: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म,
1: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
2: यस। सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड, हम लोग ऐसे लोगों के साथ और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स। तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
1: चार पांच धड़कन मिस,
2: बिल्कुल टोटल. और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो. अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था. पैसे भी अच्छे मिले थे लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था. तो बर्लिनाले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10. मेरे
1: ओहो
2: पास एक ही कोट था,
1: ओहो
2: कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे. एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी,
1: वाह
2: लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट, की दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी.
1: बिल्कुल
2: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे. वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर.
1: क्या
2: तो
1: एक्सपीरियंस था वो एकदम, है
2: हाँ,
1: ना?
2: मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल
1: वाह
2: रहे किसे, कियानो रीव्स.
1: वाह
2: पर
1: वाह वाह,
2: ये
1: यही तो
2: कहानियां
1: मजा है।
2: बहुत ही कमाल. और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे और हम लोगों को रिट्स कार्ल्टन में ठहराया गया था. तो हम तो
1: वाह
2: पागल
1: वाह,
2: हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट.
1: ग्रैंड।
2: या बट थैंकफुली लेटर इन लाइफ दिस बिकेम अ नॉर्म इन लाइफ. लाइक मेनी मोर फिल्म हैपेंड लाइक दिस, जहां मतलब बहुत ट्रेवल मैंने किया, जूरी में भी रही, और ये धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई.
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो
2: दिस इज
1: है,
2: द बिगिनिंग.
1: यस बिल्कुल, लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा,
2: जी.
1: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
2: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की,
1: मेनन के साथ।
2: राजा मेनन के साथ ही किया
1: जी
2: एक. और फिर ब्रिकलेन हैपेंड. फिर कुछ दिन, कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी. फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला. लेकिन फिर भी
1: मजा
2: ऐसा
1: नहीं
2: नहीं
1: आ
2: है
1: रहा था।
2: कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा
1: उस
2: नहीं
1: दौरान
2: हुआ.
1: एक बांग्ला फिल्म भी की,
2: बिबौर, हाँ,
1: बिबौर।
2: बांग्ला बिबौर भी की. फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके. फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए.
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
2: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली. ये भी था,
1: ये भी
2: हाँ,
1: था।
2: प्यार हो गया.
1: वाह
2: ये भी
1: वाह।
2: था, दोनों चीजें थी. और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा, वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में. जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के. तो बहुत मजा आया काम करके. और फिर
1: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
2: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक
1: बिल्कुल
2: प्रोफेशनली चलती है वो. लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है. तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए, कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ. तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी. क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूं जो मैंने और शारिब हाशमी, हम दोनों ने मिलकर लिखा. पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे. ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं. बट नो वन इज फंडिंग अस.
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
2: तो उसमें फर्क हो जाता है. अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड. उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय. तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं,
1: बिल्कुल
2: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है.
1: ऑफ कोर्स
2: बट द थिंग इज, वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं.
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
2: हाँ
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम
2: यस
1: किया।
2: किया, और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेठ और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो,
1: वाह वाह,
2: मतलब
1: क्या बात है।
2: इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
1: एवरीथिंग,
2: या
1: यस। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
2: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको, बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
2: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक यू नो जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा,
2: तो मतलब जैसे देव बनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर, तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए।
1: तो आप वहां से वापस आ गई?
2: वापस आ गई।
1: और
2: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं, सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
2: जी।
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
2: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई।
1: अच्छा।
2: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
2: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
2: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे।
1: ओके।
2: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन, ये
1: अच्छा,
2: सब
1: हाँ,
2: वो इंटरनेशनल फिल्म
1: करेक्ट,
2: थी। या, या,
1: जी जी जी
2: या।
1: बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
2: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द बुनी गई फिल्म।
2: फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
2: मुझे नूर जहान के गाने जो है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है।
2: बिल्कुल।
1: वो भी सुना जा सकता
2: वो
1: है?
2: भी हाँ हाँ वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की,
1: जी
0: मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई, सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें.
0: वो एक फिल्म थी, यस
1: वो
0: यस।
1: मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी. और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम. सो
0: अरे
1: आई हैड द
0: वाह,
1: प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन.
0: डबिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे की बात है।
1: हाँ. नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली. मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी. और बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं. बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी. लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास. और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो. स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं कि आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता है.
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप
1: हाँ
0: कास्ट वाला मामला
1: हाँ बट
0: होता है।
1: ऐसा नहीं होता है. हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने,
0: हाँ,
1: पार्च्ड
0: मैं
1: जो
0: बस उसी की तरफ आ
1: किया.
0: रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है
1: हाँ,
0: पार्ज्ड, जो
1: पार्च्ड.
0: महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना
1: यस.
0: चाहिए।
1: और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन
0: अरे
1: इनिशियली.
0: वाह,
1: यस.
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था,
1: हाँ,
0: वाह।
1: मैंने ये लिखा था. और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम, और हम सोचे थे कुछ करे कुछ करे. तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी. उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं. मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको. सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का. एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले. और ऐसे करके बनी वो.
0: वो एक शानदार फिल्म बनी।
1: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी.
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें,
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई. एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग. एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को. वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर, जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज द सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक. ऐसे बड़े बड़े फिल्मों ही शॉट द फिल्म. और ये असीम बजाज की वजह से है,
0: वाह
1: हु इज आर
0: वाह,
1: प्रोड्यूसर. और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए.
0: वाह,
1: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया
0: बड़ा हो
1: पूरा.
0: गया, और फिल्म
1: हाँ,
0: बात भी बड़ी करती
1: बड़ी.
0: है,
1: हाँ,
0: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची
1: यस.
0: एक तरह
1: यानी
0: से।
1: लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई.
0: वाह,
1: सो इट वॉज रियली फैंटास्टिक. एंड ऑल्सो वर्किंग विथ सच अमेजिंग एक्टर्स. सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए,
1: जी
0: क्योंकि वो
1: जी
0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म
1: फिल्म
0: है।
1: है. हाँ, तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
0: वाह,
1: ही इज अ अनअपोलोजेटिक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट
0: बिल्कुल अपनी
1: जो
0: तरह की फिल्में करनी है।
1: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येल्लो बस. और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूं,
0: वाह,
1: दैट्स ऑल.
0: क्या बात है। और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी
1: बिल्कुल
0: देवाशीष की तमाम फिल्मों की
1: बिल्कुल
0: तरह।
1: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान

0: मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है, यू
1: बिल्कुल.
0: नो इज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल. तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है. मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है, और
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए,
0: या
1: क्योंकि अनंत तो बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं.
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल, पीछे भी वो.
0: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है
1: अच्छा.
0: पे थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था, क्योंकि
1: अच्छा
0: अनंत जी
1: ऐसा.
0: के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ. तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, एंड व्हाई कांट इट बी अ शी, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली ऑफरिंग मी अ रोल इन द फिल्म बट नॉट द सेंट्रल कैरेक्टर.
1: राइट.
0: सो ही सेड ओके. और मैं डैलस जा रही थी नेक्स्ट डे किसी और फिल्म के लिए. व्हेन आई केम बैक ही सेड कि ओके दीज आर योर डेट्स एंड यू कम, एंड या नाउ इट्स नॉट ही इट्स शी. आई वॉज लाइक ओके
1: बाबा क्या
0: वंडरफुल.
1: बात है.
0: हाँ देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई
1: वो भी उनके साथ है,
0: उनके
1: बिल्कुल,
0: साथ
1: जिसका
0: की,
1: जिक्र हमने अभी पीछे किया,
0: बिल्कुल
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला
0: देश की
1: डॉक्टर.
0: प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर.
1: जी
0: हाँ वो की मैंने, और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वॉज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणेचा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया, एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज, कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज
1: है.
0: ओल्ड मराठी ऑल्सो,
1: यस.
0: इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है. तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
0: हाँ अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्में,
0: हाँ उनके
1: ये तो
0: साथ मुझे
1: कमाल
0: काम
1: की
0: करने
1: बात
0: में
1: है.
0: बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश, और स्टोरी टेलर भी की, फिफ्थ, यस
1: लीजिए, एक फिल्म तो छूटी गई थी.
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म है, और
0: बिल्कुल
1: बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया
0: जी
1: है.
0: जी जी जी एंग्री इंडियन गॉडेसेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है, और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माई कैरेक्टर, एवरीबडी ऑल्सो डिवेलप देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू आई ज्वाइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, देव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी, जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटिल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और वो एंड
1: लेकिन
0: बट
1: फिर
0: वे
1: बीच में
0: आर लेट
1: चीजें
0: आए, तो हो
1: दूसरी.
0: गया. एनी वे सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड, एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था 1 साल पहले, और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो एवरीथिंग वॉज, सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस, एंग्री इंडियन गॉडेसेस.
1: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला,
0: या
1: उसका काफी नाम हुआ
0: या
1: उस फिल्म का. यहां भी एक गाना सुनते हैं.

0: बिल्कुल।
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे, मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, और
1: वाह,
0: उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन, वो
1: हमने
0: सब।
1: अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है, अब
0: हाँ
1: हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते
0: स्वानंद माफ कर दे पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था
1: तब से
0: ये।
1: गाते हैं। बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल।

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में

0: lost my father.
1: Oh.
0: And I was very close to him. और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये. और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं. एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी. इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल. तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वर शूटिंग इट. सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई, तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म. इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल. फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माई गायनोकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा. और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है.
1: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रहीं लगातार
0: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में,
1: और उसने कोई संकेत नहीं दिए।
0: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज. सो आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: यू नो एंड इट वॉज अनरियल. और इट वॉज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माई फादर टू
1: द सेम थिंग।
0: या इट वॉज ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया CML. सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माई मदर.
1: ओ गॉड।
0: तो मैं रिपोर्ट्स जो है हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय, कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी. तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी. और फिर ऊपर आई हैड अ 9 year old, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक. एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर. बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट. मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी. और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन. तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल. मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन. क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है. मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूं, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर. इमोशनली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली देर इज नो बडी एल्स. सो हाउ वुड आई डू दिस एंड द एक्सपेंसिस ऑफ माई ट्रीटमेंट इज अबनॉक्शसली हाई.
1: ओहो,
0: इनिशियली इंश्योरेंस ऑल्सो रिफ्यूज माई क्लेम.
1: क्यों?
0: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूं. एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस.
1: आप जीती?
0: यस बट द थिंग इज देयर आर टू मेनी बैटल्स, यू नो इसमें मैं हील कैसे हूं, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग एंड आई वॉज कमिंग एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म.
1: वो तो रखा ही हुआ था।
0: तो इट वॉज जस्ट आई हैड रीच्ड द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा.
1: बिल्कुल।
0: बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो इफ नॉट नाउ देन वेन. वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? दैट्स वेन आई रीच्ड आउट. मेरा एक गर्ल गैंग है, मैंने सबसे पहले उनको बताया.
1: वो लोग
0: फिर
1: कौन हैं?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है
1: इसलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी।
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकोना है, विद्या है।

0: है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मातोंडकर है, दिस वाज आर गर्ल गैंग, ऋचा चड्ढा है। तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली। शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं ये अकेली नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं। संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसको तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है।
1: गजब।
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ। एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है। मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन। मुझे हर
1: जबकि
0: 21,
1: 1.5 साल बीत चुका है।
0: हाँ 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए। बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, एआई, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग। और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके।
1: ये कितना मुश्किल
0: सो
1: था।
0: ये मुश्किल नहीं था, बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था, और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट। और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक
1: ये
0: अलॉन्ग।
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है,
0: हाँ,
1: ये वाली कहानी बताइए,
0: ये
1: क्योंकि
0: शारे
1: इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल
1: गुजर रही
0: जिस
1: थी।
0: दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी, और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट
0: डाइवर्ट
1: होगा।
0: रहेगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कि ऐसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपनी पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ
1: वेरी
0: कैंसर, सो
1: डिफिकल्ट
0: ये
1: टाइम।
0: वेरी
1: या
0: डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप, और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं हम
1: वाह
0: इसी के
1: वाह
0: बारे में लिखते हैं।
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो दैट इवनिंग वॉज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और दैट वॉज द लास्ट इवनिंग। भाई एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा, अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील। ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है।
0: या
1: और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब
1: पहला शो
0: तो।
1: कब कहां हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ,
1: जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है, और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
0: हाँ
1: सुनते हैं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से, इस मुश्किल से गुजर चुके हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक, सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने, और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे, और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो, आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं, क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है, पर स्क्रीनिंग करवाना, अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है, मैंने

0: ये नहीं की, ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूं, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ. सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम. तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो. हाँ, उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है, तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग. ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट. और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी.
1: बिल्कुल, इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
0: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूं कि आज मैं यहां पे हूं, आपके साथ बातचीत कर रही हूं, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूं, अपना प्ले कर रही हूं, अपनी जिंदगी जी रही हूं, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूं. आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप
1: इस
0: यही कर
1: लम्हे में
0: सकते हो,
1: जो भी
0: और
1: है बस यही
0: हियर
1: पल
0: एंड
1: है।
0: नाउ. कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे. ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था, बट अब तो मतलब ये इंटरनल है. वी रियली डोंट नो, मतलब मैं एक दिन पूरा एक आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस. हाउ बिजार इज दैट. मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया. आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट, मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का, मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट. सो हाउ देन, जस्ट यू जस्ट नेवर नो. तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा तहा बे, आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ. मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी, मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहां, हमारे अड्डे चलते थे वहां, कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले
1: क्या
0: मतलब ये,
1: बात है,
0: ताकि वो वक्त निकल जाए. मेरे
1: बिल्कुल।
0: ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे, मैंने शेव करवा लिए.
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया प्रॉपरली
0: यस
1: कि यस आई एम गोइंग थ्रू दिस।
0: यस आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट, आई एम एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस. और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं.
1: बिल्कुल। तनिषा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: नहीं मत, कल का सिर्फ पता है
1: कल
0: क्योंकि
1: का
0: मैं
1: पता है कि कल
0: परसों
1: कहाँ जाना
0: दिल्ली
1: है,
0: जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहां हैबिटेट सेंटर में.
1: तो क्या अगले
0: नहीं,
1: प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ, लेकिन वो कब आएगी, कब होगा ये पता नहीं अभी. पर आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स, फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ.
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है. अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ. हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो, सो शी हैज डायरेक्टेड इट.
1: ओके, वाओ, बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही हैं, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है. तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहां रिलैक्स भी हो जाते हैं. बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है. देन आई स्पेंड टाइम विथ हर. खाना बनाने में मुझे मजा आता है, और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी
1: काम करना पड़
0: कॉन्सेंट्रेट
1: रहा है।
0: करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ।
1: क्या बनाती है?
0: हाँ मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा आजकल जो हो रहा है। मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो उसको बुला। मैंने कहा कि घर पे लोग बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है मेरी वजह से। अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन्स, उसको

0: एफर्टलेसली आता है, इतना सुन चुकी है वो कि इस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी.
1: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ.
0: या
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है.
0: एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है अभी, मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये
1: पहले ही बोल
0: मिलेगा.
1: देती. क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे.
0: बिल्कुल. और जाते जाते एक गाना,
1: जरूर,
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें
0: करे
1: जीने के
0: जीने
1: लिए
0: के
1: सफर
0: लिए.
1: फिल्म का ये गाना. इस गाने को इंदीवर ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं.

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ जरूर और एक
0: जरूर
1: बार आना
0: आइए,
1: चाहूंगी।
0: स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा।
4: मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे।
3: एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है।
4: कभी तो नजर मिलाओ।
3: एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम पसंदीदा और दैनिक युववाणी।

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे ताकि आप सभी एक उज्जवल भविष्य को पा सके। दोस्तों, अपनी मेहनत से ही आप अपने जीवन में स्वतंत्रता ला सकते हैं। स्वतंत्रता आपको वो सुख देता है जिसे आप केवल अपनी मेहनत, समर्पण और त्याग से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन यानी 11 अगस्त को। दोस्तों, 11 अगस्त को यानी आज के दिन हम मना रहे हैं सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस की शहादत दिवस। दोस्तों, खुदीराम बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र में शहादत देने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। आइए आपको बताते हैं इनके विषय में कुछ खास बातें। 11 अगस्त को भारत के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की शहादत दिवस के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कम उम्र में अपना जीवन बलिदान कर दिया। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। वे बचपन से ही देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1908 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया। मुकदमे के बाद उन्हें 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी

दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। दोस्तों, बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की भावना थी। वे अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लेने लगे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और देशभक्ति के प्रचार में भी हिस्सा लिया। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने का कार्य सौंपा गया। मुजफ्फरपुर में हुई बम घटना के बाद खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना में किंग्सफोर्ड बच गए, लेकिन दो अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। इस मुकदमे के बाद खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। दोस्तों, खुदीराम बोस का जीवन हमें साहस, देशभक्ति, त्याग और अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद किए जाते हैं। खुदीराम बोस का जीवन हमें ये सिखाता है कि देश के प्रति समर्पण, साहस और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: युवावाणी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है, युवाओं की भूमिका स्वतंत्र भारत के भविष्य निर्माता। वार्ताकार हैं श्री विश्वकर्मा।
4: स्वतंत्र भारत के युवा की ये पहचान है, सीने में जुनून, आंखों में अरमान है। जो कल को आज में बदल दे, जो कल को आज में बदल दे, वो ही इस मिट्टी का सच्चा सम्मान है, वो ही इस मिट्टी का सच्चा सम्मान है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री विश्वकर्मा आप सभी से स्वतंत्र भारत के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर चर्चा करूंगी। युवा, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, आज का युवा कल के भविष्य का नेतृत्व करता है। एक युवा उत्साह, ऊर्जा और रचनात्मकता का भंडार है। वह एक देश के हाल को उचित तरीके से बदलने का साहस रखता है। युवावस्था के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, युवावस्था का सर्वोच्च मूल्य अतुलनीय और अवर्णनीय है। जीवन के इस अवस्था में कई से निर्णय लेने होते हैं, उसके लिए संघर्ष भी करना होता है, जो कि उसके जीवन की अमूल्य यादें और सीख बन जाती है। वैसे तो हर नागरिक का देश के विकास में एक स्थान होता है, मगर युवाओं की भूमिका देश के सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक जैसे अनेक क्षेत्रों की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत में जब हमारा देश अंग्रेजों द्वारा उपनिवेशित था, तब भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम सिंह जैसे युवाओं ने अपने साहस का प्रदर्शन किया। चाहे वो काकोरी ट्रेन हादसा हो, लाहौर षड्यंत्र केस हो या मुजफ्फरपुर बम कांड, उन युवाओं की विचारधारा व बलिदान के कारण हमारा देश आज आजाद हो पाया है। दोस्तों, आज स्वतंत्र भारत में भी युवाओं ने भारत की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाई है। युवाओं को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तेजस्वी मन से संबोधित किया था। उनका दृष्टिकोण बहुत प्रेरणादायक और सकारात्मक था। उनके हिसाब से भारत के भविष्य की दिशा युवाओं की सोच, ऊर्जा और सपने ही तय करते हैं। वे युवाओं के बारे में कुछ प्रमुख विचार रखते थे। वे युवाओं को बड़े सपने देखने, असफलता से न डरने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। युवाओं को अपनी योग्यता सिर्फ अपने तक सीमित न रख, अपने आप को काबिल बनाकर देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखना चाहिए। दोस्तों, स्वतंत्र भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जहां युवाओं की ऊर्जा और उत्साह का उपयोग हो सके, जहां स्टार्टअप्स और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले और जहां कृषि से लेकर प्रौद्योगिकी तक हर क्षेत्र में नए अवसर हों, जहां ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन हो। स्वतंत्र भारत नव भारत के रूप में ना ही सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि विज्ञान और नवचार में ये प्रगति की ओर अग्रसर है। आज भारत में अनेक क्षेत्रों में नवाचार बढ़ रहा है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देते

हुए हमें रितेश अग्रवाल और तन्मय बख्शी जैसे युवाओं का नाम मिलता है। वे नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। आज भारत में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो हमें तकनीकी रूप से भी आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति में भी हमें युवाओं की सख्त जरूरत है। उनका निर्णय और नेतृत्व समाज में काफी आवश्यक है। उनकी उदारवादी सोच राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है। इससे आने वाली नई पीढ़ी राजनीति में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होगी। समाज में उनके विचारों को समझना और जानने की जरूरत है। इस स्वतंत्र भारत में भी युवा समाज में अनेकों प्रकार की क्रांति ला सकता है। भारत एक युवा देश है जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। यह युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र की रीढ़ है। स्वतंत्र भारत के निर्माण और विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल वर्तमान को आकार देते हैं बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। स्वतंत्र भारत को एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं का शिक्षित, जागरूक और संवेदनशील होना आवश्यक है। आज का युवा तकनीकी रूप से दक्ष है, उसकी सोच व्यापक है और उसमें कुछ नया करने की ऊर्जा है। यदि यह ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाए तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज भारत को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा। वे सामाजिक सुधार, स्वच्छता अभियान, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। युवाओं को चाहिए कि वो केवल अपने अधिकारों की बात न करें बल्कि अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करें। देशभक्ति, सामाजिक सेवा और नैतिक मूल्यों को अपनाकर वे एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। अतः यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। यदि वे अपने कर्तव्यों को समझें और सकारात्मक दिशा में प्रयास करें तो आने वाला भारत अधिक विकसित, समृद्ध और विश्व मंच पर अग्रणी राष्ट्र बन सकता है। युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। एक युवा समाज के सामने नए नजरिए के रूप में भी आ सकता है। युवा समाज में शिक्षा का उपयोग कर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। युवा समाज में मतदान, जन आंदोलन और जन सेवा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर सकता है। आज का युवा नारीवाद को भी बढ़ावा दे रहा है जिससे इस स्वतंत्र भारत की नारी सशक्त बन सके। आज का युवा अपनी सोच से जातिवाद को भी खत्म करने की योग्यता रखता है। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देकर हम एक सशक्त और प्रगतिशील मूल्यों से भरपूर समाज बना सकते हैं। अब यहाँ बात आती है युवाओं को सशक्त बनाने की। हम ऐसा क्या करें कि देश का हर युवा देश के प्रगति के लिए कारगर साबित हो। भारत में कुल 27% युवा जनसंख्या है और अगर हमें देश को सच में आगे बढ़ाना है तो इस 27% को शक्तिशाली बनाना होगा। भारत में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाने होंगे। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगी जिससे हम आज के स्वतंत्र युवाओं को सशक्त कर सकते हैं। पहला है गुणवत्ता पूर्व शिक्षा। शिक्षा में क्रांति लानी होगी। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोचने की ताकत भी होनी चाहिए। किताबों को रटने की वाली शिक्षा से आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना सिखाना चाहिए। कौशल रोजगार। युवाओं में हमें अनेकों प्रकार के कौशल देखने को मिलते हैं। आज इंटरनेट के जमाने में वे इसे निसंकोच प्रदर्शित भी करते हैं। हमें ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे सीधे युवाओं को उनके कौशल के हिसाब से उन्हें रोजगार मिल जाए, जिससे युवाओं को बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी, भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेट का विस्तार होता जा रहा है। इस डिजिटल दुनिया से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि इसे कौशल सिखाने और कमाने का भी जरिया बनाया जा सकता है, जिससे गांव जैसे छोटे से छोटे क्षेत्रों तक रोजगार

0: मिट्टी से वफा देश को सजाने वाले। जज्बा है सीना तान के चलने का, जज्बा है सीना तान के चलने का, हम है भारत के नए दौर को बनाने वाले, हम है भारत के नए दौर को बनाने वाले। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम अपनी बातों में देश के प्रति जज्बों का जिक्र तो करते हैं, पर अनजाने में कभी कभी हम उत्साह को अपने व्यवहार में दिखा नहीं पाते। अगर हम स्वतंत्रता के सही मायने को सार्थक करना चाहते हैं, तो बेहद जरूरी है कि हम सभी देश हित में अपना योगदान हमेशा पूरी निष्ठा के साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, विषय था युवाओं की भूमिका स्वतंत्र भारत के भविष्य निर्माता। वार्ताकार थी श्री विश्वकर्मा, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी में। हमारे युवा दोस्तों को शायद आज़ादी का अर्थ और इसके मायने खूब समझ आते होंगे, अपनी आज़ादी के लिए हर संभवतः प्रयास करते होंगे। उनके लिए सबसे प्यारी चीज़ उनकी आज़ादी ही है। लेकिन क्या आपको आज़ादी की लड़ाई में कभी कभी कुछ त्यागना भी पड़ता है? क्या आप इसके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं दोस्तों? चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताते हैं आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका और उनके बलिदानों की गाथा। वही आज़ादी जिसके लिए वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे परिवर्तनों ने जहां एक ओर नवजागरण की जमीन तैयार की, वहीं विभिन्न सुधार आंदोलनों और आधुनिक मूल्यों और रोशनी में रूढ़िवादी मूल्य टूट रहे थे। हिंदू समाज के बंधन ढीले पड़ रहे थे और स्त्रियों की दुनिया चूल्हे चौके से बाहर नए आकाश में विस्तार पा रही थी। इतिहास साक्षी है कि एक रूढ़िवादी हिंदू समाज में इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर महिलाएं सड़क पर नहीं उतरी थीं। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। गांधी जी ने कहा था कि हमारी माता और बहनों के सहयोग के बगैर यह संघर्ष संभव ही नहीं था। जिन महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई को अपने साहस से धार दी, उनका जिक्र यहाँ लाजमी है। तो आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं कस्तूरबा गांधी का। गांधी ने बा के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गांधी जी से भी उन्नत थी। महात्मा गांधी की आजीवन संगिनी कस्तूरबा की पहचान सिर्फ ये नहीं थी कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया, बल्कि यह थी कि कई बार स्वतंत्र रूप से और गांधी जी के मना करने के बावजूद उन्होंने जेल जाने और संघर्ष में शिरकत करने का निर्णय लिया। वह एक दृढ़ आत्मशक्ति वाली महिला थी और गांधी जी की प्रेरणा थी। विजय लक्ष्मी पंडित, एक संपन्न घराने से ताल्लुक रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया। वह एक पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध महिला थीं और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत के राजनीतिक इतिहास में वह पहली महिला थीं और वह संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी जिन्होंने मॉस्को, लंदन और वॉशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अरुणा आसफ अली, हरियाणा के एक बंगाली परिवार से आने वाली अरुणा आसफ अली ने परिवार और स्त्रीत्व के तमाम बंधनों को अस्वीकार करते हुए जंगे आज़ादी को अपनी कर्मभूमि के रूप में स्वीकार किया। 1930 में नमक सत्याग्रह से उनके राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत हुई। अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें एक साल के लिए जेल में कैद कर दिया। बाद में गांधी इरविन समझौते के बाद जब सत्याग्रह के कैदियों को रिहा किया गया, तब भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने गोवालिया टैंक में राष्ट्रीय झंडा फहराकर आंदोलन की अगुवाई की। वह एक प्रबल राष्ट्रवादी और

आंदोलन कर्मी थी। उन्होंने लंबे समय तक भूमिगत रहकर काम किया। सरकार ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें पकड़ने वाले के लिए 5,000 रुपए का इनाम भी रखा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मासिक पत्रिका इंकलाब का भी संपादन किया। 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरोजनी नायडू, भारत कोकिला सरोजनी नायडू सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी कवयित्री भी थी। गोपाल कृष्ण गोखले से एक ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आने के बाद गांधी जी पर भी शुरू शुरू में गोखले का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। सरोजनी नायडू ने खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली। सिस्टर निवेदिता, उनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबल था। उस दौर में बहुत सी विदेशी महिलाओं को हिंदुस्तान के व्यक्तित्वों और आजादी की लड़ाई ने प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के प्रभाव में जनवरी 1898 में वो हिंदुस्तान आई। उन्होंने भारतीय स्त्रियों की शिक्षा और उनके बौद्धिक उत्थान की जरूरत को महसूस किया और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम भी किया। प्लेग की महामारी के दौरान उन्होंने पूरी शिद्दत से रोगियों की सेवा की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास और दर्शन पर उनका महत्वपूर्ण लेखन है जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्त्रियों की बेहतरी की प्रेरणाओं से संचालित है। कमला नेहरू, कमला नेहरू जब विवाह के बाद इलाहाबाद आई तो वो एक सामान्य स्त्री थी, लेकिन वक्त पड़ने पर यही बहु लौह स्त्री साबित हुई जो धरने जुलूसों में अंग्रेजों का सामना करती थी, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर भी सोती। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। कमला नेहरू के आखिरी दिन मुश्किलों से भरे थे। अस्पताल में बीमार कमला की जब स्विट्जरलैंड में टीबी से मौत हुई, उस समय भी नेहरू जेल में थे। मैडम भीकाजी कामा, पारसी परिवार में जन्मी भीकाजी कामा पर अंग्रेजी शिक्षा के बावजूद अंग्रेजियत का कोई असर नहीं था। वो एक पक्की राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी के विषय में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ऐसा साहस और चरित्र तो कभी भी किसी ने स्त्रियों में देखा ही नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सुचिता कृपलानी का जिक्र आता ही है। सुचेता ने आंदोलन के हर चरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई बार जेल गईं। सन 1946 में उन्हें असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। सन 1958 से लेकर 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहीं और 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो दोस्तों, आज के इस अंक में आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका विषय पर चर्चा बस यहीं तक।

का विचार। महात्मा गांधी जी ने कहा है, कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता है। क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। क्षमाशील बने रहिए, प्रसन्न बने रहिए। और अब प्रीति सिन्हा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक और पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी FM 102.7 पर। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5:30 होने को हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन की राम राम। और बता बहन लोगन का हाल चाल बा, सब ठीक ठाक बाना? हमके उम्मीद बा के सब ठीक ठाक होई। लेकिन ई बदलत मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा बहुत ही जरूरी है, काहे कि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ जाला। और देखा बहन लोगन, कहल भी जाला कि नेत्रदान महादान है, ई एक स्वैच्छिक और पवित्र कार्य है। एमे कोई भी व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद कानिया यानी आँख का पारदर्शी हिस्सा कोई भी न देखे वाले व्यक्ति के उपहार देवे का दान करेलन। यही से एके महादान कहल जाला, काहे के अंधेरे में जीवन जीवन के रोशनी मिल जाला। और देखा बहिन लोगन, एमे केवल कानिया पुतली का हिस्सा लेवल जाला, पूरा आँख नहीं। नेत्रदान मरले के बाद कैल जाला। नेत्रदान बदे परिवार के लोग तुरंत निकटतम आई बैंक और अधिकृत नेत्रदान केंद्र से संपर्क करे के चाहिए। और देखा बहन लोगन, जानत हो कि कितना लोगन हैं कि कहलन के मरले के बाद शरीर का अनादर होला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एकर समझावे के बाद आप लोगन के कि मरले के बाद शरीर का कोई भी ऊतक के जरूरतमंद के उपचार में उपयोगी हो सकत है। मानवता बदे बहुत बड़ा योगदान है। नेत्रदान कोई भी कर सकत है, लेकिन कुछ संक्रामक बीमारी और विशेष चिकित्सीय परिस्थिति में नेत्रदान संभव नहीं हो पावला। आज भी बहुत से लोग नेत्रदान के संबंध में गलत धारणाएं के लेके बैठल हैं। जा आगे ना आवे वाले में लोगन यह कहलन कि अरे हम कैसे दे देबे, मरले के बाद हमारी अंग काहे देही। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं बा, कुछ लोगन समझले का जरूरत बा। ऐसे शरीर का अंतिम संस्कार प्रभावित नहीं हो और धार्मिक दृष्टि कोई भी समस्या भी नहीं आवला। ऐसा कोनो बात नहीं बा, ये सब गलत सोच हुआ। हमने लोगन के आपन सोच के बदले की जरूरत बा। देखा बहन लोगन, नेत्रदान वास्तव में मानवता की सेवा का एक महामाध्यम है। मृत जीवन का अंतिम सत्य है। अगर मरले के बाद हमने लोगन के आँख को उपयोगी उत्तक केहू जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में दृष्टि का माध्यम बन सकी, तो उसे बहुत ही प्रेरणादायक काम हवे। अगर नेत्रदान करल चाहत हैं तो ई जानकारी अपने परिवार के जरूर दही पहले ही, काहे कि मरले के बाद ही नेत्रदान कैल जाला। तो देखा ई कहल जाला ना कि नेत्रदान महादान, उसे लोगन के देखा आगे का जीवन भी अच्छा हो जाला। तो ये हम लोगन का ऐसा काम करे के चाहिए और आगे भी बढ़े के चाहिए। वही तरीके से अपने कार्यक्रम में भी आज हमने लोगन शामिल के लिए है जा कि मोतियाबिंद कारण लक्षण और एकर इलाज का बा। ए पे डॉक्टर के पांडे जो नेत्र सर्जन हैं, इनसे अपन बता सब इन बातचीत के लिए सुनल जाए जानल जाए। लेकिन उससे पहले कुछ मन में शायन हो जाए। देखा सावन का महीना तो चल ही रहा बा, तो हम तो कहब कि किरण देवी श्रीवास्तव का गावा लेके कजरी बा। चलो पहले एक सुन लेवल जाए।

0: देखा बहिन लोगन अभी कजरी सुन लीजा किरण देवी श्रीवास्तव को कितना बढ़िया रहल हा। देखा पर मन भरी छोई गल तो देखा अभी हम लोग नेत्रदान का बात करत रह लीजा तो नेत्रदान में देखा मोतियाबिंद कारण लक्षण और एकर इलाज का है ये पे डॉक्टर के पांडे जो नेत्र सर्जन है इनसे अब अपन बता सब इन का बातचीत के लिए चलो सुनल जाए और जानल जाए।
1: सभी श्रोता बहनों को हमारा नमस्कार। बहनों, हमारे शरीर का अद्भुत अंग है हमारी आंखें। हम अपनी आंखों की वजह से मीलों दूर वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। आंखों से हम रंगों की पहचान कर सकते हैं। अपनी आंखों से हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं और किसी भी चीजों में होने वाली गतिविधियों के बारे में हम बखूबी बता सकते हैं। मतलब ये कि आंखों के बिना हमारा जीवन अंधकार भरा है और कभी कभी हम अपनी लापरवाही की वजह से ही अपनी आंखें खो बैठते हैं। हमारी आंखों के साथ किए गए लापरवाही से कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, जिसमें से एक बीमारी है मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद क्या है, इसके बारे में और भी विस्तार से जानने के लिए बात करते हैं डॉक्टर के पांडे जी से, जो कि नेत्र सर्जन है जिला अस्पताल सोनभद्र में। तो डॉक्टर साहब, आपको हमारा नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आंखें बहुत ही अनमोल है और आंखों की सुरक्षा के लिए हमको खुद भी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये मोतियाबिंद क्या है।
2: मोतियाबिंद की बीमारी दो तरीके से कह सकते हैं, एक सफेद मोतियाबिंद और एक काला मोतियाबिंद।
1: जी,
2: सफेद मोतियाबिंद लेंस से संबंधित है।
1: जी,
2: लेंस आंखों में मुख्य काम करता है, जो हमारे आंखों में सामने के दृश्य की किरणें जाती हैं,
1: अच्छा,
2: उनको पर्दे पर भेजता है।
1: जी,
2: जब लेंस पारदर्शिता अपनी खो देता है तो वो धीरे धीरे सफेद होने लगता है,
1: अच्छा,
2: उसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं।
1: अच्छा।
2: दूसरा काला मोतियाबिंद होता है, जो आंखों के तनाव से संबंधित है और जिसमें समय पर उपचार न मिलने पर रोशनी जाने का भी खतरा रहता है।
1: अच्छा।
2: सफेद मोतियाबिंद उम्र जनित है, कभी चोट लगने से बच्चों में भी हो जाता है और पैदाइशी बच्चों में कभी कभी देखा गया है, लेकिन मूलतः ये उम्र जनित है। ज्यादातर बुजुर्गों को आंखों में उम्र होने पर लेंस सफेद होने लगता है।
1: जी, कभी कभी डॉक्टर साहब मैंने ये सुना है कि अनुवांशिक भी है।
2: अनुवांशिक भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो बुजुर्ग हैं उन्हीं की आंखों में धीरे धीरे, जब जैसे बाल सफेद होने लगता है वैसे लेंस सफेद होने लगता है।
1: अच्छा।
2: तो
1: अच्छा।
2: वो रोशनी धीमी पड़ जाती है।
1: जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये मोतियाबिंद किस वजह से हो जाता है?
2: ये उम्र होने के बाद जो प्रोटीन होता है लेंस का, वो गल जाता है और उससे धीरे धीरे वो अपनी पारदर्शिता खो देता है।
1: जी,
2: फिर धुंधला दिखने लगता है और उसके बाद उसका उपचार केवल ऑपरेशन है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए कोई ना कोई बीमारी अगर होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लक्षण होता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोतियाबिंद होने के लक्षण क्या है।
2: मोतियाबिंद में धुंधला दिखना जो उसका प्राथमिक लक्षण है, और उसके अलावा जब उसको आगे जांच किया जाता है तब ये निश्चित होता है कि ये ऑपरेशन करने लायक है कि नहीं है।
1: अच्छा, तो इसका इलाज कैसे होता है डॉक्टर साहब?
2: इसका इलाज जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के कैंप होते रहते हैं।
1: जी,
2: और जो बुजुर्ग हैं या जिनको मोतियाबिंद हो गया है वो घर पर अपने से भी देख सकते हैं। अगर उनको देखने में धुंधलापन ज्यादा दिखाई दे रहा है तो उनको ये नजदीक अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहां पे टेक्नीशियन पोस्ट हैं, उनसे मिलें और डॉक्टर जो है उनसे मिलें, उनसे अगर एक बार निश्चित हो जाए कि हाँ आपको मोतियाबिंद है,
1: अच्छा,
2: तो आप जिला अस्पताल आके अपने ऑपरेशन के लिए जांच और उसके तारीख निश्चित कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कहते हैं कि अपनी आंखों को अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे तो जैसा कि अभी आपने कहा मोतियाबिंद हो जाता है, तो मोतियाबिंद ना हो इसके लिए हमको क्या बचाव करना चाहिए?
2: देखिए, मोतियाबिंद जैसे आपको किसी टेक्नीशियन से या किसी डॉक्टर से निश्चित हो गया कि आपको मोतियाबिंद हो गया है,
1: जी,
2: तो आप घबराए नहीं, परेशान न हो, आप अपना शुगर चेक कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और जिला अस्पताल से संपर्क करें। जिला अस्पताल में नियमित निःशुल्क रूप से मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते रहते हैं।
1: अच्छा।
2: वहां अपना पंजीकरण कराएं और वहां पर उचित मार्गदर्शन आपको मिलेगा।
1: अच्छा।
2: ऑपरेशन की जब तारीख निश्चित हो जाएगी,
1: जी,
2: तो ऑपरेशन कर दिया जाएगा। ऑपरेशन करने के बाद आपको मार्गदर्शन किया जाएगा कि कब आपको आना है आगे दिखाने के लिए,
1: जी,
2: कब आगे आना है आपको चश्मे की जांच के लिए, तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए कोई ना कोई बीमारी होने के पीछे कारण भी होता है कि इस कारण की वजह से हो गया, इस कमी की वजह से हो गया, तो ये मोतियाबिंद किस कारण से होता है?
2: उम्र जनित जो प्रोटीन लेंस में होता है वो उम्र बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम पड़ने लगता है।
1: अच्छा।
2: और फिर वो अपनी पारदर्शिता खो देता है, उसके बाद लेंस सफेद हो जाता है।
1: अच्छा।
2: इसका उपचार केवल और केवल ऑपरेशन है।
1: अच्छा।
2: कई लोग ये कहते हैं कि ये दवा डालिए तो आप रोशनी ठीक रहेगी,
1: जी
2: इस तरह की बातें निरर्थक हैं। अगर आपको किसी योग्य चिकित्सक ने बता दिया है कि आपको मोतियाबिंद है, तो आपको उसके ऑपरेशन के लिए नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल से जानकारी लेकर ऑपरेशन कराने के लिए संपर्क करना चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है, तो उसके बाद उसको क्या सावधानी रखनी होगी?
2: मोतियाबिंद होने के ऑपरेशन के बाद उसको नियमित रूप से दवाएं बताई जाती हैं,
1: जी,
2: कि कौन सी दवा आंख में कब डालनी है और कितनी बार डालनी है। अगर ऑपरेशन के बाद कोई एकाएक रोशनी घट रही है या कोई और चीज लग रहा है, दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप जिला अस्पताल संपर्क कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद रोशनी धीरे धीरे एकदम साफ हो जाती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए महिलाएं जो हमारी होती हैं वो कामों में ज्यादा व्यस्त रहती हैं, उनको कोई भी बीमारी हो जाती है, खासतौर से हम आंखों की बात अगर कर रहे हैं तो महिलाओं को भी ऐसी दिक्कत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो धुएं में ज्यादा काम करती हैं, धूप में काम करती हैं, लेकिन वो अपनी परवाह नहीं करती है, परिवार की देखभाल में वो इतना व्यस्त हो जाती है कि उनको क्या तकलीफ है वो नहीं किसी को बता पाती है। तो महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनको इस तरह की परेशानी अगर हो तो वो कहां कैसे संपर्क करें?
2: बुजुर्ग महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि अगर उनको उनकी उम्र 50-60 के बाद है,
1: जी,
2: तो वो जो है अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से मिलें। एक बार ये निश्चित हो जाए कि आपको मोतियाबिंद है,
1: अच्छा,
2: तो अपना शुगर और ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर वो निश्चित है तो आप जिला अस्पताल में संपर्क करें हमसे,
1: जी,
2: और हम बताएंगे कि ऑपरेशन कब होगा। ऑपरेशन की तिथि निश्चित हो जाए उस दिन आकर अपना ऑपरेशन करा लें, फिर आपको दिखने लगेगा।
1: जी, संपर्क की बात आपने कहा तो आप कृपया नंबर बता दे ताकि वो संपर्क करने में कोई उनको असुविधा ना हो और आपसे संपर्क करके वो अपनी परेशानी को दूर कर सके।
2: मैं यहाँ पर जिला अस्पताल सोनभद्र में नेत्र सर्जन के पद पर तैनात हूँ।
1: जी,
2: मेरा मोबाइल नंबर है 9454068109।
1: अच्छा।
2: 9454068109।
1: जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कानों को छेद कराना, लोग बड़े बड़े बाले पहनती हैं, तो क्या ये सही है कि आंखों की अगर रोशनी बढ़ानी हो तो कानों को छेद कराया जाए?
2: ये बातें भ्रामक हैं।
1: जी,
2: और अगर आपको रोशनी कम है तो इसके लिए आपको नजदीक के योग्य चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, कहते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन की जरूरत, जैसे कि ए और सी है, अगर इसका सेवन करें तो आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, तो
2: ये बात एकदम सही है।
1: जी,
2: विटामिन ए आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है।
1: जी,
2: खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब टट्टी उल्टी की बीमारी हो जाती है तो उसमें विटामिन ए का नुकसान होता है।
1: जी,
2: और इसमें उनकी आंखों की रोशनी हमेशा जाने का खतरा बना रहता है।
1: जी,
2: इसलिए हमारा एक विटामिन ए का कार्यक्रम चलता है जिसमें हम छोटे बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाते हैं।
1: जी जी,
2: तो ये काफी लाभदायक है।
1: तो सर, ये विटामिन ए और सी किस चीज में पाया जाता है?
2: विटामिन ए गाजर में, पपीते में और विटामिन ए के घोल भी आते हैं, तो आप इसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जगह उपलब्ध है और जिला अस्पताल में उपलब्ध है।
1: जी,
2: और छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी से बीमारियां होती हैं जो उनकी रोशनी छीन सकती हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी मोतियाबिंद के बारे में जानकारी दी। चलते चलते और श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे इस मोतियाबिंद से बचने के लिए कि वो क्या करें?
2: श्रोताओं से मेरा संदेश स्पष्ट है कि जब आपकी उम्र 50 या 60 के ऊपर हो गई है,
1: जी जी,
2: तो आप अपनी नजर, अगर रोशनी कम हो रही है आंखों की, तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके नजदीक अपनी नजर की जांच कराएं, और अगर निश्चित हो जाए कि ये मोतियाबिंद है तो आप जिला अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, आप सब ने डॉक्टर साहब की बातें ध्यान से सुनी, तो इसे केवल सुनना ही नहीं गुनना भी है। तो आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवाएं और अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। और सही समय पर किया गया इलाज हमारी आंखों को बचा सकती है। तो ईश्वर के दिए हुए इस अनमोल उपहार की अच्छे से देखभाल करें। और डॉक्टर के पांडे जी, आपने मोतियाबिंद के बारे में विधिवत जानकारी दी, आपको ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: जी धन्यवाद।
0: हमने लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है, कितना बढ़िया जानकारी मिला। देखा बहन लोगन, एक हमने लोगन के अपने में शामिल, अपने रोजमर्रा में शामिल करे के जरूरत बा कि मोतियाबिंद अगर हो गल बा तो ओकर कारण लक्षण जानी तो ओकर उपचार भी अपन सही समय से करा ले हैं। तो और देखा बहन लोगन, आज के दिन खुदीराम बोस बलिदान दिवस भी मनावल जा रहा बा। खुदीराम बोस बलिदान दिवस है आज यानी 11 अगस्त को, और इनकर इनको देखा 18 साल की उम्र में ही 11 अगस्त 1908 में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे देवल गए रहल। ई भारत का सबसे कम उम्र के महान स्वतंत्रता सेनानी में भी गिनल जालन। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1879 को बंगाल के मेदनापुर जिले में बहुवैनी गांव में भयल रहल। उनके पिता का नाम त्रैलोक्य नाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी रहल। बचपन में ही माता पिता के निधन के कारण उनकर पालन पोषण बड़ा ही कठिन परिस्थिति में भयल रहल। बचपन से ही खुदीराम बोस जी के मन देश के प्रति गहरा प्रेम रहल। वो समय ब्रिटिश शासन रहल और देशवासियों को कई तरह के कठिनाइयों का सामना करे के पड़त रहल। बंगाल की स्वतंत्रता आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बढ़ रहल। ये सब के देख कर खुदीराम बोस भी कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए लेन। वे देशभक्ति से संबंधित पुस्तिकाएं और लोगन के पहुंचावे लगलें और स्वतंत्रता के भावना में भी सक्रिय रहलेन। और फिर धीरे धीरे वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए लेन। इनके फांसी देवे का मुख्य कारण यह रहल कि उन अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर क्रूर ब्रिटिश जज डगलस किंग फोर्स के बग्गी पर बम फेंकलें, लेकिन वो बग्गी में किंग फोर्स के जगह ब्रिटिश महिला थी जिनकर मौत हो गई। उस समय प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। खुदीराम बोस पकड़े गए, उन पर हत्या का मुकदमा चला और मात्र 18 साल के उम्र में उनके मौत का सजा सुनावल गल। जब खुदीराम बोस जी बम फेंकलें तब उसके बाद कई किलोमीटर पैदल चलकर वानी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचलें, फिर वहीं पर पकड़ल गईलें। वापस मुजफ्फरपुर लावल गल, फिर उनके विरुद्ध मुकदमा चलल। आज देखा बहनों को, आज वो जो स्टेशन रहल है उनका नाम खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के नाम से भी जानल जाला। फिर उन्हें मृत्यु दंड देवल गल। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे देवल गल। वो समय उनकर उम्र 18 साल रहल। फांसी के समय बंदे मातरम का नारा लगैलें और निर्भीकता से मृत्यु के स्वीकार कैले लेन। तो देखा ई रहलेन खुदीराम बोस जी। तो और देखा है अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए, लेकिन हम तो कहब कि कुछ मन में शान भी हो जाए। तो अब किरण देवी श्रीवास्तव का गाँव एक खेमटा बा, ओके सुन लेवल जाए।

देखा बहिन लोगन किरण देवी श्रीवास्तव का गाल खेमटा सुनल गल तो देखा मन अपन फरिच हो ही गया तो चल अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए। तो देखा आप लोगन के बता दें कि जन औषधि योजना का है। तो देखा बहिन लोगन जन औषधि योजना के बारे में बात कल जाए तो ये भारत सरकार की एक बेहतरीन योजना है। ये योजना के जरिए देश के हर व्यक्ति के बहुत कम दाम में अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेटिक दवाइयाँ देवल जाला। महंगे ब्रांड सामान के जगह ये सस्ती दवाइयाँ लोगों के इलाज और आसान बनावला। बाजार में मिले वाली महंगी दवाइयों से 50% से 90% तक सस्ती होला। और देखा सरकार विशेष दुकान खोलल जेके जन औषधि केंद्र कहल जाला। सस्ती होए के बाद भी इन दवाओं की गुणवत्ता बहुत अच्छा और असरदार होला। हमने लोगन के महंगे ब्रांड के नाम पर ज्यादा पैसा देवे के नहीं पड़ाला। और देखा बहन लोगन अपने पास का केंद्र खोजे बदे अधिकारी वेबसाइट या जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकत है जा। और देखा जेनेटिक दवाई के प्रति जागरूकता बढ़ाई भय ई योजना लोगन के समझे में सहायता करला कि दवाई खरीदते समय केवल ब्रांड का नाम ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि दवा का सक्रिय घटक गुणवत्ता और चिकित्सीय उपयोगिता भी महत्वपूर्ण है। और देखा बहन लोगन दवा लेते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान देवे की जरूरत है, जैसे कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें, दवा का नाम और उसकी शक्ति के भी जांचें, पैकेट पे लिखल एक्सपायर डेट जरूर देखें, डॉक्टर द्वारा लिखल गल दवा के विकल्प के बारे में फार्मासिस्ट से जरूर पूछें, कोनो भी दवा से एलर्जी या अन्य समस्या हो तो ओके जरूर पूछें, बचवा लोगन हो या गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग हो उनके दवा लेवे से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें। कहल जाला कि कोई भी चीज हो तो ओकर जानकारी लेब बहुत जरूरी है। और देखा बहन लोगन अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावत ही तो जैसे कि बात कहल जाए कि अपने स्वास्थ्य के देखते हुए हमने लोगन के जो नशा है उसे भी दूरी बना के रखे के चाहिए। नशा आज के समय में एक गंभीर सामाजिक समस्या है। जैसे बात कहल जाए शराब तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट ई सब अन्य नशीले पदार्थ का सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य और परिवार शिक्षा रोजगार और आर्थिक स्थिति के प्रभावित भी कराला। जबकि कोनो भी समाज में बड़ी संख्या में लोग नशे की समस्या से प्रभावित होलेन, एकर असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहे बल्कि परिवार समाज और देश के विकास में भी असर पड़ाला। और देखा बहन लोगन कहल जाला कि कोनो भी देश के विकास के लिए स्वस्थ नागरिक जरूरी है। नशे की आदत व्यक्ति के स्वास्थ्य के नुकसान पहुंचावला। तंबाकू और धूम्रपान से कई गंभीर बीमारी भी हो जाला। जैसे शराब और अन्य नशीले पदार्थ भी शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावित डालला। जब लोग बार बार बीमार पड़ लेन तो उनकी उनको काम करे की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाला। ऐसे परिवार और समाज के कमजोर हो जाला। और देखा इतना ही नहीं अपनी शिक्षा पे भी प्रभाव डालला। जैसे बच्चवा लोगन है नशे की आदत अगर उनके लग गयल तो देखा अपनी पढ़ाई को और नहीं जालेन। घरे से क्या होला कि बच्चवा लोगन स्कूले बदे जालेन, वहां देखा कहीं एहर ओहर जालेन, अपन गलत लोगों की संगत में पड़ जालेन तो वो नशे के चक्कर में हो जालेन। तो इसे क्या होला कि अपन उनकी देखे शिक्षा भी प्रभावित होला। और इतना ही नहीं देखो उसे अपन आर्थिक जो आर्थिक चीज है पैसा रुपया ये भी खर्च होला। नशे के खर्च करे में पैसा परिवार और आवश्यक जरूरतों के कम हो जाला। और देखे बहन लोगन कहल जाला कि जब बचवा लोगन के ऐसन प्रभावित होए लगला तो अपन घर का जो विकास है घर के और जो लोगन है वो भी देख कमजोर हो जाला। जो कहल जाला कि न्यू घर का न्यू भी कमजोर होला। नशे की समस्या से निपटे बदे केवल कानून बनाई पर्याप्त नहीं है, एकेरे बदे जागरूकता भी हो बहुत जरूरी है। लोगन की जन जागरूकता लोगन के नशे की स्वास्थ्य और सामाजिक नुकसान के बारे में सही जानकारी भी हो बहुत जरूरी है। कहल जाला कि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों और युवाओं को खुलकर बातचीत करें और उनके व्यवहार चिंताजनक बदलाव दिखाई दे एके भी
अपन जानत रहें। और देख बहन लोगन, यही से कहल जाला कि केवल ये नहीं है कि नशा विकास में बाधक है, देखा वो हर कुछ में हमने लोगन के नुकसान ही देवाला, फायदा नहीं देवाला। यही से हमने लोगन के चाहिए कि नशा से हमने लोगन दूर रहें। तो देख बहन लोगन, अपन घड़ी का सुई भी इशारा करे थे कि अपन बैठकी यहीं समेटल जाए, अगले बैठकी में फिर भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो चला चलल जाए। तो सब बहन लोगन के राम राम।

ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी एफएम 102.7 पर। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे भोजपुरी में हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करीब 70 करोड़ रुपया के लागत के सड़क परियोजना का लोकार्पण कैले। ए परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 सुनौली नौतनवा गोरखपुर राय से ग्रीन सिटी होत माधोपुर बंधाले सड़क चौड़ीकरण आ सुदृढ़ीकरण का काम शामिल बा। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि प्रदेश सरकार हर नागरिक के जिंदगी के सुगम बनावे बदे कृत संकल्प हो।
1: अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। तो ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
0: मुख्यमंत्री अजुए संत कबीर नगर जिला में 684 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 201 परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आज से 3 दिन का इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का शुरुआत हो गई। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा आज एह एक्सपो का उद्घाटन कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहने एह आयोजन में शामिल हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय साफ कैले हो कि गुमशुदा मनैन का उम्र आ लिंग चाहे जवन हो है उनकर गुमशुदगी पर जुड़ते प्राथमिकी दर्ज कैल जरूरी हो। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन के पीठ एकर पालन न करे वाले राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन के ई निर्देश दिले बा।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मुकेश
0: मार्बल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के तीसरका दीक्षांत समारोह में शामिल भेलिन। इस मौका पर वहां के उत्कृष्ट प्रदर्शन करे वाले विद्यार्थियों के मेडल देहनी। राज्य सरकार प्रदेश के सज्जो 762 नगरीय निकायन में एक मुश्त समाधान योजना लागू कैले का फैसला कैले हो।
3: नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने ओटीएस के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। इसमें करदाता को योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कुल बकाए की 1/3 धनराशि जमा करनी होगी तथा शेष 2/3 धनराशि अगले 2 माह में 2 मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलन में कई गो आयोजन का सिलसिला जारी बा। हमारे चित्रकूट प्रतिनिधि बताने कि ओजा अभियान के तहत स्कूल कॉलेज आ सार्वजनिक जगहिन पर रंगोली प्रतियोगिता के जरिए देशभक्ति या राष्ट्रीय एकता के भावना के बढ़ावा दिहल जाए। एह बीचे प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हर घर तिरंगा अभियान के राज्य के सज्जो मदरसन ले पहुंचौले का निर्देश देले हमें।
4: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है। उन्होंने लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त ले कहीं कहीं भारी बरखा का येलो अलर्ट जारी कैले हो। विभाग के मुताबिक यह इलाका में अजो कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना बनल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। आइए अब हम जान लेते हैं अपने शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। पर उससे पहले खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मीना देवी पत्नी दूधनाथ बिंद निवासी ग्राम करवनिया थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र जो दिनांक 15 जुलाई 2026 से लापता हैं। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 32 वर्ष लंबाई 4 फीट 9 इंच हुलिया गोरा रंग लंबा चेहरा एकहरी बदन पहनावा साड़ी। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्तार पुत्र पैगंबर निवासी ग्राम सेमरी विशुनलाल तेंदु थाना रावर्सगंज जनपद सोनभद्र जो दिनांक 27 मार्च 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 22 वर्ष लंबाई 5 फीट 3 इंच हुलिया सांवला रंग लंबा चेहरा दोहरी बदन पहनावा हल्का गुलाबी रंग का शर्ट और सफेद रंग का लोअर। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

आइए अब हम जान लेते हैं अपने शेष कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण भाइयों का ग्राम जगत। किसानवाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:50 पर हमारे लखनऊ केंद्र से। कार्यक्रम सबरस का समय होगा शाम 7:31 पर। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत का समय होगा रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार पहले हिंदी में फिर 9:00 अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 10:06 पर आप सुनेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण हमारे लखनऊ केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में आज प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:36 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन
1: पंचन
0: के
1: के राम
0: राम।
1: राम। भोला भैया आपके भी राम
0: राम
1: राम।
0: राम बता सा बहन।
1: और भोला भैया देखा थी कि आपके पगड़ी और कुर्ता देख के लाग रहल बा कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी और स्कूली में बचपन के भेजे खातिर के तमाम स्वतंत्रता सेनानी लोगन का प्रेरणादायक गाथा सुनावत हुए और बचपन के भीतर जोश और जज्बा उनके जगावत हुए और स्कूली में
0: बिल्कुल
1: जाके
0: बिल्कुल
1: तरह तरह
0: बिल्कुल।
1: के अपन किरदार निभाइए
0: अभी
1: उनके रूप
0: समय
1: में।
0: यह तो है स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जन बाकी सब लोग प्रभात फेरी के साथ और अपन देश में हर्षोल्लास के साथ अपन जन बाकी पढ़ाई लिखाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस सब के याद करे के समय है और सब बहुत बढ़ चढ़ करके लोग जन बाकी ओके याद करे के काम करत बड़न।
1: भैया देखा याद करेगे तो 365 दिन चाहिए, 2400 घंटा चाहिए उनके, कभी बिसारे के सवाले नीखे उठत।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: बाकी देखा जैसे त्योहार मौके मौके से आवेला ना तो 4 गुना बढ़ जाला वो खुशी। तो देखा ही तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी मनावल जा रहल बा और ये तिरंगा के आन मान और शान खातिर कितना लोग जोन बाकी हंसते हंसते अपन जान कुर्बान कर देले। और यही तिरंगा खातिर प्रति वर्ष हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित कल जाला और हर घर तिरंगा का कार्यक्रम देखा भैया मुख्य उद्देश्य यह बा कि प्रत्येक नागरिक लोगन के भीतर देशभक्ति का भावना के जज्बा और जोश बनल रहे
0: बिल्कुल
1: और प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी लोगन के याद के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति व्यक्तिगत संबंध मजबूत बनल रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जोन बाकी आज लोग बहुत उत्साह के साथ करू रहा हवन और सबले महत्वपूर्ण ध्यान इहो लोग देवला कि जोन बाकी पहलवा एक आध साल तो बड़ी लापरवाही हुई कि सीधे से जोन बाकी कपड़ा है लेकिन बाद में सबके जानकारी में अलग कि नहीं ये सम्मान के प्रतीक है एक हम लोग
1: बिल्कुल
0: के जहाँ तहाँ बहुत लोग जैसे कि वही पर अनाज सुखवा देवे लोग
1: बिल्कुल। और
0: तो
1: कहीं देखा छोट
0: बिल्कुल।
1: छोट जोन तिरंगा रहेला बच्चों लोगों के हाथ में तो पकड़ा दे जला, पता चला कि मिठाई मिलने के बाद झंडा के यार और कहीं छोड़ देना भाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बचवा तो
0: बिल्कुल।
1: अनभिज्ञ
0: हाँ
1: होलन।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: तो अपने घर में जे भी गार्जियन बा जे महतारी बाप होन देखे कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से लोगन के घर के छत पर आंगन में द्वार पर तिरंगा फहरावे खातिन के ऐसे जोन बा की राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक मानल जा रहल बा
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: स्वतंत्रता सेनानी लोगन के गौरव और बलिदान के प्रति सम्मान बढ़त रहेला और लोगन में देशभक्ति का संचार होत रहे, एक दूसरा से व्यक्तिगत जुड़ाव बनल रहे और साथ ही साथ जाति धर्म और क्षेत्र की सीमा से ऊपर उठ के एक सूत्र में देश के
0: बिल्कुल
1: बांधे
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल।
1: मंशा बा भैया। और एकरे साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास महत्व और झंडा संहिता के प्रति
0: जी
1: समझ भी पैदा होके के खातिन ई जो हर घर तिरंगा का

0: कार्यक्रम या फिर आयोजन या अभियान कहला मनावल जा रहा बा। और देखिए आज अपने ओबरा में तो राम मंदिर कॉलोनी से लेके पूरा एकदम रैली निकलल, हर हाथ में तिरंगा रहा भैया। और देखिए ये वर्ष मैंने 2026 हर घर तिरंगा, 2026 वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा होके के भावना के समर्पित
1: बिल्कुल। और हाथ में तिरंगा और सर पर जब टोपी लग जाला तिरंगा के, तो उस समय जौन बा की हर हर शरीर के अंदर हृदय में भी
0: एक तिरंगा लहराया लाला, मिल जाला,
1: ऊर्जा उत्पन्न हो जाला
0: बिल्कुल। और जौन देशभक्ति तिरंगा पर गर्व और मातृभूमि के प्रति प्रेम का खुशी मनावल जाए वाला ई पर्व ई उत्साह है भैया। एकरा खातिर देखा तरह तरह के कार्यक्रम के आयोजन भी हो रहा बा। जैसे की देखा ये कार्यक्रम दू या तीन या चार तरह के तैयारी ना है, जैसे की तिरंगा यात्रा और तिरंगा रैली जैसे की आज निकलबे कैला, आगे भी निकली तिरंगा संगीत कार्यक्रम, तिरंगा साज सज्जा, तिरंगा में फोटो खींचे खातिर अपनन के बेहतरीन जगह बनावे सजा धजा करके, और तिरंगा और वंदे मातरम प्रदर्शनी का आयोजन, तिरंगा रंगोली वंदे मातरम विषय से जुड़ल, और तिरंगा रन है, तिरंगा श्रद्धांजलि है, तिरंगा जन आंदोलन प्रतिक्रिया मने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, अब तो भैया डिजिटल जमाना हो गल बा, तो देखे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से लोगन का समर्थन और सहयोग भी मिल रहा बा। इस सबसे देखा यह जाहिर होता भोला भैया कि हम सब देशवासी तिरंगा महोत्सव की खुशी पूरे जोश के साथ मान सम्मान के साथ मनावत ही जा। और आवे वाला 15 अगस्त जौन है धरती से लेके आकाश तक पूरा तिरंगा
1: तिरंगा तिरंगा, जहाँ जौन बा की ध्वज जौन लेके लोग चलत बा ओकर डंडा भी तिरंगा, और जहाँ तक चौतरा बनावत बा लोग वहाँ भी तिरंगा।
0: बिल्कुल
1: तरीके से तिरंगा से ही जौन बा की पूरा धरती के सजावल जा रहा है।
0: बिल्कुल कहली तो भैया कि 15 अगस्त के पूरा धरती से आकाश तक तिरंगा मैं रही तो का पेड़ पौधा का
1: बिल्कुल
0: मनई मेहरारू का लैका लैकी सब एक रंग में रंगाइल रही, तो जोश हमेशा बनल रहे। और अपने जौन भी स्वतंत्रता सेनानी चाहे पुरुष हो या महिला हो सबके प्रति सम्मान हमेशा बनल रहे, और जौन बचपन हो उनके दिल में हमेशा जज्बा और जोश के गाथा सुनावत रही जा, ताकि उनके मन में कभी धूमिल ना होके और जब भी वो बड़ होके देश के नागरिक बने तो अपन आगे पीढ़ी के वो जागरूक करत रहे।
1: तो बिल्कुल, और इसने में जौन बा की सब लोग अपने स्वस्थ रहे, एक एक खातिर भी कामना लोग करला कि हम भी हमें प्रतिभा कर सकी।
0: बिल्कुल
1: तरह तरह की बीमारी भी जौन बा की कभी कभी लोन के एक स्थान पर बैठ करके देखे में मजबूर हो जाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शरीर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा जैसे मौसम होला ना, धूप छांव रहेला, कभी अब शरीर बार रोग व्याधि मौसम के हिसाब से कभी सरद गर्म हो जा रहा, कभी बरखा बुन्नी होता, कबो घाम हो जाता। लेकिन कुछ बीमारी भैया ऐसा होला ना थोड़ा सा कि ओके सावधानी रखल जरूरी बा। छोट मोट जैसे बड़ बीमारी होला तो ओके तो आदमी लापरवाही करके चाहे कल को कैसे तनी मन ठीक हो जाला, लेकिन अगर उहे लापरवाही थोड़ा ज्यादा हो जाला तो आगे चल के थोड़ा परेशानी खड़ा करेला। देखा आज के पंचायती में हम लोग शामिल भी कुछ ऐसे ही जानकारी कर ले, फाइलेरिया जोन की एक जौन बाकी हाथी पांव भी कहा जाला है के, और एकर कारण लक्षण और बचाव के का उपाय बा, ये बारे में डॉक्टर प्रदीप कुमार जोन के चिकित्सा अधिकारी हो उनसे ममता त्रिपाठी जी के बातचीत बा, और मन फेर भी बा लल्लू भारती उनके संगतिया लोगन का
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और भी जानकारी शामिल बा, लेकिन हम तो कहते कि चले जानकारी पहले सुनल जाए फिर आगे बातचीत हुई।
2: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, मानव शरीर की संरचना ईश्वर ने की है, यह माना जाता है कि मानव शरीर निश्चित ही कल्पनीय है। मानव शरीर के मूल भाग सिर, गर्दन, हाथ और पैर हैं, और जब मूल भाग में ही कोई परेशानी और बीमारी लग जाए तो एक डॉक्टर की परामर्श या डॉक्टर का उपचार की आवश्यकता होती है। और ऐसे में फाइलेरिया नामक बीमारी के विषय में चर्चा करने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन से आयुष चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह आमंत्रित हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे बीच में अक्सर देखा जाता है कि ये फाइलेरिया बीमारी, जिसको कि हाथी पांव भी कहा जाता है, ये क्या होता है?
3: जनरली हाथी पांव एक राउंड वर्म इन्फेक्शन है, राउंड वर्म पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो कि एक मच्छर के काटने से मानव में संचारित होता है। और ये मतलब क्रोनिक, या जैसे बोल सकते हैं कि बहुत ही इसका जो है लक्षण बहुत ही देर में मिलता है, उसका नाम क्रोनिक पड़ा है।
2: अच्छा, अच्छा।
3: और जनरली ये लिम्फेटिक ग्लैंड को इफेक्ट करता है। लिम्फेटिक ग्लैंड मतलब कि अपर लिम या लोअर लिम, जनरली मतलब हाथ और पैर, जनरली इन्हीं दोनों में देखा गया है।
2: अच्छा।
3: जनरली हमारे देश में फाइलेरिया नाम की बीमारी को, जिसको एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और आम भाषा में हाथी

0: मेन बचाव ही बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: बचाव में जैसा कि बताया कि हमने कि मच्छर के काटने से फैलता है
1: जी,
0: तो मच्छर के काटने से इसको आपको ये बचाव ये करना है कि अगल बगल जो घर है उसमें साफ सफाई रखें
1: जी, जी,
0: बारिश के मौसम में ज्यादा मिलता है
1: जी, जी,
0: और खान पान के रिसोर्सेज में जिसके द्वारा ये हो सकता है जैसे मछली हुआ
1: जी,
0: मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ और गुड़ से भी होता है
1: जी,
0: ये सब इसमें नहीं खाना चाहिए।
1: अच्छा, फाइलेरिया बीमारी।
0: हाँ, फाइलेरिया बीमारी में ये नहीं खाया जाता है, इसी से इफेक्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये जंक फूड जो भी है ये अधिकतर मीठे, मतलब गन्ने से जो बनता है मीठे में इसके मच्छर जो ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ज्यादा एक्टिव मोड में रहते हैं
1: जी, जी,
0: और वही जब एक मच्छर के काटने से जब शरीर में आते हैं
1: जी,
0: तो वो अपने लार्वा धीरे धीरे जनवर करते हैं, राउंड वन पैरासाइट जिसको बोलते हैं
1: जी,
0: कि गोले रंग जो गोले गोले कृमि होते हैं वो
1: निशान बन जाते हैं।
0: हाँ, गोले गोले निशान हमारे हाथ में पड़े रहते हैं सुसुप्तावस्था में
1: जी, जी,
0: जब कोई टेम्परेचर उस टाइप का आता है या उसमें बचाव ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो फिर धीरे धीरे किसी एक अंग को इफेक्ट कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: जनरली पैर में देखा जाता है जिसलिए इसका नाम हाथी पाव पड़ा
1: जी,
0: है
1: जी,
0: लेकिन
1: ये ज्यादा परसेंटेज में देखा जाता है कि ये पाँव में ही
0: पाँव में ही होता है इसलिए इसका नाम हाथी पाव ही पड़ा है
1: जी, जी,
0: और 1-2% केसेस में ये हाथ में भी मिलता है
1: जी,
0: किसी
1: जी,
0: भी हाथ में मिल सकता है, दाहिने या बाएं, मेल या फीमेल दोनों के रेशियो बराबर है।
1: अंग में मच्छर अगर काटा है
0: उस अंग में
1: बहुत ज्यादा देखने
0: प्रभाव ज्यादा मिल सकता है
1: जी, जी,
0: जनरली देखा गया है
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया। डॉक्टर साहब एक बात और कि फाइलेरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं?
0: इसके लक्षण ये है कि जैसे कि तेज बुखार आएगा
1: जी,
0: जिस जगह में इफेक्ट होगा तो वहां पर सूजन हो जाएगी और बॉडी एक जिसको बोलते हैं कि मतलब कि उस अंग में आप चीटी काटेंगे या उस तरह काटेंगे तो कोई असर कम होता है बाकी नॉर्मल की अपेक्षा
1: जी, जी,
0: ये सब उसके लक्षण देखे गए हैं। और सिवरिंग चिल्स जिसको बोलते हैं मतलब कि कपकपी आ सकती है सिर्फ उस अंग में
1: जी,
0: ऐसे जनरली मलेरिया
1: काटने के बाद
0: या जब वो इफेक्ट हो रहा है
1: जी,
0: इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जिसको बोलते हैं कि वो बीमारी कब उत्पन्न होती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 से 7 साल के बीच में होता है।
1: अच्छा, ये काटने के तुरंत बाद नहीं
0: होता
1: है, इसका एक समय होता है जैसे 5 से 7 साल के बाद ही ये आपका
0: 5 से 7 साल के बाद जो प्रभाव देखने को मिलता है पब्लिक आम जनमानस में
1: जी जी। फाइलेरिया का इलाज क्या होता है?
0: फाइलेरिया का इलाज मेन ये है कि बचाव ही, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर किसी भी बीमारी का, तो इसमें प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट है। इसमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि लोग जो फाइलेरिया के जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या फाइलेरिया के अलग से हर जिले में अलग से एक हॉस्पिटल बना हुआ है, सोनभद्र में तो अभी नहीं है लेकिन बनारस में बना हुआ है
1: जी, जी।
0: इसमें यह कि इसके इलाज के लिए प्रोफाइलेक्टिक डोज के लिए एल्बेंडाजॉल और DEC नाम की एक दवा होती है डाइथाइल कार्बामेजेपिन, वो हमारे विभाग के द्वारा निःशुल्क सभी को दी जाती है। 5 साल से ऊपर वालों को सभी को दिया जाना होता है।
1: 5 साल
0: से ऊपर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि 5 साल से 7 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही है, तो 5 साल से पहले होगा तो उससे कोई असर नहीं। और वैसे भी 5 से 10 साल तक के बच्चों में जो वैक्सीन लगता है रूटीन RI जिसको बोलते हैं उससे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही होता है, इसीलिए जब वैक्सीन लगेगा तो कोई मच्छर उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात। और डॉक्टर साहब फाइलेरिया कैसे फैलता है?
0: इसका सही कारण मच्छर के काटने से होता है और पब्लिक टू पब्लिक ये ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप हमें काटा, हम अगर इफेक्टेड हैं, अगर हमारा ही ब्लड अगर किसी और को चढ़ा दिया जाए या साफ सफाई नहीं रखा जाए तो उसके वजह से वो दूसरे को फैल सकता है। इफेक्टेड पर्सन का कोई भी अंग हम किसी भी रूप में मेडिकल टर्म में अगर ले रहे हैं जैसे ब्लड हुआ, जनरली ब्लड ही लिया जाता है और कुछ तो कर नहीं सकता और किसी उससे नहीं फैलता है, छुआ छूट वाली बीमारी नहीं है। इसमें यह है कि पब्लिक को हमें जागरूक करना है कि कितना मतलब अपने आसपास
1: साफ
0: सफाई
1: रखें।
0: हमारे विभाग के द्वारा जो भी दवा दी जाती है DEC और ये रूटीन में सबको खाना चाहिए 2 साल में 2 बार
1: जी। अक्सर डॉक्टर साहब ये भी देखा जाता है कि ये जो दवाएं दी जाती हैं तो हमारे बीच में कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये दवा खाने से नुकसान करता है।
0: उसकी दवा का कोई नुकसान नहीं है,
1: इसका कोई साइड इफेक्ट
0: है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया में यही 1-2 दवा ऐसी है, एल्बेंडाजॉल, आइवरमेक्टिन, DEC, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये जैसा जाता है एब्जॉर्ब होता है उसी रास्ते स्टूल के रास्ते वो बाहर निकल आता है, बस खाली अपने रास्ते के जितने भी वर्म है उनको मारते हुए बाहर आता है। इसीलिए पब्लिक को जागरूकता नहीं कि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता है
1: जी।
0: बस खाली जिसकी लंबी दवा चल रही हो न्यूरो की या ब्रेन की और जिसको लेडीज में जिसको प्रेगनेंसी है बस उनको ये दवा नहीं दी जाती। उसके अलावा बाकी सबको दे सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब एक बात और कि इस बीमारी में जांच का सही समय क्या होता है?
0: इस बीमारी में बेसिकली जांच का समय 12 बजे किया जाता है, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको FTS नाम से बोलते हैं, फाइलेरिया एंटीजन टेस्ट स्ट्रिप आता है जैसे मलेरिया का किट होता है उसी तरह, लेकिन इसके सैंपल लेने का सही टाइम 12 बजे है। 12 बजे इसलिए है क्योंकि इसके जो मच्छर जो लार्वा है वो बार राउंड वन जो पैरासाइट जो है वो 12 बजे एक्टिव मोड में रहते हैं।

0: क्योंकि 12 बजे हमारी जो नर्व है वो सुसुप्तावस्था में रहती हैं, रिलैक्स मोड में रहते हैं, तो इसलिए जो भी एंटीजन आते हैं वो सब अपने फुल पावर स्ट्रेंथ में रहते हैं कि हम कितने से कितने उस पर हावी हो सके। इसीलिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती रहती है जिससे कि उसको मारते हैं कि और बीमारी हमें न हो।
1: अगर इलाज की बात होती है डॉक्टर साहब, तो देखा जाता है खान पान में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ऐसे रोगियों को।
0: हाँ, खान पान में ये है कि आपको पुराना साली चावल, ज्वार, मक्का ये खा सकते हैं
1: जी।
0: और नहीं खाने में है कि जैसे कि मछली, मांस मछली, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, गुड़
1: जी।
0: और
1: अच्छा, गुड़ का भी परहेज
0: रखना है। मिठाई और कंटेमिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी ये नहीं लेना। वही बताया ना कि जो मच्छर के काटने से होता है और मच्छर दूषित पानी में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो शरीर में जाएंगे तो किसी न किसी रूप में वो इफेक्ट करेंगे बॉडी को। इसलिए
1: अच्छा, इसमें अक्सर देखा जाता है जो ठंडा चीज होता है, ठंडा या गर्म चीज का कोई परहेज नहीं होता है या
0: नहीं? इसमें ठंडे गर्म का कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये है कि आपको दही थोड़ा सा कम इसमें लिया जाता है क्योंकि इसमें वो दही एक रूप में मेडिकल आयुर्वेदिक रूप में बता रहे कि वो बादी होता है, मतलब इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता और गर्म करता है वो, तो इसलिए वो जब टेम्परेचर गर्म करेगा तो इन्फेक्शन, जो पहले से बुखार आया रहेगा तो और फीवर बढ़ जाएगा, इसलिए मरीज को दिक्कत होने लगी, इसलिए ये मना किया जाता है।
1: डॉक्टर साहब एक बात और, कि क्या फाइलेरिया के लिए कोई वैक्सीन है? जैसे हर रोग के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है,
0: आज तक कोई बीमारी के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसका बचाव ही मेन है,
1: और मेन बचाव ही है,
0: मेन बचाव
1: कर रहे हैं तो इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं।
0: और होने के बाद आपको अगर बीमारी से अगर इफेक्टेड हो गया तो उसकी दवा 10 से 12 साल तक चलती है मिनिमम, जैसा उस पर रिस्पॉन्स मिलता है, या जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जाता है उसको। दवा में वही तीन तरह की दवा चलती है, डीसी, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, तीनों वेट के हिसाब से रहता है। और इसके लिए हमारे जिले में तो अभी तो फिलहाल फाइलेरिया का एक अलग से सेंटर नहीं बन पाया है, बनारस में इसके लिए अलग से एक सेंटर ही बना हुआ, हॉस्पिटल ही है भैलोपुर में, स्वामी विवेकानंद नाम से है चिकित्सालय, वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ इसी के मरीज की दवा दी है, इसी की दवा दी जाती है, वो भी निःशुल्क, और हमारे विभाग के द्वारा भी NHM WHO के द्वारा भी दवा निःशुल्क दी जाती है साल भर में 2 बार, वो प्रोफाइलेक्टिक डोज के रूप में, प्रोफाइलेक्टिक डोज के रूप में होता है, अभी दिया गया था जुलाई में, 7 से 14 जुलाई के बीच में अभियान चलता है एक हफ्ते का, फिर जनवरी में चलता है 6-6 महीने,
1: यानी साल में 2 बार ये दवा निःशुल्क वितरण,
0: निःशुल्क हमारे विभाग के द्वारा निःशुल्क वितरण दी जाती है।
1: हमारे श्रोताओं को चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में, कि क्या अपनाएं कि ये बीमारी से दूर रहे, बच सके?
0: हम श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि हमारे अगर इस बीमारी से हमारे विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी मुहिम चलाई जाती है कि इसके लिए जो निःशुल्क दवा ली जाती है, उससे हमारी तरफ से, हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से ये निवेदन है कि उसे जैसा हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं वैसा उन्हें उसे यूज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इसमें हमारे जो स्टाफ उनके लिए आपके द्वारा से निवेदन है कि कोई मिसबिहेव ना करें और जैसे वो बताएं वैसा खाइए। रूमर फैलता है इसे, किसी लिए रूमर जब भी फैलता है तो पहले उसको सही जांच करने के बाद ही उसके बारे में कदम उठाना चाहिए।
1: जी, और बचने के लिए सबसे पहले साफ सफाई पे,
0: बचने के लिए साफ सफाई के लिए आपके अगल बगल पानी इकट्ठा ना हो, मच्छर न पनपे, और बारिश के मौसम में तो बेसिकली ज्यादा ध्यान देना होता है इसी सब के लिए,
1: कि हम लोगों में अगर
0: साफ स्वच्छ पानी पिए, अगल बगल साफ सफाई रखें, तो जिससे कि वेंटिलेशन भी जरूरी है हमारे उसके घर के लिए, कि जैसे 2 कमरे का पूरा पैक मकान है तो इसलिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। सनलाइट जब टेम्परेचर जब भी होगा तो ऑटोमेटिक मच्छर मक्खी नहीं पनपेंगे, नहीं पनकेंगे तो आपको इन्फेक्शन आपके शरीर में खाने के रूप में नहीं आएगा, इसलिए आपसे उसे बचे रहेंगे।
1: जी जी, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा जानकारी दिए, उम्मीद है कि हमारे श्रोता जरूर इस बीमारी के बारे में जानेंगे, समझेंगे, और जो भी मन में बात उनके होगी, जो वहम होगा वो दूर होगा इस जानकारी से। तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भोला भैया,
3: हाँ,
2: देखें इतना बढ़िया जानकारी सुनल गल बीमारी के बारे में, गुनल भी जरूरी बा, कहे कि देखे भगवान न करे बीमारी ना लगे केहू के, लेकिन कहल जा रहा ना कि बिन बोलावल मेहमान के,
3: हाँ,
2: भाई केहू नहीं समझे कब आ जाए कब हो जाए, तो जानकारी रहल बहुत जरूरी बा, बहुत बहुत धन्यवाद देवल जाए। लेकिन धन्यवाद जोन बाकी लल्लू भारती उनके संगतिया लोन के गावल एगो मन फिर
3: के साथ, बिल्कुल
2: सुनल जाए,
3: छुप रहिया सुना।

0: बता सब बहन
1: हाँ भैया
0: मन मनसाइन देखा कितना बढ़िया करावत हूँ लल्लू भारती उनकर संगतिया।
1: बिल्कुल करौलान, बहुत बहुत धन्यवाद देवल जैन के।
0: इस समय मौसम के अनुसार हम लोग खेती किसानी में भी ध्यान देने की जरूरत है। आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस है। और इसने में जो बाकी आज मौसम वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह जो BHU के हवन
1: हाँ
0: उनसे उनकर भी जो बाकी कुछ सुझाव आयल है किसान भाई लोग
1: तो
0: का
1: जान
0: कुछ
1: लिया
0: करें
1: जाए।
0: तो उनका जानकारी ले लो जाए।
1: बिल्कुल
2: नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, मौसम जो है इन दिनों लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। कुछ दिन पहले तक लगातार अच्छी बारिश का मौसम था, पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी बनी हुई है। और आने वाले अगले 2-3-4 दिनों की बात कर लें तो कुछ जगह पे हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे उतार चढ़ाव वाले मौसम में किसान भाई फसलों, पशुओं और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें खेती किसानी की, तो लगातार बारिश के बाद जो है तेज धूप और उमस के कारण खेतों में नमी और तापमान दोनों में तेजी से बदलाव हो रहा है किसान भाइयों। इसीलिए किसान भाई अपने खेतों की नियमित निगरानी करते रहें और जिन खेतों में अभी पर्याप्त नमी है वहाँ बिना आवश्यकता के सिंचाई न करें, और वहीं जिन खेतों में भाई कुछ गड्ढे में खेत होते हैं वहाँ अगर जल भराव है खेत में तो उसकी निकासी करें, क्योंकि फसल की जड़ों को लंबे समय तक पानी में रखेंगे तो उसका जो है फसल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और तेज धूप और उमस के बीच फसलों में किसान भाइयों कीटों का, रोगों का जो है प्रकोप बढ़ सकता है, तो ऐसे में पत्तियों को, तनों को और पौधों की नियमित जांच करते रहें। किसी तरह का रोग व्याधि अगर आपको दिखाई देता है तो जो कृषि विशेषज्ञ हैं आपके क्षेत्र के उनसे सलाह लेकर ही दवाई का उपयोग करें। और अगर हम पशुओं की बात कर लें इसी क्रम में, तो उमस भरी गर्मी में पशुओं को हीट स्ट्रेस यानी गर्मी से होने वाला परेशानी भी हो सकता है और किसी और रोग का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसीलिए किसान भाई क्या करें, पशुओं को जो है छायादार स्थान पे, हवादार और साफ स्थान पे ही रखें। और उसी क्रम में हम बताना चाहेंगे किसान भाई आप लोगों को कि पशुओं के लिए साफ और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी हर समय उपलब्ध रखें। बारिश के समय पशुशाला में नमी और गंदगी से संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए जो है पशुशाला जो किसान भाई हो आपका वो साफ हो, सूखा हो और पानी जमा न हो, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि भाई पशुओं के साथ, फसलों के साथ हमारा भी सुरक्षा जरूरी है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे पशु और कहीं ना कहीं हमारे जो है पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए जो है बारिश के बाद अचानक धूप हो और उमस बढ़ने से शरीर पर जो है ना भी असर हो सकता है, इसीलिए जो है किसान भाई हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। और कहीं लंबी यात्रा पे जैसे जा रहे हैं, कहीं बीजन लाना है या फिर कुछ ऐसी जगह जाना है, तो मौसम को देखते हुए ही अपनी क्रियाएं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आप भी स्वस्थ रहें फसलों के साथ और पशुओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
0: बता सब बहन देखे कितना बढ़िया शिवमंगल सिंह BHU के जो मौसम वैज्ञानिक रहलन, किसान भाई लोगन के सलाह दिलन, आपके बहुत बहुत धन्यवाद हो।
1: और बिल्कुल और सही बात देखे, मौसम के जानकारी मिलने के साथ ही देखा अपन खेती बाड़ी के काम में सहूलियत मिल जाला भैया। और जब मोटा अनाज के सवाल उठे ला भैया कि भैया ए में का देखभाल करल जाए, कैसे कर हम लोगन रखवाली करल जाए, कौन अनाज कौन समय में लगावल जाए, तो इमन कोनो ज्यादा सोचे विचारे के जरूरत ना होला। और जैसन की आप जो है की देव कुमार चेरुजन की प्रगतिशील आदिवासी कृषक भैया से बातचीत कैले ही हवन कि मोटा अनाज में सामयिक कृषि कार्य के तरीका से करल जाए, तो जन आप बातचीत कैले हवन तो हम लोग उनके सुनवावे ना।
3: श्रोताओं, सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धि ब्लॉक के खोखा में हमारी मुलाकात श्री देव कुमार चेरो जी से हो रही है। आप जो मुख्य धारा था अपने पूर्वजों का, उससे हट करके अब खेती किसानी की ओर मुड़े हुए हैं और बहुत ही बृहद रूप में मोटे अनाज का खेती करते हैं और उसके साथ साग सब्जी भी उत्पादन करने में आप अच्छा समय दे पाते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं। इनका कैसे खेती के प्रति रुझान उत्पन्न हुआ, इनके माध्यम से जानेंगे और कौन कौन से फसल उत्पादन किए हैं इन सभी के बारे में भी। तो देव कुमार चेरो जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये
4: आज आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खेती के लिए अच्छा युक्ति अपना पाते हैं। आज जहां अरहर तिल की बात है या फिर जो बाकी मूंगफली की बात है, सावा जो मोटा अनाज के अंतर्गत जो लुप्त होते चला जा रहा था, मक्का वगैरह तो लगभग होते ही रहता है, ये कब से खेती करना आप शुरू किए हैं?
5: हमने तो खेती जब तक हम अपना होश संभारे हैं तब से हमने अपना खेती गृहस्थी में ही समय दे रहे हैं।
4: अच्छा अच्छा, तो ये पहले जाना जाता था कि अपने जो चिरो बिरादरी के लोग हैं,
5: जी जी,
4: खोखा के हो गए, करहिया बोधाटी के हो गए
5: जी,
4: और इधर बगरवा बासिन वगैरह के, तो ये तीर धनुष लेते और निकल जाते जंगल, ऐसा आप सुने हैं कि नहीं?
5: हाँ, ऐसा तो अभी भी हमारे कुछ पूर्वजों ने कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं लोग।
4: हाँ हाँ हाँ,
5: लेकिन उनसे हट के हमने थोड़ा अपना
4: अच्छा अच्छा
5: कार्यक्रम करते हैं।
4: तो ये जो कि अब अहेर खेलने में कुछ लहा लेते हैं लोग शिकार वगैरह की, ऐसी लौट जाते हैं सब?
5: अब देखिए, हम वहाँ उतना हम अवगत नहीं है।
4: अच्छा अच्छा अच्छा,
5: कि लहा लेते हैं कि नहीं लहा लेते हैं।
4: अच्छा, मछली के लिए तो डांग बंसी के जुगाड़ करते थे लोग?
5: हाँ, वो तो करते हैं
4: अभी, वो
5: अभी भी करते हैं,
4: तो छेकते हैं शाम को, सुबह जाते हैं लेने।
5: जी जी।
4: अच्छा अच्छा, तो क्या कहते हैं, कब मछली उछली मिल रहा है?
5: हाँ, वो तो मछली, उन्हें मछली वाला तो कभी कभी अपना
4: लहा लेते हैं,
5: लहा लेते हैं, देखते भी हैं।
4: तो आप नहीं जाते हैं मछली मारने?
5: नहीं, मछली मारने तो हम नहीं जाते हैं।
4: तो कैसे उससे विमुख हुए, एक खेती करने के तरफ कैसे झुके आप?
5: अब देखिए, कम बेसी हमारे पिताजी ये आश्रम के जब चल रहा था पढ़ोशाला, ये रात्रि
4: पढ़ोशाला, हाँ,
5: तो उसमें वो पढ़ाते थे, तो रात रात में पढ़ाते थे, उसमें हम लोग भी अपने जाते थे।
4: अच्छा अच्छा,
5: तो वहीं से पांचवी पास किए, पांचवी पास करने के बाद हम लोग दुद्धी चले आए पढ़ने।
4: अच्छा अच्छा,
5: अजय बाल भारती में पढ़े।
4: पढ़ाई कितना तक किए?
5: ज्यादा तो नहीं किए, मतलब हाई स्कूल तक किए हैं।
4: हाई स्कूल पास किए?
5: अच्छा
4: अच्छा,
5: इसके बाद फिर नौकरी चाकरी तो कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन फिर अपना जब हाई स्कूल पास करके घर वापस आए तो अपना खेती बाड़ी में ही लगे हैं, तो लगे ही हैं।
4: तो ये जो पढ़ाई लिखाई आप किए, तो उसमें कुछ मैंने मिला कि समय फालतू बिताना ठीक नहीं?
5: हाँ, तो वहीं से हमको कुछ मतलब ज्ञान हुआ, ये सब फालतू है, अहेर खेलना, मछली मारना, ये सब चीजें
4: हैं,
5: आदमी को समय उस तरफ देना चाहिए जहाँ की मतलब
4: कुछ विकास हो,
5: कुछ विकास हो।
4: जी जी,
5: तो उसमें सामाजिक दृष्टि से भी देखने में लगे कि हम सही आदमी काम कर रहे हैं। तो इस तरीका से हमारा सोच बना है, और हमने खेती गृहस्थी।
4: तो इस साल बरसात के मौसम में कौन कौन खेती किए हैं?
5: देखिए, तभी यही सर्वप्रथम में तो तिल, अरहर और मक्का का खेती हुआ है, सावा का हुआ है। अभी अभी फिलहाल में ये मैंने दो चार दिन हुआ है कि धान यह रोपनी मतलब ठप हुई है।
4: अच्छा अच्छा अच्छा,
5: ज्यादा कत नहीं है, लेकिन 10-15 किलो का धान के रोपनी
4: किए हैं।
5: किए हैं,
4: और मूंगफली वगैरह भी?
5: हाँ, मूंगफली है।
4: तो साग सब्जी के जुगाड़ कैसे करते हैं?
5: साग सब्जी के लिए देखिए, विशेष रूप से वैसा हम लोग का साधन है नहीं, हमारे पास लाइन बिजली बत्ती है नहीं हम लोग के गाँव में, ठीक ना। लेकिन हम लोग अपना खाने पीने भर व्यवस्था बना लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, झांकी और रवाई नहीं होता?
4: हाँ, हाँ, रवाई झांकी करके। हाँ,
5: तो उसी में अपना सेम हुआ, और लौकी हुआ,
4: बोड़ा
5: हुआ,
4: अच्छा अच्छा,
5: खीरा हुआ, ये यही सब मतलब अपना लगा देते हैं, बरसाती मतलब सब्जी का व्यवस्था हो जाता है खाने भर की।
4: तो ये सब में खाद भी डालते हैं?
5: नहीं, खाद नहीं डालते हैं, खाद नहीं डालते हैं। और हम लोग का जो भी खेती है, तो गाय का गोबर,
4: अच्छा,
5: बकरी का वो जो
4: लेड़ी
5: होता है,
4: हाँ,
5: इसी का ही प्रयोग करते हैं अक्सर करके।
4: अच्छा।
5: हाँ, धान उनमें थोड़ा बहुत मतलब अपना वो
4: यूरिया डीपी
5: का मतलब यूज कर लेते हैं, बाकी जैसे मक्का हो गया, अरहर हो गया, तिल हो गया, और जो साग सब्जी वाला हो गया, ये हम लोग खाली गोबर का।
4: तिल कितना बोए हैं?
5: तिल तो सर यही 1 बीघे के लगभग में है।
4: अच्छा, और सावा?
5: सावा भी उतना ही लोगों में।
4: अरे वाह, तो बढ़िया बोए हैं।
5: हाँ, हम तो सावा बोए, कोदो का हम बीज खोज रहे थे।
4: अच्छा
5: है, लेकिन न मिलने की वजह से नहीं बोआ पाया, नहीं उसको भी हम बोते।
4: हाँ,
5: चूंकि इनकी जो मतलब चावल होता है ना, यह चावल का अपेक्षा इस चावल को खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है।
4: अच्छा अच्छा, और ताकतवर भी होता है।
5: ताकतवर होता है।
4: हाँ,
5: हाँ। खाने के बाद लगता है कि हम भोजन किए हैं।
4: बात क्या बात। तो ये सवा एक बीघा में बोए हैं।
5: एक बीघा में सवा है।
4: सवा कब बुआई किए हैं?
5: बस जैसे अषाढ़ हुई।
4: हाँ, पानी जो बरसा
5: बरसा
4: तो इस समय तो सब फूट रहा होगा।
5: हाँ, फूटने के अब कगार में आया है।
4: अभी फूट बाल निकल रहा है उसमें। और तिल कितना बोए हैं?
5: तिल एक बीघे में है।
4: अच्छा अच्छा,
5: तिल भी आ गया ठेवना पर।
4: हाँ, तो तिल तो कितना लगभग बोए हैं?
5: तिल देखिए ये सब वो जो हाई ब्रेड का लिए थे उसमें एक साल बोए हाई ब्रेड का लेच के।
4: अच्छा,
5: तो फिर वो रह गया उस तो उसी का बीज फिर मतलब दोबारा यूज किए हैं, यानी बाजार से नहीं लगे घर वाले ही।
4: तो बढ़िया जमा हो गया।
5: बढ़िया जमा हो गया है। तो उसमें लगभग हम देख रहे हैं कि अगर बढ़िया फसल उतर जाए तो 1.5 से 2 क्विंटल के आसपास।
4: अच्छा, आ जाएगा।
5: संभावना है।
4: अब बोए के किलो थे लगभग?
5: लगभग वही हम ज्यादा नहीं बोए हैं तिली को, 1 किलो
4: 1 किलो
5: के अंजात में इसी होगा।
4: अच्छा, इसी नाप करके।
5: हाँ, एक नाप करके जैसे घर में होता है। हाँ, तो तोल के नहीं आता।
4: हाँ, सही बात है।
5: वो एक अंजात बोने का जो अकड़ा होता है
4: पुटिला में है। हाँ, तो बढ़िया है। बांस के बर्तन में जो है कि ले जाकर के छिड़ दिए। क्या बात है जो है कि। और बांस के बर्तन के उपयोग वो होता है?
5: हाँ, हम लोग तो अभी तक उपयोग करते हैं।
4: तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो है कि मान लीजिए 1.25 किलो लगभग आप तिली बोए
5: जी, जी,
4: एक बीघा में
5: जी।
4: और उत्पादन लगभग हो जाएगा 1.5 से 2 क्विंटल
5: जी जी।
4: यानी कि तेल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा?
5: नहीं, तेल के लिए कोई दिक्कत नहीं। तेल हम लोग खरीद के खाते भी नहीं है।
4: और
5: इधर तेल हो गया उसमें सरसों हो जाएगा
4: और उधर तिलवा भी जो है।
5: हाँ, हाँ, अपना एकदम शुद्ध।
4: और लाई बनावे हुए तो जिनोरा अलग से।
5: हाँ, जिनोरा वो अलग से है।
4: जिनोरा बॉयल है कि नहीं?
5: जिनोरा तो देखिए इन साल तो बिया के अभाव में चूक गए हैं।
4: अच्छा अच्छा,
5: नहीं बो पाए हैं।
4: बड़ा मोटा अनाज का सेवन करते हैं लेकिन
5: बगल में है आई पड़ोसी वाले वो हो जाता है
4: व्यवस्था। कहीं से आप तिली दे देंगे तो जोरा दे देंगे
5: जी, जी।
4: तो लाई तिलवा दोनों बन जाएगा।
5: दोनों बन जाता
4: ये तो बहुत अच्छा। लेकिन इतना बढ़िया शुद्ध खेती जो है आप लोग कर पा रहे हैं। तो ये जो है कि तिली में और क्या कुछ देख रेख करना पड़ता है? कब बोए हैं तिली?
5: तिली देखिए अभी हम मतलब शुरुआती तौर में ही बो दिए हैं। अषाढ़ में ही हमने थोड़ा
4: बाद में बीच बीचवा में बोए
5: तो अभी हमारा
4: तो खेत कैसा आपका ढलान वाला है?
5: हाँ, खेत मेरा ढलान वाला है।
4: अच्छा, पानी रुकता नहीं?
5: नहीं, नहीं पानी नहीं रुकता है।
4: तो तिली तो बढ़िया है?
5: हाँ, तिली बढ़िया है, ठेवना भरा चुका है।
4: तो ये मतलब मौसम के परख आप करते हैं तब जा करके अच्छा उत्पादन कर पा रहे हैं। तो ये तिली में कोई रोग व्याधि लगे के शंका नहीं रहता है?
5: अभी तो रोग का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा इसे, लेकिन जब होगा तो उसका उपचार।
4: अच्छा, एक में लोग बताते हैं कि आकाश बावर लगता है तिली में।
5: जी जी जी, लगता
4: तो
5: है।
4: वो आपकी तरफ का
5: नहीं है? नहीं, अभी तो हमारे पास
4: नहीं है
5: वो वाला। नहीं है
4: तो कोई साल नहीं हुआ है अभी?
5: अभी तो हमारा खेत में नहीं हुआ है।
4: सब तो बच गए हैं। नहीं, बताते हैं लोग कि प्लाट के
5: प्लाट के प्लाट वो
4: खत्म कर देता है। तो अच्छा, तिली में जल्दी बकरी वगैरह भी नहीं खाते हैं इसको?
5: नहीं, बकरी नहीं उतना खाती है तिली,
4: इसलिए बचाने के लिए कोई ज्यादा उसमें वो नहीं रहता है।
5: नहीं, नहीं।
4: और सवा में तो सवा कैसे देख रेख करते हैं?
5: तो सवा भी है वही खाड़ कतवार वो अलग से मतलब कुछ उस तरीका जैसे तिल हो गया। तिल में वो आकाशवार जो कहते हैं वो लपड़ जाने पर दिक्कत होता है, ज्यादा फसल नुकसान होता है। वैसे ही कुछ मतलब उसमें अगर हो गया मतलब उस लारंगदार कोई मतलब वो होता है कुछ घास में तब दिक्कत होता है, नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सवा में वही दिक्कत होता होगा कि सुगा ज्यादा खाते हैं?
5: हाँ हाँ, जब फूटने के बाद वो जब चौर हो जाता है उसमें ना, उस समय सुगा बहुत तेज लगते हैं।
4: बहुत तेज, बल्कि धान कम ले जाते
5: हैं।
4: हाँ,
5: धान तो सुगा नहीं खाते हैं उतना,
4: सवा
5: लेकिन सवा बहुत तेज में
4: वही एक से ज्यादा नुकसान है। तो देखना पड़ता होगा
5: उसमें मतलब आदमी रहता है फिर आदमी हट जाता है तो उसके लिए एक व्यवस्था बना देता है वो कपड़े का वो झलका जैसे झंडे जैसे बना देते हैं और गाड़ देते हैं जगह जगह
4: हिलता डोलता
5: रहेगा और हवा जब डोलेगा तो वो भी डोलेगा तो उससे कम मतलब।
4: क्या बात है। तो श्रोताओं देखें, ये सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के खोखा के रहने वाले हैं देव कुमार चेरो जी। और आप अपने पूर्वजों के काम से हट करके खेती तो चूंकि सबके पास था, आज भी है, लेकिन मेहनत ना करने की वजह से लोग अहेर खेलने, शिकार खेलने, मछली बझाने, यही सब चक्कर में जो है कि अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन उससे हट करके देव कुमार जी जो है कि अपना काम करते हुए अरहर, तिल, मक्का, सावा, धान, मूंगफली, इसके अतिरिक्त भी तरह तरह के साग सब्जी, नेनुआ, तरोई, सेम वगैरह, खीरा अपने खेत में उत्पादन करते हैं और इससे अपना।
0: तो निश्चित रूप से बतासा बहन, इतना बढ़िया खेती किसानी कर जाला लोग, और एक साथ जो बाकी कृषक के आय दुगना बढ़ावे के एक अच्छा माध्यम भी बा।
1: बिल्कुल, और
0: आज बाजार भाव मिल गई हो दुधी मंडी के, कुंतल में है आलू 1200 कुंतल, और सफेद आलू जोन बाकी 1000, भिंडी 800 से 1000, नेनुआ 1500 से 1600, टमाटर 2200 से 2500, और जोन बाकी लौकी रहा 800 से 1000, कोहड़ा 1000, करेला 2500 से 3000, मूली 2000 से 2200, वहीं गाजर रहा 3000 से 3200, कुंडरू 1500 से 1600 रुपया, और गोल बैगन 2000 से 2500, लंबा बैगन 1000 से 1200, पेक्ची रहा 1200 से 1400, और बंडा 3500 से 4000, ए तरीके पालक 3000 से 3500, और नींबू रहा जोन बाकी 150 से 200 रुपया सैकड़ा, इरहल दूधी मंडी के बाजार भाव कुंतल में।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद बा।
0: अजय कुशवाहा भैया भेजले रहन, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: अब चले से पहले भैया देखा जी से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोगों के बचपन के पाठ पढ़ावल जा रहा बात, तो ये पढ़ावल जाए और शिक्षा का ज्ञान सिखावल जाए, ऐसे बाल विवाह मुक्त भारत बनी, तो चलल जाए।
0: सब पंचन के राम राम।
6: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत FM 102.7 पर, ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसानवाड़ी हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: पंचो जय हिंद।
1: रत्ना बहनी।
2: हाँ भैया।
1: देखो हम पंचो यू सोचित हैं कि अपने ख्यात मैया बढ़िया से बढ़िया फसल उत्पादित हुए।
2: सही बात कहा तो वेके कातन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे खेत का पानी जो है जरूर मिले।
1: बिल्कुल सही कहते हो, अपनी फसल का जब पानी मिली तो फसल बढ़िया तरह वैसे हुई। कबो कबो हम पंचे सोचित हैं कि बढ़िया तरह पानी मिल जाए लेकिन ना ही मिल पावत है।
2: सही बात कहा तो वो पानी हम पंचन का समय ते मिलत रहे वे के खातिर हमारी जो सरकार है वह यू प्रयास करत रहते है कि हमारे खेत का पानी मिले, यानी कि हर फसल का हर खेत का जो है पानी जरूर से जरूर मिले। वही के खातिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो बहनी। और देखो इसके अंतर्गत जो हर खेत के यहाँ पानी मिले और इसके साथ साथ प्रति बूंद ज्यादा फसल होए।
2: हाँ सही बात कहा तो बस यू है कि जितना जरूरत है जरूरत भर पानी जरूर मिले रहे। काहे कि कबो कबो कहा होता है पानी की कमी के कारण हमारी फसल जो है खराब हो जाता है या उतनी बढ़िया ना हो पावत है।
1: हाँ और देखो जब ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं तो जरूरी यह हो जाते हैं कि जो आज की खबरें हैं वही जान लीन जाए।
2: बिल्कुल आओ जाना जाए।
3: यूपी में 10 रुपए लीटर खरीदा जा रहा गौमूत्र, 15 गांव में पायलट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। बुलंदशहर में FPO के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। स्याना तहसील के नरसेना गांव में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में 15 गांव जुड़े हैं और रोज करीब 500 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है। गांव में 200 लीटर क्षमता के टैंक लगाए गए हैं। संग्रह में सहयोग करने वाली महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपए कमीशन दिया जा रहा है और करीब 300 महिलाओं को शेयर होल्डर बनाया गया है। एकत्र गौमूत्र में जड़ी बूटियां मिलाकर खेती में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। आगे खरीद दर 20 रुपए प्रति लीटर करने और सफलता के बाद इस मॉडल को प्रदेश के दूसरे हिस्सों में विस्तार देने की योजना है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: रत्ना भाई नहीं?
8: हाँ ओम भैया।
7: देखो हम पंचे अपन जब फसल के यहाँ तैयार करी थे तो कबो कबो ऐसी ऐसी चीजें वहाँ हो जाती हैं फसल में, यहाँ दिख जाते हैं कहूँ पाती पीली पड़ रही है, कहूँ और कोने समस्या आ रही, तो वह चीज हम पंचे जाने नहीं पाए थे।
8: सही बात कहा, तो उनके खातिर जो विशेषज्ञ भैया आवत है वह बता सकते हैं कि भाई इनमें क्या समस्या है, उनका दिखाए सुनाए के हम पंच जान सके थे।
7: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो ये सब पोषक तत्व की कमी तरह होते हैं विशेषज्ञ भैया बतावा करते हैं, तो आओ आज की बात में यह जान लीजिए।
8: बिल्कुल, तो खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक प्रबंधन के बारे में यहाँ जाना जाए।
9: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं, खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक की भूख कैसे मिटे, इसके लिए क्या प्रबंधन करना है आपको, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर केएन तिवारी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय बहुत जगह बुआई और रोपाई हो चुकी है, किसान भाई बहन जो खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक पोषक तत्व की कमी है उसकी भूख कैसे मिटाएं?
10: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की ये चर्चा जो पोटाश और गंधक के महत्व और उसकी जो कमी फसलों में हो रही है उसके बारे में हो रही है। आम तौर पर किसान जो है यूरिया और डीएपी का प्रयोग खरीफ फसलों में करता है और उसका नतीजा ये होता है कि पोटाश की कमी सारी फसलों में खरीफ की
9: जी
10: दिखाई दे रही है,
9: चाहे धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, मक्का हो,
10: सब में आप देखिए उसकी नोके पुरानी पत्तियों की पीली होती हैं, वो किनारे किनारे वो झुलस जाती हैं।
9: तो किसान भाई अगर खेत पर पहुंचे तो पहचाने कैसे?
10: अभी पहचान ऐसे कर सकता है ना कि जो पुरानी पत्तियां हैं उसकी नोके पीली होनी शुरू होती हैं
9: जी,
10: और उसके बाद में वो पीलापन किनारे किनारे बढ़ता है और बाद में पोटाश की कमी की वजह से वो पीलापन झुलसा सा दिखाई देता है। ये पोटाश की कमी का लक्षण है और इसी तरह के लक्षण सारी फसलों में दिखाई देते हैं,
9: चाहे वो मक्का है, धान है, दलहनी फसलों
10: बाजरा,
9: अरहर, उर्द, मूंग है,
10: बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, लोबिया, ये सारी फसलों में आप इस तरह के लक्षण देखते हैं।
9: और तिलहनी फसलों में?
10: तिलहनी फसलों में जैसे मूंगफली है, तिल है, तो सोयाबीन बहुत सारे क्षेत्र में है, यूपी में तो कम है,
9: बुंदेलखंड में,
10: हाँ, तो इसमें भी इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
9: तो डॉक्टर साहब जहाँ पोटाश की कमी के लक्षण दिख रहे हैं या जहाँ बुआई चल रही है, रुपाई चल रही है, तो पोटाश का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
10: पोटाश के प्रबंधन के लिए जो यूरिया डीएपी डालते हैं बुआई के समय या रुपाई के समय, उसमें पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए
9: बेसल डोज में।
10: अगर बेसल डोज में नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे धान की रुपाई हो गई है, मक्के की बुआई हो गई है, मूंगफली की बुआई हो गई है, तो खड़ी फसल में जिस फसल में टॉप ड्रेसिंग करते हैं,
9: हाँ,
10: जैसे धान है, अनाज वाली और फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसी के साथ पोटाश, म्यूरेटा पोटाश है, नेचुरल पोटाश भी अब उससे बन रहा है सीरे से, शुगर इंडस्ट्री से, तो उसका प्रयोग कर दें टॉप ड्रेसिंग में।
9: कितनी मात्रा एकड़ पीछे डॉक्टर साहब?
10: अब एक एकड़ में मेरे ख्याल से कम 25 किलो तो डालें
9: जी।
10: लाल वाला पोटाश है,
9: हाँ, पूरे खेत में बिखेरना
10: और नेचुरल पोटाश को भी यूरिया के साथ डाल दें, उससे पोटाश की कमी दूर होने की संभावना पूरी रहती है। नहीं तो अगर इसके बाद भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट जो 0050 आता है,
9: एनपीके जल,
10: हाँ, ये जल विलेय उर्वरक है, बड़ा कारगर उर्वरक है, इसका प्रयोग करना चाहिए।
9: तो इसकी कितनी मात्रा कितने पानी में?
10: देखिए इसका 1% का घोल बनाया जाता है, इसका मतलब कि 1 लीटर में 10 ग्राम, और एक टंकी जो 15 लीटर की है उसमें 150 ग्राम इतना मिला करके घोल बना लें और छिड़काव कर दें।
9: तो ये तो खड़ी फसल में कभी भी जब लक्षण दिखे कमी के पोटास की तो
10: बिल्कुल
9: पानी छिड़काव।
10: हाँ बिल्कुल, ये बड़ा कारगर है और इससे पोटास की भी कमी दूर हो जाती है और जो दूसरा तत्व इसमें है गंधक की भी हो जाती है।
9: कोई क्रांतिक अवस्था जिस पर इसका प्रयोग ज्यादा फायदेमंद होगा डॉक्टर साहब?
10: देखिए जब फसल करीब करीब एक महीने की हो जाती है तो पोटास की कमी की वजह से इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और धान में जो क्रांतिक अवस्था है किले निकलने की बढ़ने की फसल के, उस समय तो इसका प्रयोग जब यूरिया का प्रयोग करते हैं इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
9: डॉक्टर साहब अगर फसल में पोटास की आपूर्ति समय से है तो क्या क्या फायदा होगा, फसल में क्या दिखेगा?
10: देखिए पोटास बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। एक तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और जो कीड़े बीमारी की समस्या आती है उससे फसल बच जाती है पोटास की वजह से,
9: प्रतिरोधक क्षमता।
10: हाँ इसके बाद जो सूखे और पाले की समस्या आती है, अब खरीफ में तो सूखे की समस्या आएगी या जल भराव की समस्या आएगी,
9: दोनों में।
10: हाँ दोनों में ये बड़ा कारगर होता है।
9: और जो क्वालिटी है
10: गुणवत्ता? हाँ देखिए अब इसके बाद उपज बढ़ेगी और जो उत्पाद की गुणवत्ता है उससे जो उत्पाद मिलेगा उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और पोटास को इसीलिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है कि माने अच्छी उपज भी और अच्छी गुणवत्ता भी।
9: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
10: 750-510-3059 7505-103059।
9: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब
10: देखिए ये दोनों पोषक तत्व जो हैं पोटास और गंधक, इनकी मिट्टी में भी कमी हो गई है और उस कमी की वजह से फसलों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कमी के। और ये दोनों पोषक तत्व ऐसे हैं कि बीमारी कीड़े से बचत होती है, गंधक जो है वो प्रोटीन को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा गंधक का है कि जो फंगस रोग और इस तरह की बीमारियां हो रही हैं उसमें गंधक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व तो माना जाता है,
9: यानी फफूंदी नाशक के रूप में भी।
10: फफूंदी नाशक के रूप में भी। तो हमारा तो किसान भाइयों बहनों से ये निवेदन है कि आप किसी भी तरह से खाली यूरिया और डीएपी पर आश्रित न रहें। इन पोषक तत्वों की जमीन में कमी हो गई है तो ये दोनों पोषक तत्व यूरिया डीएपी के साथ में डालें और उसका लाभ उठाएं।
9: प्रोफेसर के एन तिवारी साहब आज आप कार्यक्रम में आए और जो फसलों के आवश्यक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद तीसरा और चौथा पोषक तत्व है वो पोटेशियम यानी पोटास और गंधक है और इसका खरीफ फसलों में कैसे प्रबंधन करें किसान भाई बहन ताकि माटी और फसल की भूख मिट सके और फसल का पोषण अच्छा हो, उसकी अच्छी पैदावार मिले, अच्छा लाभ मिले। डॉक्टर साहब आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
7: रत्ना बहनी।
8: हाँ ओम भैया।
7: देखो जब इतनी नीक नीक जानकारी मिल जाती है और अगर गीत गौनाई सुनाई मिल जाए तो कितना आनंद आ जाता है।
8: बिल्कुल सही बात कहा तो कहे ना पंच भाई बहन इनका सबका जो है एक बढ़िया सी गौनाई सुनवा दिन जाए।
7: हाँ
8: जो विकास गीत है चंद्रभूषण तिवारी की आवाज में।
7: हाँ बिल्कुल आओ सुना जाए और पंचो सुने और आनंद ले।
8: बिल्कुल।

0: रत्ना बहनी,
1: हाँ भैया,
0: देखो अपने बीच मैया बहुत किसान पंच भाई होते हैं, जो उन अपन विशेषक भैया बतावत हैं वो अपनी खेती मैया नवाचार अपनाए किया, अपनी खेती मैया बढ़िया बढ़िया फसल उत्पादित करते हैं।
1: सही बात कहा। तो ओ वैसे जो है हमहू पंच सीखी थे कि भाई कैसे बढ़िया करते हैं ये पंच, तो हमहू पंच करी हुई का।
0: तो आज देखो अपन किसान भैया आ चुके हैं और उनकी बतकही सुना जाए।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहराइच जनपद के मिहपुरवा ब्लॉक के परवानी गौढ़ी गांव के शिवशंकर सिंह भैया स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय खरीफ में कौन कौन सी फसल आपके खेत में है।
3: किसान साथियों सबको नमस्कार, मैं काला नमक धान की खेती करता हूं। मैं इस साल 3 एकड़ काला नमक धान जो पारंपरिक है उसकी खेती किया हूं। मैं खेती प्राकृतिक विधि से गाय के मूत्र और गोबर से करता हूं, रासायनिक दवा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता हूं।
2: तो ये शुरुआत कब से हुई काला नमक धान उत्पादन की आपकी?
3: मैं किसान दिवस में बहराइच आया था, वहां एक हमारे फखरपुर विधानसभा क्षेत्र के जागरूक किसान जयंकर सिंह जी थे, उन्होंने मुझे बताया प्राकृतिक कृषि के विषय में। मैं गाय पहले से ही पालता था, उन्होंने मुझे बताया कि एक गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। मैंने इसको अतिशयोक्त मान करके उनके साथ जा करके सुभाष जी पालेकर जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं उनका प्रशिक्षण लिया, लखनऊ में प्रशिक्षण लिया, झांसी में प्रशिक्षण लिया और भरतपुर राजस्थान में जाकर के प्रशिक्षण लेकर के मैं प्राकृतिक बीज खेती 2015 से शुरू किया।
2: यानी लगभग 11 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते।
3: जी।
2: कुल खेती की जमीन कितनी है?
3: 6 एकड़।
2: 6 एकड़?
3: जी।
2: और 6 एकड़ में आप 3 एकड़ धान लगा रहे हैं?
3: मैं 3 एकड़ धान लगाया हूँ, 3 एकड़ खेत पलिहर रखा हूँ जिसमें कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए ढैंचा बो रखा हूँ।
2: अच्छा, बाद में पलटाई करेंगे?
3: हाँ, पलट करके उसमें सरसों की खेती लेंगे, सरसों के बाद उसमें मक्के की खेती लेंगे
2: गर्मी में।
3: जी।
2: तो ये आप सुगंधित धान में जो पारंपरिक काला नमक है उसको पैदा कर रहे हैं, ये कितने दिन से कर रहे हैं?
3: ये मैं 2015 से कर रहा हूँ,
2: यानी 11 साल उसको भी हो गए।
3: जी।
2: तो नर्सरी से लेकर के और रोपाई और फिर फसल की देखभाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं?
3: महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने प्राकृतिक खेती का है जिसमें गाय के मूत्र और गाय के गोबर गुड़ बेसन से जीवामृत बनाता हूं और खेती में डालता हूं, और उसके बाद मैं पोषण के लिए शक्ति के लिए उसमें गाय के गोबर का घन जीवामृत बनाता हूं और बना करके खेत में डालता हूं और धान की बैठवनी करता हूं।
2: यानी फसल की भूख मिटाने के लिए आप जीवामृत और घन जीवामृत दोनों का प्रयोग करते हैं?
3: जी, दोनों का प्रयोग करते
2: हैं। लेकिन नर्सरी में कुछ खास?
3: नर्सरी में कुछ नहीं, केवल खेत को जोत करके पानी डाल करके घास को मार देता हूं और उसके बाद उसमें वही जीवामृत डाल करके बीजामृत बनाता हूं बीज संशोधन के लिए, और बीज संशोधित के बाद मैं उसी में धान को अंकुरित करके बीज डालता हूं, नर्सरी तैयार करता हूं।
2: तब तक जिस खेत में

0: आपको काला नमक धान जो पारंपरिक वैरायटी है उसकी रोपाई करनी है, उसकी तैयारी भी करते होंगे।
1: जी, गेहूं कटने के बाद खेत को पलेवा करके जोत करके उसमें सनई या ढैंचा बो देता हूं और धान का बीज इतने अंतर पर डालता हूं कि कम से कम 50 दिन का ढैंचा हो जाए। उसके बाद पलट करके कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए पानी भर करके सड़ा देता हूं और नर्सरी तैयार हो जाता है। फिर लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच, पौध से पौध की दूरी 8 इंच करके श्री विधि से मैं काला नमक धान लगाता हूं।
0: तो आपकी काला नमक धान की रोपाई हो गई पूरी?
1: काला नमक धान की पूरी रोपाई हो गई।
0: तो जब आप ढैंचा या सनई की पलटाई करते होंगे तो खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता होगा।
1: जी,
0: इस समय आपका खेत कैसा है, फसल कैसी है?
1: फसल हमारी बहुत बढ़िया है। उसमें हम जीवामृत डाल करके तब धान बैठाते हैं और फिर दूसरी सिंचाई करके उसमें जीवामृत डालेंगे। 3 बार मैं धान में सिंचाई के, या बरसात होती है तो जीवामृत बना बना करके प्रति एकड़ 200 लीटर
0: अच्छा।
1: डालता हूं, और डाल करके 3 बार के बाद फिर जीवामृत बना करके हर 15 दिन पर अपने धान की फसल या गेहूं की फसल में उसका छिड़काव करता हूं।
0: तो उसका असर क्या दिखता है खेत में?
1: खेत में, हमारे खेत में केचुआ बहुत हैं, जमीन हमारी बहुत बढ़िया उपजाऊ है और हमारा पैदावार घटता नहीं। रासायनिक खेती से ज्यादा मुझे इसमें मुनाफा है, लाभ है, खर्चा मेरा कुछ नहीं है, जमीन मेरी ताकतवर है, शक्तिशाली है।
0: जो बिन बुलाए मेहमान खेत में उगते हैं, यानी खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करते हैं?
1: आच्छादन से,
0: अच्छा।
1: हम हमारे यहाँ एक आच्छादन विधि है। आच्छादन विधि का लाभ यह है कि घास नहीं जमेगी, ह्यूमस तैयार होगा, उसके नीचे छाये में केचुआ पैदा होगा।
0: तो रोपाई के कितने दिन बाद मल्चिंग यानी आच्छादन बिछाते हैं?
1: आच्छादन 3 तरह का होता है। एक आच्छादन होता है सजीव आच्छादन, जो फसल के साथ होता है। एक आच्छादन होता है काष्ठ आच्छादन। एक आच्छादन होता है गर्मी में जुताई करके, मल्चिंग करके। मैं इस वक्त जो करता हूं, जैसे ढैंचा, कुछ ढैंचा तो मैं खेत में बो देता हूं और बोने के बाद काट करके उसको सुखवा लेता हूं। वो जो धान की रोपाई लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच होती है, उस बीच में मैं अपने उस ढैंचे को बिछा देता हूं ताकि उसके छाये में घास जमने न पावे।
0: तो ढैंचे का डंठल
1: हाँ, डंठल
0: सुखा के रखते हैं?
1: सुखा के रखते हैं और उसी को उसमें बिछा देता हूं ताकि हमारी काष्ठ आच्छादन हो जाए, जिसमें ह्यूमस बने, केचुआ तैयार हो और हमारे खेत में घास न जमने।
0: चूंकि आप पिछले 11 वर्षों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और काला नमक धान पैदा भी कर रहे हैं, तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं एकड़ में, और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: किसान साथियों, एक एकड़ में मेरा ज्यादा से ज्यादा खर्च 1 ट्राली गोबर, 200 लीटर जीवामृत, ये लगता है कुल मिलाकर के मेरा लागत मूल्य 5,000 से 6,000 रुपया प्रति एकड़ आता है। और मेरा धान यदि 10 क्विंटल एकड़ का हुआ या 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ तो हमारा लाख रुपया एकड़ का धान पैदा हो गया। तो हमें एक एकड़ में लाख रुपया उत्पादन हुआ और खर्चा हुआ 5,000 से 7,000 रुपया, तो मुझे मुनाफा तिगुना होता है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर 89 48 89 97 51, 89 48 89 97 51, 89 48 89 97 51।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
1: किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम किसानों का खुशहाल जीवन तभी होगा जब हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारी आने वाली संतानें सुदृढ़ होंगी, सुरक्षित होंगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप गौ पालन करिए और प्राकृतिक खेती ही करिए।
0: शिव शंकर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए, लगभग 11 साल पहले से आप 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस समय काला नमक धान 3 एकड़ आपके खेत में खड़ा है, जिसको आप प्राकृतिक खेती के तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ रत्ना भैया।
3: देखो हम पंच खेती जो करी थे वह जो है अपने मौसम के आधार पर करी थे और मौसम की अगर नीक नीक जानकारी रहते है तो वही के हिसाब से जो अपन खेती होते है वह बहुत नीचे से हो जाते है। तो काहे न पंच भाई बहन इनका मौसम की जानकारी दिवा दी जाए।
4: तो रत्ना बहनी जो मौसम के हाल प्राप्त हुआ है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे अगले 7 दिनन का जो वर्षा का पूर्वानुमान है 11 अगस्त 12 13 14 15 16 अगस्त तक का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले बताया दी संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है। वही के साथ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में कहूं कहूं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है। वही के अलावा जो 15 अगस्त का है पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में लगभग सभी स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है।
3: और देखो भैया जो मौसम संबंधी चेतावनी है वो जरूर जान लें कि 11 अगस्त यानी कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ जो है संभाग में कहूं कहूं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है तो बहुत सावधानी से रहें। और 14 अगस्त से लगाए के 17 अगस्त तक में कहूं कहूं संभाग पर बर्खा होने की संभावना है। साथ में यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 11 और कल 12 में कोई चेतावनी नहीं है लेकिन वही के बाद कहूं कहूं बर्खा होने की संभावना है तो वही हिसाब से काम करें।
4: तो रत्ना बहनी यू तो रहा मौसम का हाल। जब मौसम का हाल हम पंचन का पता चल जाते हैं तो हम पंचे अपने खेती पाती का काम वही अनुसार निपटाए लेते हैं जैसे हम पंचन का कोनो नुकसान न हो फसल में या अपनी और वही के साथ साथ जो अपन छप्पर छानी है वह हम पंचे ठीक ठाक कर लेते हैं। न तो कबो कबो कहा होते हैं कि जब सही तरह हम पंचे तैयारी नहीं कर पाए थे अचानक मान लो वर्षा लाग जानकारी नहीं है तो बड़ी समस्या हो जाते है।
3: ओम भैया अपने पंच भाई बहनी जो उनका कुछ नीक लागत है या कुछ कहा चाहते हैं तो उनके खातिर जो है हम पंचन का अपनी चिट्ठी पत्री के माध्यम से बता सकते हैं तो उसके खातिर आप पता बता दो।
4: बिल्कुल रत्ना बहनी देखो पता है अपने कार्यक्रम का कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी लखनऊ जो पिन कोड है 226001
3: और साथ में यहाँ ईमेल आईडी बता दो।
4: हाँ ईमेल आईडी जरूर नोट कर ले काहे तरह दन दे भेजे सन दे अपने तीर पहुँचे ईमेल तो ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। रत्ना बहनी।
3: हाँ ओम भैया।
4: देखो घड़ी कर रही अब इशारा और चले खो रही बिरिया और पंचम तेरे लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।

0: पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान, प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू, 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात, कहा बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व के साथ मनाने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने और विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा।
0: प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया मदरसों में तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
2: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत इस अभियान को जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
0: उधर इटावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया। वाराणसी में भी इस अभियान के तहत चिड़ई गांव विकास खंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा से पहले खंड विकास अधिकारी रिया सैनी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उधर जौनपुर के परिषदीय विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रंगोली, पोस्टर मेकिंग, कविता लेखन जैसी रचनात्मक और देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू हो गया है। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में आज 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए कल बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में कल हुई सुनवाई के बाद आरोपितों को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने न्यायालय में आरोपियों पर से भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं को हटाने की भी अर्जी दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो भी हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

0: हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीरनगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीरनगर के विकास का आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संत कबीरनगर में भी विकास प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जिले के विकास को गति मिलेगी।
1: आज जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है, लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर मंदिर तक टू लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर का हर मार्ग फोर लेन से जुड़ रहा है। यहां लगातार हो रहे विकास कार्यों से गोरखपुर की नई पहचान बनी है।
2: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग चार लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बन करके तैयार हो भी गए हैं। ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कल ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन। इससे पहले आज ऊर्जा मंत्री ने इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य न केवल बायो एनर्जी में भारत का नेतृत्व करना है, बल्कि प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। भोर में मंगला आरती के बाद से ही बाबा विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में बड़ी तादाद में प्रयागराज से आए कांवड़िये शामिल हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर समेत अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु जलाभिषेक कर मंगल कामना कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झाड़खंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आंख, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

अभी आप सुन रहे थे समीर के लिखे गीत को संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में गाया था उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम था मन।

0: अभी आप सुन रहे थे अनवर सागर के लिखे गीत को, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में गाया था आशा भोसले और उदित नारायण और अभिजीत ने। फिल्म का नाम था खिलाड़ी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और शैलहदा को फिल्म गुजारिश में। गीत को लिखा था तुराज ने और संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने।

अभी आप सुन रहे थे रानी मलिक के लिखे गीत को। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम था छोटे सरकार। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सब्र सब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉ बीआर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दी राजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के IS इन्वादुरै, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, S सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक
2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले तीन सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 107.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को फिल्म मैंने प्यार किया में। गीत को लिखा था साध भोपाली ने और संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने।

कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना कुमार सानू और आशा भोसले को फिल्म बलमा में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: ए हरिहन के गाए इसी गीत के साथ गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, हमारे दिल्ली केंद्र से कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
3: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
2: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
4: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
2: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
6: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
7: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
2: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जे

0: एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रूपये की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग ट्रिपल बी माइनस पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए एआई को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एआई ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आवारा में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था शंकर जय किशन ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाया था शमशाद बेगम ने। फिल्म का नाम था सीआईडी।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म दिल्ली का ठग में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था रवि ने।

कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना बाजार फिल्म का ये गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ।

0: इस रेशमिया ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद इरफान को फिल्म एक्सपोज में। गीत को लिखा था समीर अनजान ने, संगीत दिया था

अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश और शब्बीर कुमार और अलका याग्निक को फिल्म तेजाब में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे इंतहा फिल्म का गीत। गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत दिया था अनूप मलिक ने। आवाजें थीं शान और श्रेया घोषाल की।

0: कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन को फिल्म गुलामे मुस्तफ़ा में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद में आज प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
3: नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी।
4: प्रश्न संख्या 241, क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
5: First Supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji.
6: Sir! Sir! Sir!
5: Sir! Then First Supplementary, G.C. Chandrasekhar ji.
6: Mike!
5: You take your seat, I am calling him.
6: Sir, Mike!
5: You take your seat, I am calling him.
6: Mike!
5: First Supplementary, Shriman G.C. Chandrasekhar ji.
6: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
5: Sir, you
6: please be specific.
5: I am allowing you. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji.
7: आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ मंत्री से कि ऑफ शोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है।
4: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
8: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफ शोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीयूएफ उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी प्रदान करता है। तीसरा है, सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है, तो स्केयर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे ऑफ इससे जुड़ी कई कंस्ट्रेंसेस सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट, वेजल, फैब्रिकेशन, मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
9: द थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुधा मोदी जी।
10: सर, ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस
11: रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रल प्रोजेक्ट आदरणीय मंजूर प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड इज देयर एनी लॉसेस इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड साइक्लोन एंड हरिकेन एंड फ्लड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू दैट थैंक यू सर
12: Honorable Minister,
13: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है और ये जो प्रश्न है ऑफशोर विंड का है और इसलिए इसके संबंधित से नहीं है
1: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का खेल दर्पण आकाशवाणी के ओबरा केंद्र की प्रस्तुति है।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस अंक में प्रस्तुति आकाशवाणी ओबरा की। श्रोताओं, खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन की पहचान भी है। किसी भी खिलाड़ी की सफलता की शुरुआत बड़े मंच से नहीं बल्कि छोटे छोटे अवसरों से होती है। जिला और मंडल स्तर पर आयोजित चयन प्रतियोगिताएं ऐसे ही अवसर प्रदान करती हैं जहां स्थानीय प्रतिभाएं अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर प्रदेश स्तर पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं जनपद सोनभद्र में हाल ही में आयोजित विभिन्न खेलों की चयन प्रतियोगिताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में। श्रोताओं, जिला खेल कार्यालय सोनभद्र द्वारा खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और संबंधित खेल संघों के निर्देशानुसार प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जिला एवं मंडल स्तर पर चयन और ट्रायल का आयोजन किया गया। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर महिला बास्केटबॉल की। इस प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन 21 जुलाई को तियरा स्टेडियम रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में आयोजित किया गया। इसके उपरांत 22 जुलाई को मिर्जापुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय चयन संपन्न हुआ। इस चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ी ने 27 से 19 जुलाई तक अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद और मंडल का प्रतिनिधित्व किया। इसी क्रम में सीनियर महिला हैंडबॉल खिलाड़ियों का जिला स्तरीय चयन 22 जुलाई को तियरा स्टेडियम रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में संपन्न हुआ और इसी दिन मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल आयोजित किया गया। चयनित खिलाड़ियों ने 27 से 29 जुलाई तक अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। और अब बात करते हैं जूनियर बालक फुटबॉल की। इस वर्ग का जिला स्तरीय चयन 21 जुलाई को आयोजित किया गया और 23 जुलाई को मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल संपन्न हुआ। इस चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ियों ने 1 से 8 अगस्त तक मऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद सोनभद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और वहीं जूनियर बालिका फुटबॉल के लिए भी जिला खेल कार्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। 7 अगस्त को तीरा स्टेडियम रॉबर्ट्सगंज में जिला स्तरीय चयन और उसी दिन मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल संपन्न हुआ। इन चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ी 10 से 17 अगस्त तक अमेठी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में जनपद सोनभद्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन भी करेंगे। तो श्रोताओं, निश्चित रूप से जिला खेल कार्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित ऐसी चयन प्रतियोगिताएं जनपद के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और प्रदेश स्तर पर पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही हैं। और हमें ये विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल जनपद सोनभद्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित करेंगे। और अब खेल दर्पण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय कुमार श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सोनभद्र के संयुक्त सचिव, साथ ही सोनभद्र योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव के रूप में खेलों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर, आप सभी को मेरा नमस्कार।
2: जी सर। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपका जुड़ाव खेल से कब और कैसे शुरू हुआ, क्या दिशा रही, क्या संकल्प रहे, क्या प्रेरणा रही इस बात के लिए आपकी?
3: पहले मैं कंपनी में काम करता था तो मैं देखता था कि बच्चे खेल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता था। तो फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम मैंने 2014 में मैंने देखा कि उसमें काफी बच्चों ने गोल्ड मेडल लाया, जिसमें भारत का नाम बहुत आगे था। उसमें गोल्ड मेडल में भी काफी बच्चे थे, सिल्वर मेडल में भी थे और हमारे ब्रॉन्ज में भी थे। काफी इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा गेम किया, उनको देख करके मुझे भी लगा कि मुझे भी खेल में जाना चाहिए। उससे ऑब्वियसली क्या है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, एनर्जेटिक रहती है, तो दिन भर बॉडी में एनर्जी रहती है। तो मैंने फिर खेलना फिर शुरू किया। मैं पहले क्रिकेट में मैं रेलवे स्टेडियम की तरफ से पहले मैं खेलता था क्रिकेट, फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी चाहिए, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके और गेमों में मैंने जोड़ना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि अगर इतना एनर्जी महसूस कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो अभी नई युवा पीढ़ी है, तो
2: जी
3: उनको आगे बढ़ाने में भी हमें अपना योगदान देना चाहिए।
2: बिल्कुल सर,
3: अपने साथ साथ फिर मैंने बच्चों को भी खेलने के लिए आगे प्रेरित करना शुरू किया। शुरुआत में फिर मैंने योगा में मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मैंने फिर बीपीएड किया। फिर मुझे सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश की, जिसमें मुझे योगासन खेल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहा गया कि आप बच्चों को जोड़िए, बच्चों को समझाइए। तो उस तरीके से फिर मैंने योग के प्रति जागरूक करने के लिए फिर मैंने स्कूलों में, संस्थाओं में जा जा करके फिर मैंने स्कूलों के प्रिंसिपल से बात करके फिर मैंने बच्चों से फिर बात की। तो उस तरीके से फिर धीरे धीरे करके इसी तरीके से खेल की शुरुआत हुई।
2: यानी कि एक क्रम बनता चला गया, आपने
3: जी
2: देखा समझा और अंदर लगा कि नहीं जो मेरे अंदर है और इस चीज का संकल्प लेकर हम आगे बढ़े तो दिशा
3: जी
2: स्टेप बाय स्टेप मिलती ही चली जाती है।
3: जी जी बस
2: बिल्कुल
3: मेन क्या होता है कि अगर आप किसी भी काम में अगर लगे, तो अगर उसमें एक बार आपको लाइन मिल जाए, तो आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे।
2: बिल्कुल। अच्छा, इतने बड़े पद पर हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे बैलेंस करते हैं सारी चीजों को आप?
3: सर बैलेंस कर, खेल एक ऐसा बॉडी में एनर्जी फील करता है ना कि उसमें लगता है कि अब किसी काम में अगर लगो तो ऑफिसली करते चलो,
2: बिल्कुल
3: तो बहुत अच्छा फील होता है खेल के साथ जुड़ने में। और मुझे लगता है कि ऑफिसली सभी बच्चों को खेल से जोड़ना चाहिए, जिससे उनका अच्छा विकास हो सके।
2: जी, और जब नियंत्रण की ही सर हम बात कर रहे हैं, तो आप योगासन और एथलेटिक्स दोनों ही क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, तो क्या सामंजस्य दोनों में आप देखते हैं?
3: सर खेल और जैसे योगा है और एथलेटिक्स है, योगा क्या होता है कि वो बॉडी में लचीलापन आ जाता है, बॉडी में मजबूत आ जाती है। अब जैसे योगासन की भूमिका में अगर हम देखें, तो उसमें मानसिक शांति जरूरी होती है। योग में क्या होता है, मन को शांत करने के लिए होता है, दिखाया जाता है, तनाव को दूर भगाता है वो। अब एकाग्रता भी जरूरी होती है, अगर हम ध्यान को लगाएंगे तभी तो शक्ति को बढ़ाता है वो।
2: बिल्कुल,
3: उसमें आपका पढ़ाई और काम दोनों चीजें होती है, तो उसमें सुधार होता है काफी।
2: बिल्कुल।
3: और उसके बाद आंतरिक स्वास्थ्य भी जरूरी होता है। योग जो होता है वो हमारे अंदर जो अंग होते हैं उनको स्वस्थ रखते हैं। योग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है वो, या जीवन में संयम और नियमितता को लाना सिखाता है। एथलेटिक की भूमिका में क्या होता है कि बच्चे उस शारीरिक फिट रहते हैं, जैसे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, तो उसमें शरीर में शक्ति होती है, गति और सहनशीलता को बढ़ाता है एथलेटिक्स। उसके बाद इसका एक दूसरी भी पहलू है कि टीम भावना। एथलेटिक जो होता है वो समूह में रहना सिखाता है, क्योंकि जब एक टीम बनती है तो ऑब्वियसली उसमें एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करना जरूरी होता है। क्योंकि क्या, अगर हम टीम भावना से नहीं खेलेंगे तो टीम आपकी कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं।
2: बिल्कुल।
3: तो ये चीजें जरूरी होती है एथलेटिक्स में। फिर संघर्ष क्षमता होती है कि वो हार जीत को दोनों तरह समान भाव से वो देखें। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार हार गए तो आपने खेलना छोड़ दिया। अब आज की डेट में हारने की डिफिनेशन ये होती कि आप हारने से सीखोगे। ऐसा नहीं होता कि आप हार गए तो आप दोबारा नहीं खेलोगे। आप उसमें सीखो कि आपने क्या गलतियां की, ताकि हम जिससे हम आगे जाकर के हम उस गलतियों को अपनी हटा सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को हम पा सकें।
2: बिल्कुल सही बात कि अगर कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा ही होगा, और अनुभव ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अच्छा सर, एक लंबा समय आपको खेल प्रशासन से जुड़े हुए हो गया, तो आपके अनुभव में किसी भी जनपद में, या अपने जनपद सोनभद्र की ही हम बात करें, तो खेल संस्कृति को विकसित करने में प्रशासन, विद्यालय और समाज, इन तीनों की भूमिका किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या कहते हैं इस बारे में आप?
3: मैं जब से खेल में जुड़ा हूँ, आज मेरे पास उत्तर प्रदेश के 47 जिले ऐसे हैं जिनमें बच्चे, उनमें योग और एथलेटिक्स दोनों खेल में बच्चे भाग ले रहे हैं। आज मैं अभी इस समय 437 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं खुद ट्रेंड कर रहा हूँ। जो बच्चे हर खेल में आगे निकल रहे हैं, खो खो में हो गया, योगा में हो गया, रेस में हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, बैक थ्रो हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो काफी खेलों में बच्चे अब इस समय आगे निकल रहे हैं। खिलाड़ियों में अब जैसे कहे कि सोनभद्र हमारा पिछड़ा है, यहाँ पे आदिवासी लोग ज्यादा हैं, ग्रामीण अंचल में क्या है संभावनाओं का बहुत अभाव है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है कि खेल में संस्थाओं, विद्यालयों और समाज को बेहतर समन्वय की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। जब तक ये तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो इसमें युवाओं को सही मंच और सहायता नहीं मिल सकती। इसमें इनके संसाधनों को दूर करने के लिए इसमें विद्यालयों और खेल संस्थाओं को मिलकर बुनियादी ढांचा को इसमें तैयार करना होगा, जिससे कि ग्रामीण के बच्चे भी आगे आकर के अपनी अपनी प्रतिभा को आगे पहचान दें अपनी। उसमें आर्थिक सहयोग भी बहुत जरूरी है, समाज और स्थानीय खेलों को मिलकर खिलाड़ियों को उसको स्पॉन्सर करें, जिससे बच्चे हमारे आगे जाकर के खेलें। सोनभद्र क्या है, हमारा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे खेल को लेकर के अब जो अब मतलब जैसे कहें कि जो सोच है वो थोड़ी कम है यहाँ पे। मेन यहाँ पे क्या होता है कि खेलों को ये लगता है कि अरे खेलेंगे कूदेंगे तो यार हम पढ़ाई कब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में जितना पढ़ाई आपके लिए जरूरी है उतना आपके लिए खेल भी जरूरी है। आपका पढ़ाई से भी विकास होता है, आपका खेल से भी विकास होता है। खेलना भी इसलिए जरूरी है कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप खेलोगे कैसे, और बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए आपको खेलना भी जरूरी है और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें विद्यालयों का भी योगदान बहुत जरूरी है, विद्यालय अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें, उनको भेजें कि बच्चों को खेलो तुम लोग, ताकि उसमें तुम लोग आगे निकलो। इस तरह की संभावना यहाँ पे बहुत कम है, तो इसमें प्रशासन को मिलकर के स्कूलों के साथ मिलकर के ऐसा आगे मतलब कोशिश करें कि जिससे हमारे बच्चे खेल में भी आगे निकले।
4: अच्छा सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग भी माना गया है, तो आपके हिसाब से इस सोच को व्यावहारिक रूप देने के लिए स्थानीय स्तर पर किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है?
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे जो खेलों को अभिन्न शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है, अब सोच को लेकर के जितने भी स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक रूप में देने के लिए जमीनी स्तर से इनको खेल के लिए बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। खेल के विद्वानों का अच्छा विकास हो, स्थानीय कोचों की नियुक्ति हो, स्कूल और पंचायतों के बीच सहयोग हो, और सामुदायिक खेल आयोजनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक बच्चों में आगे खेल की भावना जागरूक नहीं होगी उसमें। बुनियादी ढांचे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे हर पंचायत हो गया, वार्ड हो गया, वहाँ पे खेल का मैदान बने जिससे बच्चे उसमें खेलें जा करके। उसके बाद स्कूलों की बुनियाद में भी खेली उपकरण की बहुत ज्यादा सुरक्षित भी रहना चाहिए। और अब जैसे क्या होता है कुछ बच्चों को चोट लग जाती है, अब उनको लगता है अब हम आगे नहीं खेल पाएंगे, तो इस तरीके से उनको ऐसी चीजें बताई जाए या उपलब्ध उनको कराई जाए जिससे बच्चों को अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो वो आगे जाकर के खेल के लिए ऐसा ना हो कि उनका अंदर से
4: मन टूट जाए,
3: मजबूत हो जाए, जिससे वो अंदर वो आगे देश का नाम रोशन कर सके।
4: बिल्कुल सर। और जैसे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि हमारा जनपद सोनभद्र जो है काफी पिछड़ा हुआ है, अभी भी यहाँ से बहुत सी कमियां हैं, बहुत ही संसाधनों की कहीं ना कहीं बाधक बनती है एक अच्छे खिलाड़ी के प्रदर्शन में, जबकि हमारा सोनभद्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ की जो खेल प्रतिभाएं हैं अगर उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना है या पहुंच सकता है वो खिलाड़ी, तो सबसे बड़ी बाधा आपको क्या लगती है इस बारे में?
3: मेन देखिए सबसे क्या होता, सबसे जरूरी चीज होता है पहले जो भी बच्चा होता है वो पहले घर से शुरुआत करता है। जैसे युवा खिलाड़ी जितने भी होते हैं, अब उसमें क्या होता है जब तक उनके माता पिता उनको प्रेरित नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा आगे कैसे निकलेगा। तो उसमें खिलाड़ियों के लिए भी सबसे पहले माँ बाप उनके होते हैं जो उनको खेल के लिए प्रेरित करें कि बेटा तुम खेलो भी, पढ़ाई भी करो, खेलो कूदो भी। पहले होता था ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो ऐसा ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, एक तो बच्चों को उनको प्रेरित करें कि रोज वो डेली अभ्यास करें खेलों के लिए। अगर आप हार भी जाते तो ये मत सीखो कि अरे हम हार गए तो हम दोबारा नहीं खेल पाएंगे, आप उससे और अच्छा करने की कोशिश करो, अनुशासन में रहो, समय पर आए और अपने कोच की बात सुने, जो भी आपको कोच बता रहा है उसको सीखो किस तरीके से नियम होते हैं, उसके बाद हमेशा ईमानदारी से खेलने के लिए सीखो।
4: अच्छा सर, इतने साल का आपका अनुभव है और आप खेल के साथ जुड़े हैं, खिलाड़ियों के साथ जुड़े हैं और अभी आप सोनभद्र में हैं, तो यहाँ की जो स्थिति परिस्थितियों को समझते हुए अगर आपको खेल के विकास के प्रति एक दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करनी हो तो उसमें आपकी क्या प्राथमिकता होगी?
3: देखिए आज भी खेल का बहुत अभाव है, प्रतिभाएं आगे बढ़ी नहीं पा रही क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। बच्चों को स्थानीय खेल संस्थाओं, विद्यालयों में, समाज में आज भी क्या है कि समन्वय अच्छे से स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिससे ये आ ही नहीं पा रहे हैं। जब तक ये तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक युवाओं में सही मंच और सहायता उनको नहीं मिल सकती। अच्छा समन्वय स्थापित करने से पहला काम कि उनको संसाधनों की कमी को दूर करना पड़ेगा, जिसमें विद्यालय और खेल संस्थाएं मिलकर खेल का सामान और बुनियादी ढांचों को तैयार करें, जिससे बच्चे खेल में आगे निकलें। फिर अच्छे प्रतिभा की खोज करें, सही समय पर मार्गदर्शन करें बच्चों को, बच्चों का ट्रायल समय समय पर करवाएं, ताकि बच्चे उससे ट्रायल में छट करके वो आगे जाएं। आर्थिक सहायता भी बच्चों को बहुत जरूरी है, जैसे बच्चों को कहीं जाना है खेलने के लिए, अब गरीब बच्चे हैं तो उनको कहीं से कोई सहायता मिल नहीं पाती, वो बच्चे अपने प्रतिभा को वो दिखाई नहीं पाते, तो उस कारण से बच्चे आगे जा ही नहीं पाते हैं। अब उनका खर्च उठाने के लिए भी उनको चाहिए ना, जब तक उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा या प्रशासन उनका साथ नहीं देगा तो कैसे बच्चे आगे जाएंगे।
4: बिल्कुल, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें विचार करना होगा और यही प्राथमिकता होगी।
3: खिलाड़ियों को निखारने के लिए जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो खिलाड़ी कैसे आगे निकलेगा।
4: बिल्कुल, और अब सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनपद में जो भी हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनकी आगामी क्या तैयारियां हैं, कहां कहां उनका प्रदर्शन है और क्या इस बारे में तैयारी हो रही है, सर इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर
3: अभी हमारे सोनभद्र में क्लस्टर चल रहा है जिसमें हर तरह के गेम उसमें रखे गए हैं, जिनमें खो खो है, योगा है, चेस है, वेट लिफ्टिंग है, ताइकांडो है, डिस्कस थ्रो है, शॉटपुट है, तो इन खेलों को लेकर के अभी क्लस्टर शुरू हुआ है। तो अभी सारे बच्चे इस समय खेल में, कोई यहाँ पे है सोनभद्र में है, कोई बाहर जा रहा है खेलने के लिए, तो उस तरीके से अभी सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं 1 तारीख से। तो अभी सब गेम इस तरीके से चलाया जा रहा है, जैसे अभी आगे आने वालों में अभी योगा का गेम होने जा रहा है, योगा के बाद ताइकांडो है,

0: जिसमें 21 को ट्रायल करवाया, ट्रायल के बाद मंडल, मंडल के बाद फिर हम प्रदेश स्तर पे बच्चों को भेजते हैं। इसी प्रकार हमने बालक में भी फुटबॉल के जूनियर बालक को भी हमने तैयार किया है, जिसमें हमने यहाँ पे ट्रायल करवाया, जिसमें बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं। अभी हमारा कल से एक ट्रायल शुरू हो रहा है जूनियर बालिका के लिए। बालिका में भी हमने मंडल स्तर पे पहले रखा है, पहले ट्रायल होगा जिला स्तर पे, फिर वो जिला स्तर से वो मंडल स्तर पे ट्रायल लेने जाएंगे, तब उनका प्रदेश स्तरीय में उनका सिलेक्शन होगा जो कि 10 से 17 अगस्त में होना है।
1: बच्चों के अंदर कैसा जज्बा दिख रहा है, किस तरीके की उनसे उम्मीद आप लोग कर रहे हैं?
0: बच्चे बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या होता है कि बच्चे जब एक दूसरे को देखते हैं कि अरे उसको आज गोल्ड मेडल मिला, उसको आज सिल्वर मेडल मिला, तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी मिलेगा। तो इस समय बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, क्लस्टर में भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बच्चे हमारे आगे में बहुत अच्छे निकलेंगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम चाहेंगे भी सर कि जनपद के जो बच्चे हैं आगे आए और देश का नाम रोशन करें। चूंकि आपने ये बात कही कि जनपद सोनभद्र काफी पिछड़ा है, बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को उपलब्ध नहीं है, बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका बच्चे सामना करते हैं, और ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अगर बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर जज्बा है और आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ जो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये भी हमारे लिए, हमारे जनपद के लिए खेल प्रेमी के तौर पर बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: ये तो देखिए, जब तक हम बच्चों के साथ लगेंगे नहीं तो बच्चे आगे कैसे निकलेंगे। बच्चों को मार्गदर्शन बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अब अंत में सर, आकाशवाणी के माध्यम से आप सोनभद्र के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जिस वक्त आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको और उनके अभिभावकों और जो हमारे खेल प्रेमी हैं जो इस कार्यक्रम से अभी आपसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप?
0: मैं अपने युवा खिलाड़ी और अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बच्चों के देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस खेल में भाग ले रहे हैं, वो किस चीज में वो रुचि कर रहे हैं, जिससे कि उनको आगे बढ़ने में उनको उनको अच्छा लगे।
1: बिल्कुल।
0: आप उनका हौसला बढ़ाइए, खेल में संतुलन रखिए, ऑब्वियसली दोनों चीजें ही जरूरी है क्योंकि आज की डेट में दोनों ही बराबर हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: कभी भी बच्चे पे दबाव मत डालें कि नहीं तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, खेलते नहीं हो, खेलते नहीं हो, ऐसा नहीं है। बच्चों को आराम से उनसे बातें करें, उनको चीजों को समझें। जब तक आप बच्चों को जानेंगे नहीं उनको क्या चाहिए या वो किस चीज में आगे जाना चाहते हैं, तब तक बच्चे आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की पहली सीढ़ी उनके माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि माँ बाप जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे ही आगे जाएंगे। वो
1: बहुत अच्छा संदेश रहा सर आपका कि बच्चों के साथ लगे रहिए, क्योंकि ये वही उम्र है जब उनका हाथ थामने की आवश्यकता होती है, और निश्चित एक हार कभी न कभी एक जीत में जरूर परिवर्तित होगी, ये बात समझने और समझाने की आवश्यकता है। बातचीत के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको मिलवा रहे हैं जनपद सोनभद्र के अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी श्री रवि सिंह से, जिन्होंने थाईलैंड, नेपाल और हाल ही में रोमानिया में आयोजित विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक पद अर्जित कर जनपद और देश का नाम रोशन किया है। रवि जी, कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले आकाशवाणी ओबरा के सभी श्रद्धालुओं को मेरा सर नमस्ते, जय हिंद। मैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट के बॉयलर को जनरेशन विभाग में कार्यरत हूँ, और पिछले कई वर्षों से मैं ताइक्वांडो के माध्यम से भारत का नाम रोशन कर रहा हूँ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम 2016 में स्टेट खेला था, तभी मैंने यह फैसला कर लिया था कि कठिनाइयां कितनी भी आए पर लक्ष्य मेरा एक ही रहेगा, कभी ना कभी विश्व स्तर पर मैं भारत का नाम रोशन करूंगा और तिरंगे को लहराऊंगा।
1: बिल्कुल। और ईश्वर ने आपको वो मौका भी दिया, और कहते भी ना कि जहाँ सच्ची लगन हो वो चीजें, वो मुरादें जरूर पूरी होती हैं, और जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी मेहनत भी शामिल है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो गुरुजन हैं, जो कोच हैं, उनका भी आशीर्वाद है। तो बताइए, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ताइक्वांडो से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
2: स्कूल टाइम में जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ने के लिए गया था, तो स्कूल में हमारे पीटी टीचर ने बोला कि आज सभी बच्चों जाओ, आज मार्शल आर्ट सीखना है। तो हम लोग पीटी टीचर भेजते हैं पीटी करने के लिए, तो हम लोग गए कि बोले कि आज चलो, आज सीखेंगे मार्शल आर्ट, उड़ उड़ के मारना सीखेंगे। तो बस एक उसी लक्ष्य से हमने गए कि मार्शल आर्ट में उड़ उड़ के मारना सीखने जाएंगे। पहले दिन गए तो सर ने केवल एक वार्म अप करना सिखाया, दूसरे दिन गए तो वार्म अप करना सिखाया, मतलब ऐसे ही करते करते उसमें कब वो रुचि बन गई, कब एक अनुशासन में बंध गए और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला।
1: और जैसा कि आपने बताया कि हिंडाल्को में आप बॉयलर कॉर्पोरेशन में एक ऑपरेटर के पद पर आप कार्यरत हैं, और दूसरी तरफ देश के प्रति इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपने खेल को लेकर के साथ चलना, तो इन दोनों का बैलेंस आपने कैसे?

0: मेंटेन किया।
1: सर चुनौतियां तो बहुत बड़ी है, कहते हैं कि दो नाव पे चलेंगे तो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, मेरे सामने भी ऐसी ही सिचुएशन है, बार बार आती है, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए 8 घंटे आप जॉब को भी देना है, फैमिली को भी साथ में देना और अपने खेल को भी रुचि रखना है। पर मैं कहता हूं कि दो नाव पे चलना ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, आप अगर आपके अंदर एक लक्ष्य हो तो आप कुछ भी संभव कर सकते हैं। तो मैं जिसके प्रति मैं 8 घंटे जॉब करने के बाद जब भी मुझे समय मिलता था, जैसे मेरी ए शिफ्ट ड्यूटी रहती थी तो मैं रात में प्रैक्टिस करता था, और जब मेरी नाइट ड्यूटी रहती थी तो मैं दोपहर में प्रैक्टिस करता था, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था तो वहां का मौसम बारहों मास ठंडी रहता है, उस ठंडी को माहौल को ढालने के लिए मैं रात में 1 बजे 2 बजे जग के रनिंग करता था कि अब मेरी इंटरेस्ट उस माहौल में ढल सकूं मैं। तो घर में मम्मी भी बोलती थी कि मेरा बेटा पागल हो गया है क्या कि रात में जग के ये 1:30-2 बजे जॉगिंग कर रहा जा रहा है। तो वो सब चीजें को मतलब मेरे लिए वो ताकत रही और जो आज मैं इतने देश का नाम रोशन कर पा रहा हूं यही मेरे लिए बहुत बड़ी
0: बहुत खुशी की बात। यही होता है ना कि जीत के पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है, अगर हम उस कड़ी मेहनत को देखें, उस जज्बे को समझें, तभी हम कुछ करने का हौसला अपने अंदर रख पाते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो युवा खिलाड़ी इस वक्त आपको कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे होंगे तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जीत इतनी आसान नहीं होती, नींद हारनी पड़ती है, समय हारना पड़ता है, तब जाकर के गोल्ड सिल्वर ये सारे मेडल्स हम देश के लिए ला पाते हैं।
1: पिछले कई वर्षों से लगातार मेरी मेहनत थी, आज वो मेहनत मेरे हकीकत में बदल चुके हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा, अभी मैं कुछ अपने रिसेंट का अगर मैं बताऊं तो मेरी नेपाल देश में मेरा गोल्ड मेडल था, रोमानिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल था, और अभी हाल ही में थाईलैंड में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये सब मेरी अपॉर्चुनिटी रही, मेरी अचीवमेंट रहे, और इतनी आसान नहीं थी, इसके लिए मैंने कड़ी मेरी कई वर्षों की मेहनत थी और माता पिता का आशीर्वाद था, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये चीज संभव नहीं था।
0: बिल्कुल सही बात, और वो आप पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हमारी जो क्षमता होती है प्रदर्शन की वो और भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की जर्सी पहनकर उतरने का जो ये अनुभव था कैसा रहा, उसके बारे में बताइए, वो जो फीलिंग थी वो हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सर भारत का जर्सी पहनकर खिलाड़ियों का एक पहना एक सपना होता है, बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, और जब तिरंगे का सीने पर जब हमारे होता है तो हमारी जज्बा होती है वो बहुत ही एक ही उम्मीद रहती है कि आप हमको भारत के लिए सर्वेष्ठ अपना प्रदर्शन करना है, और देश के प्रति वो अनुभव में वो शब्द बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सर एक खिलाड़ी का ना एक हर सपना होता है कि वो इंडिया पीछे लिखा हो और आगे हमारा तिरंगा हो, और बस अपना वेस्ट करना है और देश का हमें बस पहचान नहलाना है और तिरंगे को लहराना और अपने मेडल तालिका में भारत को आगे ले जाना है।
0: बहुत अच्छी बात, आप बोल रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बातें सुनकर, कि ये जो जज्बा आपकी बातों से झलक रहा है कि आपने मतलब बोला तो ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के सामने वो सारा दृश्य चल रहा है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है और आप देश का नाम अपने सीने पर महसूस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सच में एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़े गर्व की बात भला क्या ही हो सकती है। अच्छा, आपने जैसा कि हम जानते हैं कि आपने अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदक अपने नाम किए और आपने बताया भी, लेकिन अगर इनमें से किसी एक उपलब्धि की बात करें जो आपको हमेशा यादगार रहेगी तो वो कौन सी उपलब्धि होगी?
1: रोमानिया में आयोजित वर्ल्ड क्वान किलो चैंपियनशिप जो कि यूरोप के देश में हुआ था, वो मैंने वहां पर रजत पदक जीता, वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा वो मोमेंट रहा, क्योंकि मेरी फरवरी में ही मेरे पापा की देहांत हुआ था और उसी समय मुझे पता चला था कि मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। एक तरफ पापा का वो दर्द था और एक तरफ पूरे भारतवर्षों का जो एक जज्बा था कि देश के लिए भी कुछ करना है। तो मैं वहां जब गया था तो मैं बस एक ही लक्ष्य था कि मैं देश के लिए पदक जीतूं, और जब मेरी फाइट जब जर्मनी के साथ हुई थी तो मैं वहां पर मेरे इंजर्ड भी हो गया था, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, जब मैं गिर गया तो मेरे कोच ने बोला कि बस रवि, तो मैं उधर देखा तो बस तिरंगा, तो मैं बस एक ही मेरे अंदर में एक अलग सी एक एनर्जी आ गई और बस मैं यही बस देखा कि अब कुछ भी हो जाए बस मुझे वेस्ट करना। मेरे हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी कहते ना सर कि अगर रेस में आगे बढ़ना है या तो उससे तेज दौड़ जाओ या तो बगल वाले को लंगी मार के गिरा दो। तो उन्होंने भी वही सेम कंडीशन किया, मेरे को उन्होंने इंजर्ड किया, अपने पॉइंट्स एक उन्होंने खोए, पर मैं इंजर्ड होने के बाद भी मैंने रोमानिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि वहां पर 37 देशों के खिलाड़ी आए थे। उस बीच में मैंने तिरंगे को लहराया, वो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण वो रहा सर।
0: गिर कर उठने का हौसला आपने जो आगे बढ़ करके दिखाया और वो भी अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज देखा, जज्बा और ज्यादा 100 गुना हो गया। उस वक्त आप इंजरी भूल गए, लगा कि नहीं बस यही मौका है और करके दिखाना है।
1: जब भी सर एक क्वानक्यूडो की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड खुला जाएगा तो अपने जनपद सोनभद्र का भी नाम वो जरूर आएगा, तो मुझे बहुत खुशियां होती है और सदस्यों से भरा रहा सर। इतनी मतलब कि कहते ना सर, क्योंकि इस बीच में जनपद सोनभद्र से आगे बढ़ना, क्योंकि खिलाड़ियों को सर ना जब आप आगे बढ़ते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये सच्चाई है सर। जब आप जीत जाते हैं तो आपको हर वो खुशियां मिलती हैं।
0: बिल्कुल, उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है। और जिस समय आपका संघर्ष का समय था, आपने संयम रखा, और जैसा कि आपने बताया कि आप ऐसे विकट परिस्थिति में थे जब आपके पिताजी का देहांत हुआ, फिर भी आप लड़े, हिम्मत बनाए रखे, घर वालों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, और इन सब के बीच आपने देश का नाम रोशन कर लिया, अपने जनपद का नाम रोशन कर लिया। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने माता पिता का नाम रोशन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे की आपकी खेल यात्रा और उसका क्या लक्ष्य है, क्या प्लानिंग है आगे की?
1: आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब सर कहते ना स्वर्ण पदक जीतेंगे तो एक धुन बजती है, वो राष्ट्र का सर धुन बजती है, तो बस मैं अपने पूरे हिंदुस्तान का वो राष्ट्र धौन में सुनना चाहता हूँ और देशवासियों को सुनाना चाहता हूँ, और आने वाले समय में वो जरूर मैं अपने पूरे देशवासियों को वो राष्ट्रीय ध्वज सुनाई देगी। और मेरा लक्ष्य भी आगे है, मैं इतने से हार नहीं मानूंगा, और मैं बस एक ही बस मैं अपने इस आकाशवाणी ओबरा के माध्यम से बस यही कहना चाह रहा हूँ, जो मेरी महिलाएं हैं, युवाएं हैं या लड़कियां हैं जो अपने इस मेरे सुन रही है, तो बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अब लुक से ज्यादा अपने बुक पर ध्यान दें।
0: बहुत ही अच्छा संदेश भी आपने दिया कि लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान दें, और एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर जो भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, जहां और जिससे भी आप अपना, अपने घर परिवार का, अपनी जगह का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व में सबसे बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी।
1: धन्यवाद सर।
0: खेल दर्पण कार्यक्रम में ये था आज का अंक, ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी ओबरा की।
2: दर्पण।

0: अभी आप हमारे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसके अंतर्गत खेल कौशल और संकल्प विषय पर ये कार्यक्रम आधारित था। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 10:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म मेरे जीवन साथी में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म राज में। गीत को लिखा था शमीम जयपुरी ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा में। गीत को लिखा था असद भोपाली ने और संगीत दिया था उषा खन्ना ने।

अभी आप सुन रहे थे इंदिवर के लिखे गीत में रोशन के संगीत निर्देशन में गाया था मुकेश ने। फिल्म का नाम था अनोखी रात।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म अनामिका में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। यात्री के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज हुई विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने

0: विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।